0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुबह के 6 बज चुके हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता। नमस्कार।
1: नमस्कार। सोमवार 20 जुलाई 2026 के इस प्रातकालीन पहले फ्लैश न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीतकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। फाइनल में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हरा कर खिताब अपने नाम किया है। फीफा विश्व कप 2026 के पानिनी स्टीकर एल्बम को पूरा करने के लिए मॉरिशस में हजारों प्रशंसक अंतिम स्टीकर एक्सचेंज कार्यक्रम में कल त्रिबिका पहुंचे। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे अगले बुलेटिन में हम आपको देंगे। 94 मिलियन रुपए मूल्य के गांजा जब्ती मामले में गिरफ्तार पुलिस जयंजयेश गंगादीन को जमानत मिल गई है। इस मामले के बाद पुलिस की खुफिया कार्रवाई और कथित आपराधिक मिलीभगत के बीच की सीमा पर नए सवाल उठने लगी है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। women.mu ने घरेलू हिंसा विधेयक यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का स्वागत करते हुए पीड़ितों के लिए बेहतर कानूनी संरक्षण की मांग की है। जी हाँ, women.mu ने डोमेस्टिक वायलेंस बिल का स्वागत करते हुए पीड़ितों के लिए बेहतर कानूनी संरक्षण की मांग की है। और अन्य खबरों में, सेंट्रल वाटर अथॉरिटी नेटवर्क के लिए खरीदी गई लगभग 30,000 कनेक्टरों में सामने आई गुणवत्ता संबंधी खामियों की जांच कर रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि समस्या उपकरणों की गुणवत्ता में है या खरीद और स्थापना प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंडी बर्नम आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अपने पहले संबोधन में वह राजनीतिक स्थिरता और जनता को राहत देने का संदेश देंगे। और उधर रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला किया है, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अमरीकी देश गुयाना के तट के पास 116 यात्रियों को ले जा रही एक नौका दुर्घटनाग्रस्त होकर डूब गई। अब तक 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अन्य यात्रियों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर।

0: मौसम का हाल, हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है, अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना होगा, सिवाय ऊंचाइयों पर और दक्षिणी इलाकों में दोपहर बाद बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी, अन्य इलाकों में बादल घिरे रहेंगे। रात के दौरान आसमान साफ रहेगा, हवा हल्की बहेगी, समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा तथा धीरे धीरे खराब होता जाएगा और दोपहर बाद दक्षिणी इलाकों में यानी कि दक्षिणी लगूनों में दक्षिण पश्चिम की ओर से जुआर उठेंगे और 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ये जुआर होंगे दोपहर बाद में। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा, खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है, विशेषकर दोपहर बाद में। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा 2 डिग्री ज्यादा यानी सेंटर प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंटर प्लेटों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:48 पर। इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारी रॉब की मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30 बजे।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

0: सुबह के 6:06 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए आज सोमवार 20 जुलाई 2026। जी हाँ, इस सप्ताह आप लोग साथ मिलकर शुरू करने जा रहे हैं, और आज सुबह आप लोगों के नाम सुबह की पहली किरण सिर्फ रोशनी ही नहीं लाती बल्कि हर दिल के लिए उम्मीद का एक सुंदर नजराना लेकर आती है। बस ऐसे ही साथ दीजिए, खूबसूरत गाने आप लोगों के लिए भी हमने तैयार किया है। अभी के लिए चलिए सुनते हैं जागृति।
1: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: ॐ इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समुढमस्य पां सुडे सुखाभिलाषा परिवार मोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तत् जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानं दमहम नमामी। जागृति कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का विषय है वेदों में अभयता का संदेश। धातु पाठ के अनुसार भी भये धातु से भय शब्द की सिद्धि होती है, जिसका अर्थ होता है डर, और अभय का अर्थ होता है न डरना। हमारे वेदों में अनेक स्थानों में परमेश्वर मनुष्य मात्र को अभयता का संदेश देता है। हमारे शास्त्रों में भय को एक दोष माना गया है। डर मन की एक भावना है जो किसी अज्ञात दर्द व खतरे से पहले अनुभव किया जाता है। संस्कृत में एक बहुत ही सुंदर उक्ति है, भयमेव नास्ति शत्रुः। हमारा सबसे बड़ा शत्रु डर ही है। अतः एक अज्ञात कारण के लिए भय क्यों? हितोपदेश में एक बहुत ही सुंदर श्लोक के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि भय का सामना किस प्रकार करने चाहिए। तावत् भयस्य भेतव्यम् यावत् भयम् अनागतम् आगतम् तु भयम् विक्षय नरः कुर्यात् यथोचित्तम्। अर्थात भय से तभी तक डरना चाहिए जब वह सामने नहीं है, अर्थात जब तक डर दूर है तब तक उससे डरना चाहिए, परंतु जब वह सामने आ जाए तो अपनी बुद्धि के अनुसार कार्य करते हुए उसका सामना करना चाहिए। भय कब उत्पन्न होता है? तो कहा गया कि जो पाप कर्म करते हैं वही डरते हैं। यजुर्वेद का मंत्र कहता है माँ भैरमा संविग्धा ऊर्जम धत्स्व धीष्णवे विंगवी सती विडये थाम ऊर्जम दधायाम पापमा हतो न सो महा। अर्थात माँ विभेहे, हे मनुष्य मट भयभीत हो, माँ संविधा भय के कारण कांपो मत, ऊर्जम धत्स्व शक्ति साहस एवं पुरुषार्थ को धारण करो। धिष्णे, हे द्युलोक और पृथ्वीलोक तुम दोनों दृढ़ रहते हुए हमें दृढ़ करो, हमें शक्ति दो, हमारे पाप दुर्गुण पाप बुद्धि नष्ट हो, न सो महा परंतु हमारी सौम्य गुण एवं सद्बुद्धि कभी भी नष्ट न हो। इस मंत्र में भय के कारणों का उल्लेख किया गया है। पहला कारण है पाप कर्म। पाप कर्म करने के बाद पापी डरता है कि कहीं वह पकड़ा न जाए, इसलिए हमें पाप कर्म से दूर रहना चाहिए। दुर्गुण तथा

दुर्व्यसनों में फंसे व्यक्ति भी पाप कर्म करते हैं। दुराचारी का मन निर्बल हो जाता है, उसका हृदय निर्बल हो जाता है तथा मनोबल शून्य हो जाता है। अतः दुर्गुण, दुर्व्यसन एवं कमजोर मन, ये सब भय के कारण होते हैं। अंत में बताया गया सात्विकता का नाश होना भी भय का कारण होता है। डर के कारण शरीर में कंपन भी होता है। शरीर में कंपन दो मुख्य कारणों से उत्पन्न होता है। पहला है बुढ़ापा या शारीरिक रोग व कमजोरी, और दूसरा है भय। कमजोर मन वाला ही डरता है और डर के कारण कांपता भी है। अतः मन को सुदृढ़ करना चाहिए। मंत्र में द्यावा पृथ्वी से उपमा लिया गया है। जिस प्रकार द्यूलोक एवं पृथ्वी लोग ध्रुव हैं, स्थिर हैं, उसी प्रकार हमारा मन दृढ़ हो, हमारे मन में साहस हो, ताकि हम भय एवं बुराइयों से दूर रहें। अतः हृदय में साहस रखना चाहिए। शक्ति और उत्साह विपत्ति का सामना करने के लिए सहयोगी होते हैं। साहस से भय दूर होता है। अथर्ववेद का मंत्र हमें सदा निर्भय रहने के लिए उपदेश दे रहा है। ओम मास यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न विभीतो नरिष्यत एवा मे प्राणमा विभेः, यथा ब्रह्मचक्षत्रम च न विभीतो नरिष्यत एवा मे प्राणमा विभेः। अर्थात जैसे सूर्य और चंद्रमा न डरते हैं, न नष्ट होते हैं, उसी प्रकार हे मेरे प्राण, तू भी मत डरो। जैसे ब्रह्म शक्ति और क्षत्र शक्ति न डरती हैं, न नष्ट होती हैं, इसी प्रकार हे मेरे प्राण, तू भी मत डरो। इन दो मंत्रों में चार शक्तियों से निर्भयता की प्रेरणा लिया जा रहा है। सूर्य एवं चंद्रमा की शक्ति हमारे प्राणों को अभयता देते हैं। ये दोनों नष्ट नहीं होने वाले हैं, अतः आत्मा भी अमर हैं। जो इस तथ्य को समझ लेता है वह सभी भयों से दूर हो जाता है। इन दोनों शक्तियों में अनुशासन भी देखने को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सूर्य एवं चंद्रमा के समान अनुशासित होकर अपने कर्मों को करता है वह किसी से भयभीत नहीं होता है। पुरुष सूक्त में सूर्य को चक्षु तथा चंद्रमा को मन से जोड़ा गया है। हम सूर्य के समान सबको एक समान देखे तथा हमारा मन चंद्रमा के तुल्य सदैव आह्लादित रहे। हमारी दृष्टि सूर्य के समान पक्षपात रहित हो तथा मन निष्पाप, निश्चल एवं निर्दोष से युक्त हो। यही अभयता का कुंज है। दूसरे तो शक्तियाँ हैं ब्रह्म शक्ति एवं क्षत्र शक्ति। ब्रह्म ज्ञान को कहा गया है तथा क्षत्र ऊर्जा व शारीरिक शक्ति का प्रतीक होता है। ये शक्तियाँ भी हमें निर्भयता का संदेश दे रहा है। जीवन में निर्भय होने के लिए पापों एवं दुर्गुणों को छोड़ना होगा, तभी संसार मित्रवत दिखाई देता है। अथर्ववेद का मंत्र कहता है, अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्तम अभयम दीवानः सर्व आशा मम मित्रम भवन्तु। हम अपने मित्र से अभयता प्राप्त करें, अमित्र अर्थात शत्रु से भी हम न डरें। जिनसे हम परिचित हो एवं अपरिचित हो, दोनों से हम न डरें। हमारे लिए दिन और रात अभय से पूर्ण हो। इस प्रकार हम सभी दिशाओं से मित्रता प्राप्त करें, अर्थात हम अपने समाज एवं देश में निडर होकर के जिएं। समाज के साथ साथ प्रत्येक घर में भी अभयता होनी चाहिए। यजुर्वेद कहता है, गृहामा विभीतमा वेदध्वम ऊर्जम विभ्रत एमसी, ऊर्जम विभ्रत वह सुमना सुमेधा गृहा नैमी मनसा मुद मानः। हे परिवार के लोगों, तुम किसी भी प्रकार के भय से न डरो और डर से न कांपो।

0: शक्तिशाली तुम लोगों के सहायता के लिए विद्वान धार्मिक पुरुष आते हैं। वे साहस, धैर्य एवं विवेकता का उपदेश देते हैं। तुम शक्तिशाली, प्रसन्नचित, बुद्धिमान तथा मन से आनंदित होता हुआ वैदिक विद्वानों को अपने घर में स्वागत करो। कहने का भाव यही है कि जिस घर में विद्वान आप्त पुरुषों का आगमन होता है, उस घर के सभी लोग शक्ति से संपन्न, प्रसन्नचित तथा बुद्धिमान होते हैं। इस प्रकार वे निर्भय होकर अपने घर में वास करते हैं। घर में निर्भयता के होने से परिवार के सदस्यों में एकता एवं विश्वास बनी रहती हैं तथा अंधविश्वास से सभी लोग दूर रहते हैं। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुलास में उल्लेख करते हैं कि शंका, कुसंग एवं कुसंस्कार से भय और शंका जैसे दुख उत्पन्न होते हैं। इस कारण प्रत्येक गृहस्थ के घर में हमेशा यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म होने चाहिए। यज्ञ आदि श्रेष्ठ धार्मिक कार्यों में वेद के ज्ञाता विद्वान लोग आकर हमारी शंकाएं एवं भय को दूर करें तथा हमारे यज्ञ भी अभयतापूर्वक संपन्न हो। यजुर्वेद कहता है, माँ भैरमा संविक्तः अतमेरुः यज्ञो तमेरुः यजमानस्य प्रजा भूयात्। हे यज्ञ रक्षक यजमान, तू मट डर, मात्र उस ईश्वर से डरो। जो ईश्वर से डरता है वही अभय होकर इस संसार में वास करता है। प्रभु से डरने वाला निडर रहता है। मंत्र आगे कह रहा है, तो उद्वेग से कंपित मत हो। सही मार्ग पर चलने वाले को किसी प्रकार का कंपन नहीं होता। अतः निडर होकर अपने यज्ञ को सुदृढ़ बना तथा अपने प्रजा को भी सुदृढ़ बना। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही, शांति ही, शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
3: L'habitude qu'ils avaient tous osé, mon tea time avec Farmland.
4: Ah ben oui, madame Sheila, où toujours bien smart.
3: Et comme au sorti travail, une appli réconfortant qui retrouve la famille autour d'une bonne préparation avec Farmland.
4: Mmh, où fais-moi faire?
3: Astérix Farmland Hot Chocolate, la vie encore plus tamam. Encore plus simple, encore plus préparation et encore plus gourmand.
4: Astérix Farmland, nous gagnons encore beaucoup plus.
3: Farmland, ça même nous. Smart choice.
5: Radio Mauritius.
6: 819 kilohertz par ye hai Radio Mauritius.
5: Radio Mauritius.
6: Radio Mauritius.

सुबह के 6:19 हुए हैं श्रोताओं। जी हाँ, धन्यवाद साथ देने के लिए। चंद खूबसूरत गाने आप लोगों के नाम 6:30 पूरे गाने ही आप सुन पाएंगे। समाचार, हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घरे मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 6:30 बजे हैं। नमस्कार और सुप्रभात। सोमवार 20 जुलाई 2026 की इस प्रातकालीन पहले समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। स्पेन ने फीफा विश्व कप जीतकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। फाइनल में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया और तीसरे स्थान पर आई इंग्लैंड से हार के बावजूद किलियान एम्बाप्पे ने विश्व कप में रचा नया इतिहास। फीफा विश्व कप 2026 के पानिनी स्टिकर एल्बम को पूरा करने के लिए मॉरिशस में हजारों प्रशंसक अंतिम स्टिकर एक्सचेंज कार्यक्रम में पहुंचे। 94 मिलियन रुपए मूल्य के गांजा जब्ती मामले में गिरफ्तार पुलिस सर्जन जयेश गंगाधीन को जमानत मिल गई है। इस मामले के बाद पुलिस की खुफिया कार्रवाई और कथित आपराधिक मिलीभगत के बीच की सीमा पर नए सवाल उठने लगे। डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। women.mu ने घरेलू हिंसा विधेयक का स्वागत करते हुए पीड़ितों के लिए बेहतर कानूनी संरक्षण की मांग की। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी नेटवर्क के लिए खरीदे गए लगभग 30,000 कनेक्टरों में सामने आई गुणवत्ता संबंधी खामियों की जांच कर रहा है। ये पता लगाया जा रहा है कि समस्या उपकरणों की गुणवत्ता में है या खरीद और स्थापना प्रक्रिया में किसी प्रकार की लापरवाही हुई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एंडी बर्नम आज ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अपने पहले संबोधन में वह राजनीतिक स्थिरता और जनता को राहत देने का संदेश देंगे। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। फीफा विश्व कप 2026 का महामुकाबला दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ देखा गया। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी और मुकाबला अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। 62वें मिनट में मैदान पर उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल कर स्पेन को जीत दिलाया। अर्जेंटीना को 93वें मिनट में एंजो फर्नांडेज के रेड कार्ड के बाद 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इससे पहले स्पेन ने 2010 में पहली बार विश्व कप जीता था। मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन अब वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया है। ये फाइनल मुकाबला आपने MBC पर सीधा प्रसारण में भी देखा और सुना।
2: Gave the foul straight away.
3: And Williams played it in, and Marino! Pedro Porro, Williams! And thundered in for Spain by Ferran Torres! At last! At long, long last! Spain's magic moment! Oh, Torres is on his way here. Ferran Torres all by himself.
4: And the flag is up at his expense.
3: It's Simeone! Spain are the champions. Spain have seized their second star. The kings of Europe have conquered the world.
1: और तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड से हार के बावजूद फ्रांस के कप्तान किलियान एम्बाप्पे ने शनिवार को मायमी में 2 गोल दागकर फीफा विश्व कप के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया। एम्बाप्पे ने विश्व कप 2026 का समापन 10 गोलों के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में किया। विश्व कप में कुल 22 गोलों के साथ वह अब टूर्नामेंट के इतिहास के वर्ल्ड टॉप गोल स्कोर बन गए हैं। किलियान एम्बाप्पे विश्व कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। फीफा विश्व कप 2026 का नाम आते ही पानी

0: स्टिकर एल्बम का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। कल रविवार को मॉरिशस के त्रिबेका शॉपिंग मॉल में स्टिकर एडिशन अभियान का अंतिम दिन आयोजित किया गया, जहां हजारों लोग अपने एल्बम को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टिकरों की तलाश में पहुंचे। सुबह से ही मॉल में लंबी कतारें देखने को मिली। परिवारों के साथ आए प्रशंसक अपने स्टिकर पैकेट खोलते और अतिरिक्त स्टिकरों का आपस में आदान प्रदान करती नजर आए। इस आयोजन में 7 वर्ष से के बच्चों से लेकर 77 वर्ष तक के कलेक्टर्स ने हिस्सा लिया। इनमें कई ऐसे भी थे जो वर्ष 1978 के विश्व कप से ही पानिनी स्टिकर कलेक्शन की अपनी परंपरा को आज तक कायम रखे हुए हैं। शैली नियबन उनसे मिलने गई थी, जहां इस जोश का अंदाजा लगा। विवरण याचना मिश्रा का।
1: त्रिबेका में सप्ताहांत के दौरान एक अलग स्टॉल देखने को मिला। यहां विश्व कप 2026 को समर्पित पानिनी कलेक्शन के औपचारिक विक्रेता ने अपना स्टॉल लगाया था। एक खास अभियान जो अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेले जा रहे फाइनल्स मैच के साथ समाप्त हुआ। कई लोग वहां पर गए हुए थे। वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जा चुका है और अंतिम पड़ाव भी समाप्त हो चला है, लेकिन फिर भी कल वही जज्बा देखा गया जो पहले दिन था और उससे पहले, खासकर कलेक्शंस को लेकर, स्टिकर्स को लेकर।
2: La Coupe du Monde, il y en a pour chaque 4 ans. C'est un fun, juste pour peut-être rentrer dans le mood World Cup.
3: Je m'appelle Oviran, j'ai 7 ans. Première fois, mon père collection stickers, football, avec mon coton Messi, Argentine.
4: Moi, c'est la maman de Mathias. Aujourd'hui, nous venons à Tribeca pour faire un échange de stickers en même temps pour acheter le man manquant. C'était une grande joie. Mon père compagne mon garçon,
5: c'est
4: Rodip.
5: C'est mon argent pour remplir le livre et collectionner et rien d'autre parce que j'aime bien le foot.
6: Je vais m'acheter trop collectionner, mais c'est à l'examen, tout ça là. Mais la dernière jour, je fais le maximum pour remplir total dernier lire. Encore une promo, les sorties 3 en 2000.
1: Kuch parivar. कल भी एल्बम के साथ साथ उसके डिजिटल संस्करण का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। खलीफ परिवार भी वहां पर गया हुआ था।
7: Digitalement fini. Dès le début, même quand tu finis game au band sticker, moi tu peux finir mettre.
8: Maybe USA 94 and every 4 years. Then when I came back to Mauritius, me and my wife started collecting and then now we pass it on to my son.
9: So I actually got interested in collecting stickers from YouTube. I just thought, wow.
1: वहीं शुक्रवार से त्रिबेका में मौजूद पानिनी की विक्रेता टीम का कहना है कि पूरे अभियान के दौरान लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। नवाज के अनुसार इस दौरान कई हजार लोगों ने स्टॉल का दौरा किया, एक ऐसा जज्बा जो कल मैच के फाइनल्स के साथ समाप्त हुआ और आने वाले 4 सालों तक लोग अपना एल्बम या स्टिकर्स देखकर इन पलों को याद जरूर करेंगे।
10: Là, actuellement, nous avons 7 à 8 collègues. Nous travaillons dans différentes sections. Et on a fait un côté de la vente, Photoshop, distribution stickers, nous faisons la croisette et mutualité aussi. C'est tout. Tout le monde plaît.
0: अपने एल्बम्स को आखिरकार पूरा करने या लगभग पूरा करने की बात त्रिबेका के कलेक्टर्स के मन में अब केवल एक ही योजना है, 2 साल बाद होने वाला अगला यूरो स्टिकर की नई खोज के लिए। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल का 19 जुलाई 2026 को यानी कल कौंडोस के विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। जांच के बाद उन्हें आवश्यक उपचार दिया गया और एहतियात के तौर पर अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। राष्ट्रपति की स्थिति स्थिर है और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा की जाएगी। राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने जनता से प्राप्त शुभकामनाओं और समर्थन के लिए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। सूचना एकत्र करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी कब आपराधिक मिलीभगत में बदल जाती है? 94 बिलियन रुपए के गांजा जब्ती मामले के बाद यही सवाल मॉरिशस में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार पुलिस सर्जन जयेश गंगादीन को शुक्रवार को जमानत मिल गई। डीपीपी के कार्यालय ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद पोर्ट लुइस जिला अदालत ने उनकी सशर्त रिहाई को बरकरार रखा। जयेश गंगादीन का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्होंने केवल खुफिया जानकारी जुटाने के अपने कर्तव्य का पालन किया था। दूसरी ओर मादक पदार्थ निरोधक विशेष इकाई यानी कि आत्सू को

0: संदेह है कि उन्होंने संवेदनशील सूचनाएं आतिश गजादव नामक व्यक्ति तक पहुंचाई, जिसे जब्त की गई गांजे की खेप के संभावित प्राप्तकर्ताओं में से एक माना जा रहा है। लुवीना सूफी, याचना मिश्रा।
1: अपराधी नेटवर्क में घुसपैठ करने और खुफिया जानकारी जुटाने के लिए इंटेलिजेंस शाखा के पुलिस अधिकारियों को कई बार गुप्त रूप से काम करना पड़ता है और संदिग्ध व्यक्तियों के साथ संपर्क बनाए रखना पड़ता है। ऐसे संपर्क अक्सर ऐसी जानकारी हासिल करने के लिए ज़रूरी माने जाते हैं जो पारंपरिक जाँच तरीकों से हमेशा नहीं मिल पाती। हालाँकि यही संपर्क कई बार संदेह भी पैदा कर देते हैं। सर्जन जयेश गंगादिन के मामले में जांचकर्ता मुख्य रूप से उनके फोन पर हुई बातचीत और इस मामले में गिरफ्तार किए गए एक संदिग्ध के साथ उनकी मुलाकात को आधार बना रहे हैं। बचाव पक्ष के वकील स्टीवन सोहबवा का कहना है कि ये सभी संपर्क उनके मुवक्किल के फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिस में निभाई जा रही औपचारिक जिम्मेदारियों का हिस्सा हैं। वे अभी भी बोल रहे हैं कि उन्होंने काम के लिए इस व्यक्ति के साथ संपर्क किया। उन्हें तस्करों के बारे में जानने के लिए खुद को खतरे में डालना ही पड़ा है। ये मामला उन इंटेलिजेंस पुलिस अधिकारियों के सामने आने वाली विडंबना को भी उजागर करता है, जिन्हें अपराध से लड़ने के लिए कई बार उन्हीं लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है जिन पर अपराध में शामिल होने का संदेह होता है। पूर्व जांच अधिकारी रंजीत जोखू का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी किसी भी गोपनीय जानकारी का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से केन्या मूल के एक नागरिक शॉल्स नलिसी अमासिम्बी के मामले का उल्लेख किया, जिसे हेरोइन की तस्करी के आरोप में दोषी ठहराया गया था और जिसमें कुछ पुलिसकर्मी अप्रत्यक्ष रूप से जांच के दायरे में ही आ गए। केन्या का निवासी जहाज में हेरोइन ले आया, एक कोने में छिपाकर एक बड़े जहाज में। एक खबरी ने बताया कि माल बाहर आ रहा है। मेरे सहयोगी ने तस्कर होने का नाटक किया। जब व्यक्ति निकला तो खबरी ने कहा कि मैं एक हिस्सा ले जाता हूँ, तुम दूसरा हिस्सा ले जाओ। खबरी ने कभी भी नहीं बताया कि वो भी ड्रग्स बाहर ला रहा है। खबरी उस डीलर और पुलिस को चकमा देकर 2 किलो ड्रग्स लिए भाग गया और मिला ही नहीं। ड्रग्स लाने वाले ने कहा कि पुलिस उस खबरी से मिला हुआ है। मामला अदालत भी गया। अब जांच का मुख्य सवाल ये है कि क्या ये संपर्क वास्तव में सर्जन गंगादिन की खुफिया ड्यूटी का हिस्सा था, या फिर जैसे कि जांचकर्ताओं का संदेह है, ये उस आपराधिक नेटवर्क में उनके मिले होने के सबूत साबित हो सकते हैं।
0: इसके अलावा सर्जन जयेश गंगादिन के वकील स्टीवन सोबा अटोर्नी जनरल गाविन ग्रोवर को पत्र भेजने का इरादा रखते हैं। वे अपने मुवक्किल की लंबी हिरासत की शर्तों का विरोध कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी ने जमानत राशि जमा कर दी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन पक्ष द्वारा दायर स्थगन मोशन के बाद उनकी रिहाई सस्पेंड कर दी गई है। वकील के अनुसार कानून द्वारा निर्धारित ये मोशन अदालत के फैसले के तुरंत बाद दायर की जानी चाहिए थी, न कि कई घंटों बाद। ये ध्यान देने योग्य है कि DPP ने निदेशक के पास अब इस सशर्त रिहाई की समीक्षा का अनुरोध करने के लिए 7 दिन का समय है। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मॉरिशस की संस्था women.mu का कहना है कि पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेदारी है। संस्था ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल का स्वागत किया है। संगठन की एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नाताली जीजे ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें हिंसा का आरोपी सरकारी या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा आवंटित आवास में रहता है। women.mu का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ितों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। संस्था ने जोर देकर कहा है कि कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो पीड़ितों

0: की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके आवास के अधिकार की भी रक्षा करें। उन्हें सुनते हैं जिनसे बात की शबनीज उजिया वैदाली ने। एक बार फिर याशना मिश्रा का विवरण।
1: Women.mu, c'est un nouveau plateforme en ligne dans lequel nous faire ban plaidoyer.
2: Women.mu एक नया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है महिलाओं के लिए, जिसमें हम शिकायतें करते हैं, अपनी मांगें रखते हैं या फिर सवाल उठाते हैं। सबसे पहली शिकायत या सवाल बोल दीजिए कि डोमेस्टिक अब्यूज बिल को लेकर है, जिसका हमने खुलकर स्वागत जरूर किया है, लेकिन हमारा एक सवाल है कि यदि मामला ऐसे घर में हुआ जो सरकारी है तो कौन घर छोड़ के जाएगा। यदि एक अफसर सरकारी विभाग में काम करता है और कागज उसके नाम पर हैं, उसने हाथ उठाया, तो अगर वो अपने साथी को बाहर निकाले तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस भी बोलेगी कि घर पीड़ित के नाम पर नहीं है, तो क्या स्टैंडिंग ऑर्डर्स को लेकर कोई बदलाव लाया जाएगा या नहीं, यही हमारा सवाल है।
0: सेंट्रल वाटर अथॉरिटी नेटवर्क के नए पानी कनेक्शन के लिए खरीदे गए लगभग 30,000 कनेक्टरों में सामने आई गुणवत्ता संबंधी खामियों की जांच कर रहा है। ये दो पाइपों को जोड़ने वाले कनेक्टर नवंबर 2024 में प्रोक्यूमेंट ऑफिस के माध्यम से एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए थे। हालांकि जून से इन्हें स्थापित करने के दौरान CWE की तकनीकी टीमों को लगातार कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को देखते हुए CWE ने पूरे स्टॉक को आपूर्तिकर्ता को वापस भेजने का निर्णय लिया है। ये उपकरण 3 वर्ष की वारंटी के दायरे में है। अब जांच का मुख्य उद्देश्य ये पता लगाना है कि समस्या CWA की ओर से किसी लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई है या फिर खरीद प्रक्रिया अथवा उपकरणों की गुणवत्ता में ही कोई कमी थी। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी के जनरल मैनेजर श्याम तानु को सुनते हैं।
3: C'est une crise qui n'astigne à peu près 2 ans, environ 30 000 commandes, selon une première information qui m'ont gagné avec le département concerné.
2: 2 साल पहले ये पार्ट्स खरीदे गए थे, 30,000 ऑर्डर्स थे। पहली जानकारियों के मुताबिक पानी के लीकेज के समाधान के लिए ये पार्ट्स खरीदे गए कनेक्टर्स, लेकिन ये डिफेक्टिव हैं और बार बार इन्हें बनाना पड़ रहा है। हमने आंतरिक ऑडिट की मांग की है ये जानने के लिए कि ये स्पेयर पार्ट्स कब और कहां खरीदे गए, किसने मंजूरी दी। अभी तक कदम नहीं उठाया गया है। मैंने प्रोक्यूमेंट विभाग को निर्देश दिया कि इस पार्ट को वापस संबद्ध कंपनी को भेजा जाए। क्या लापरवाही हुई है, खासकर CWA के कर्मचारियों के स्तर पर या प्रोक्यूमेंट के स्तर पर, हम करीब से स्थिति पर नजर रख रहे हैं।
3: Est-ce qu'il y a une négligence au niveau d'un officier à l'intérieur de la CWA ou finalement un manquement au niveau de la section du procurement ou finalement un manquement au niveau des spécifications? Donc là, le management nous regarde ça de très près.
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में एंडी बर्नहम आज इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद वह आधिकारिक तौर पर सर कीर स्टार्मर की जगह लेकर देश के 59वें प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में वह ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री होंगे। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने पहले संबोधन में बर्नहम के ये कहने की उम्मीद है कि वह लगातार बदलते प्रधानमंत्रियों के दौर को लेकर पूरी तरह सचेत हैं और देश को अधिक स्थिर तथा जिम्मेदार राजनीति की जरूरत है। वह जनता को कुछ राहत और सुकून देने का भी वादा करेंगे तथा ब्रिटेन के सामने मौजूद चुनौतियों का ईमानदारी से सामना करने की बात कहेंगे। उधर कंजर्वेटिव पार्टी की नेता केमी बेरिनॉक ने बर्नहम को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि उनके पास कोई स्पष्ट योजना नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि बर्नहम ने सांसदों के सवालों का सामना करने और मीडिया के कठिन सवालों का जवाब देने से परहेज किया है। बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय आमतौर पर मौसम सुहाना रहेगा, सिवाय दक्षिण और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर। दोपहर बाद में बादल विकसित होंगे और रह कर बारिश होगी। अन्य इलाकों

में बादल घिरे रहेंगे। रात के दौरान आमतौर पर आसमान साफ रहेगा, हवा हल्की बहेगी, समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा तथा धीरे धीरे समुद्र खराब होने लगेगा और दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के ज्वार उठेंगे। दोपहर में खुले समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है, विशेषकर दोपहर बाद से। तापमान अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, सरप्रातों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सरप्रातों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच और शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय सुबह 6:44 पर और सूर्यास्त शाम 5:48 पर। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क और फ्रेंच डेस्क का सहयोग मिला है और कंसल पर हमारे सहयोगी कादर का, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, सुनते हैं अभी शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। प्लेनवेयर पोर्ट लुइस में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के जनाब अब्दुल फरीद हिमामाले, जो पहले पैंतों लेन पैंतो साबल रहते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज सुबह 11 बजे अल एहसान प्लेनवेयर पोर्टलुइस से उठाकर दफनाने के लिए पॉम्पलेमूसेस का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। शिवाला लेन लातूर रोड रोश्तिया में 73 साल के 73 ईयर्स ओल्ड के श्री देवानंद गिरधारी, जिन्हें विनोद सिगिल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर गोष्ठे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोची की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉय रोड गांगुब में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती जसोदा सिबारन, पैदाश नाम भुवन और जिन्हें जसोदा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे देवानंद सिबारन के घर गांगुब से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुची की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। लासूस कैट्रबोन में 59 साल के 59 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेन मर्तेन, जिन्हें नादेन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो बुलोंजी पेजा के मालिक थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैमौते मोगोश की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टी डी आर 1 PM। रॉय रोड ग्रैंड रोथ में 96 साल की 96 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती इंद्रावती जरी, जिन्हें विधवंती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके बेटे सचिदानंद मुनिया के घर गौनगोत्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। डॉफिन लेन शातुबेनारेस में 80 साल के 80 ईयर्स ओल्ड के श्री धर्मदत्त कौचिक, जिन्हें धर्म के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 11 बजे उनके बेटे उमेश कौचिक के घर शातुबेनारेस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गौबॉ के शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। डिस्पेंसरी रोड विच एम मिल्ट्रियोले में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री इंद्रदेव बंधन, जिन्हें आत्मा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 उनकी पत्नी नर्मदा बंधन के घर विच एम मिल्ट त्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए SSS लेन त्रियोले की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM।
सुल्फिगिनो नंबर एक वाकवा में, सुल्फिगिनो नंबर एक वाकवा में 60 साल की 60 years old की श्रीमती

0: महेश्री देवी दयाल, श्रीमती महेश्री देवी दयाल पैदाशी नाम चकोरी और जिन्हें बीता के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फीगनों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। वर्ल्ड कप 2026 का चैंपियन स्पेन, फेरान टोरेस का एक्स्ट्रा टाइम विनर और कप्तान रोड्री के हाथ में ट्रॉफी, बैटल ऑफ एंड्योरेंस। हर प्रकार से स्पेन इस वर्ल्ड कप का सही हकदार साबित हुआ। अर्जेंटीना के गोलकीपर इमिलियानो मार्टिनेज ने पूरे मैच में स्पेन के अनगिनत प्रयासों को रोका, रोकता रहा, पर अंत में टोरेस ने अर्जेंटीना को तोड़ा एक्स्ट्रा टाइम में। सो स्पेन चैंपियन बना। उसका गोलकीपर उनाई साइमन 7 क्लीन शीट, गोल्डन ग्लोव्स यानी बेहतरीन गोलकीपर अवार्ड उसके नाम हुआ। इस पूरे वर्ल्ड कप में उस पर केवल एक गोल बना, पहली बार ऐसा हुआ है वर्ल्ड कप में। स्पेन वर्ल्ड ओलंपिक और यूरोपियन चैंपियन है, उसकी महिला टीम भी चैंपियन है। स्पेन के कुबासी को यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड दिया गया। कुबासी केवल 19 साल का है। रोड्री को गोल्डन बॉल अवार्ड और टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर अवार्ड होता है ये। किलियान एम्बापे बना टॉप स्कोरर लगातार दूसरी बार के लिए। सो वर्ल्ड कप 2026 पूरा हुआ, स्पेन चैंपियन लागोगा को बधाई, वेल डिजर्व्ड, सभी लोग मानेंगे। क्रिकेट लॉर्ड्स में रिकॉर्ड बनाते हुए इंग्लैंड ने टीम इंडिया को 27 रनों से हराया। सीरीज इंग्लैंड जीत गया 2-1 से। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने रिकॉर्ड 343 रनों का टारगेट रखा। जवाब में टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा की सेंचुरी रही 148, फिर भी टीम इंडिया की हार हुई। साइकिलिंग में टू डे फ्रांस के स्टेज 15 में रेमको एवेनपोल की जीत। इस रेस में योनास विंगेगार्ड का एक्सीडेंट हुआ, वो अब टू डे फ्रांस में नहीं भाग ले पाएगा। इस रेस में लीडर तादेज पोगाचार दूसरे स्थान पर आया और येलो जर्सी उसी के पास है। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, बस इतना कहेंगे स्पेन को बधाई, वेल डिजर्व्ड वर्ल्ड कप स्पेन के नाम। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी खाली हाथ गया, पर यादगार वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के लिए भी। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। मौसम एमिताज एवेन्यू पानू रामा एवेन्यू जुपिटर एवेन्यू प्लूटो एवेन्यू सैटर्न के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 20 जुलाई 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और एवेन्यू बुबासा के आसपास के इलाके एवेन्यू लेजिया एवेन्यू कोडा बार्कस एवेन्यू राहुल फिलिप एवेन्यू मोदाय रेजिडेंस विलमे एन एच डी सी विलमे डॉक्टर रिड एवेन्यू महादेव बिल्टू एवेन्यू जुपेयर एवेन्यू जुपेरी एवेन्यू शातोनेफ और उन सभी रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज जी हाँ। तो ये थी एक ही विज्ञप्ति आपने सुना कोरो मॉडल के जो आसपास के इलाके हैं मौसम एमिताज पानोरामा जुपिटर प्लूटो सैटर्न मार्स एवेन्यू गोल्फिन और एवेन्यू काबोश के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 20 जुलाई 2026 सुबह के 8:30 बजे से शाम के 3 बजे

राज्य तक बिजली सप्लाई में कटौती लाए जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सीबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।

0: सुबह के 7 बज चुके हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। जी हाँ, आप लोग जुड़ चुके हैं और प्रोग्राम है सुबह का नजराना। जी हाँ, आज सोमवार और आज 20 जुलाई 2026 इस सप्ताह का पहला दिन है, और इस दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ हम शुरू कर रहे हैं। और ये सुनकर, ये मौके आप लोगों के साथ बिताने में बहुत अच्छा लगता है, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। जी हाँ, हर सुबह एक नई दुआ है, हर किरण एक नई उम्मीद है, और हर मुस्कान उस नजराना को और सुंदर बनाता है। और इसीलिए हमें शुक्रिया अदा होना चाहिए ऊपर वाले को, और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। तो चलिए, खूबसूरत गाने आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है। वैसे जब हम नहीं होते हैं तो आप बस बोलते रहते हैं कि उषा जी हमने आपको मिस किया है, और आज हम यहाँ पर है। तो चलिए, ऐसे ऐसे गाने हमने तैयार किया है कि सुनकर ये दिन और सुंदर बन जाएगा। अभी के लिए सुनते हैं चिंतन डॉक्टर लक्ष्मी चुमन जी के साथ।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: भविष्य चाहे कितना ही सुंदर हो, विश्वास ना करो। भूतकाल की भी चिंता ना करो। जो कुछ करना है उसे अपने ऊपर और ईश्वर के ऊपर विश्वास रखकर वर्तमान में करो।

7:16 हुए हैं। जी हाँ, कभी धूप कभी छाँव, ये ज़िंदगी है। कभी उतार चढ़ाव होता रहता है, लेकिन क्या करें, ये ज़िंदगी है, हमें आगे बढ़ना है। चलिए 40s और 50s के खूबसूरत गाने, पॉपुलर गाने, खासकर आप लोगों के नाम

जी हाँ, सुबह सुबह ऐसे गाने सुनकर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी लोग अभी काम पर जा रहे हैं। सुबह को आज तो यू और ये गाना खास कर नाविद और उनके दोस्त यानिक के लिए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 7:30 बज चुके हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे गाने सुनकर बस मूड एकदम सेट हो जाता है। और यहाँ पर आपको सुनाने जा रहे हैं आपका हम सुनाने जा रहे हैं रेडियो सुर्खियाँ। जी हाँ, सुबह का नजराना प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, और 8 बजे भोजपुरी समाचार, समाचारों के बाद आपकी राशि, और 9 बजे आप सुन पाएंगे संक्षिप्त समाचार। जी हाँ, और समाचारों के बाद भूलिएगा नहीं, आप सुनेंगे आज की चर्चा कार्यक्रम नीतूषा की प्रस्तुति में। 10 बजे आप सुनेंगे संक्षिप्त समाचार, और समाचारों के बाद भक्ति धारा प्रोग्राम। 11 बजे संक्षिप्त समाचार और उर्दू प्रोग्राम, शाम में फरोजान प्रोग्राम सैयदा सुबाई की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे। मराठी प्रोग्राम दिन के 12 बजे मिसेस दरमिया प्रस्तुत करेगी आरएससी द्वारा। तमिल प्रोग्राम दोपहर के 1 बजे और 1:45। रंगारंग प्रोग्राम, गुजराती प्रोग्राम रत्ना प्रस्तुत करेगी। चाइनीज़ प्रोग्राम 2 से 2:30 बजे, जी हाँ आप सुनेंगे हाका प्रोग्राम होंग होंग के साथ, और रत्ना प्रस्तुत करेगी आपका मनपसंद प्रोग्राम, आपकी पसंद प्रोग्राम, दोपहर के 2:30 से 4 बजे तक। प्रकाश प्रोग्राम शाम के 4 बजे और 4:15। राजेंद्र प्रस्तुत करेगा तेलुगु प्रोग्राम 5:30 बजे तक, और रत्ना के साथ बच्चों का कार्यक्रम 6 बजे समाचार, और 6:30 चाइनीज़ प्रोग्राम जिन के साथ 7 से 7:30 युवारासन प्रस्तुत करेगा तमिल प्रोग्राम। तेलुगु प्रोग्राम स्वरला वेदिका वंदना के साथ 7:30 बजे। रात के 7:50 पर मराठी प्रोग्राम नितिन बापू के साथ, जी हाँ, और भजरे प्रभु का नाम प्रोग्राम रोशनी प्रस्तुत करेगी रात के 8:10 पर। उर्दू प्रोग्राम महफिल शब प्रोग्राम सायदा के साथ रात के 8:40 पर। 9 बजे भोजपुरी प्रोग्राम, जी हाँ, भोजपुरी तड़का सुरिका द्वारा आप सुनेंगे, और सुनहरे पल प्रोग्राम रात के 11:00 आप सुन पाएंगे गिनीशा के साथ, और रात के 12:00 से कल सुबह के 6:00 तक का आप एंजॉय कर पाएंगे। हमारा ओवरनाइट प्लेलिस्ट तो ये थी आप लोगों के लिए रेडियो सुर्खियाँ।

7:40 होने को है और आपके मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स के लिए बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही प्रोग्राम को आप लोग एंजॉय कीजिए और हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिंदगी पर एक छोटी सी कहानी। एक बार एक युवा अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुजी मेरी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आती हैं, कभी दुख, कभी सब कुछ मिल जाता है और कभी सब कुछ छीन जाता है, क्या ये सिलसिला कभी ख़त्म होगा? गुरुजी उसे समुंदर के किनारे ले गए और बोले, लहरों को देखो, कोई लहर हमेशा ऊंची नहीं रहती और कोई हमेशा नीचे नहीं रहती, फिर भी समुंदर अपनी गहराई नहीं खोता। और लड़के ने पूछा, इसका मतलब क्या है? गुरुजी मुस्कुराकर बोला, बेटा जिंदगी भी समुंदर की तरह है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, समझदार वही है जो लहरों से नहीं अपनी गहराई से पहचाना जाता है। मुसीबत में धैर्य और खुशी में विनम्रता ही जीवन की असली ताकत है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिंदगी के उतार चढ़ाव हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत, समझदार और गहरा बनाने के लिए आते हैं। चलिए रफ़ी साहब, कभी किशोर दा, कभी लता जी, अभी हम सुनने जा रहे हैं सीमा फिल्म से लिया गया लता जी की मधुर आवाज़ में ये प्यारा गाना।

0: जी हाँ दोस्तों, ये तो सच है कि कांटे हमेशा दर्द देने के लिए नहीं होते, कभी कभी वो हमें फूलों की असली कीमत समझा देते हैं।
1: यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा।

0: अकेले तो कभी बाग में जाया न करो, तुम अकेले तो कभी।
1: 7:53 हुए हैं श्रोताओं, बस ऐसे ही आप सुनते जाइए। इसी गीत के साथ हम भरेंगे 8 बजे के भोजपुरी समाचारों की, और हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

8 बजे के भोजपुरी समाचार में आप सब लोग की स्वागत करल अजाता सबसे आगे सब कोई की नमस्ते आप प्रणाम और देश के समाचार संगे हमने ई बुलेटिन शुरू करब जा। दुनिया भर निखन मॉरिशस में भी काल जश्न के माहौल बनल रहल। फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 के खिताब स्पेन जीत लेले बाटे। फीफा विश्व कप 2026 के महा मुकाबला दुनिया भर में बहुत उत्साह के संगे देखल गल। न्यूयॉर्क में खेला गल ई फाइनल के मुकाबला में स्पेन मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना के एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हरा के दूसर हला विश्व चैंपियन बन गल बाटे। अनिर्धारित 90 मिनट ले

दोनों टीम को नो गोल नहीं दलिए रलन जा मुकाबला के अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम में पहुँचला के बाद 62वां मिनट में मैदान पर उतरल फेरान टोरेस 156वां मिनट में ई निर्णायक गोल डाल के स्पेन के ई जीत दिलाईलक। अर्जेंटीना के 93वां मिनट में एंजो फेरनांडेज के रेड कार्ड के बाद

ई सब मुकाबला और फाइनल के मुकाबला आप सकल जा एमबीसी के चैनल पर देखे सीधा प्रसारण में। और ये भी याद रखे कि तीसर का स्थान के मुकाबला में इंग्लैंड तीसर का स्थान पर इंग्लैंड से हार के बावजूद फ्रांस की कप्तान किलियान एम्पापे, जी हाँ इंग्लैंड जो नालबा उस तीसर का स्थान पर आलबा पर फ्रांस की से हार के बावजूद भी कप्तान किलियान एम्पापे सामदी के मायामी में दो गोल डाल के फीफा विश्व कप के इतिहास में नवा कीर्तिमान स्थापित कर ले बाटे। एम्पापे विश्व कप 2026 के समापन 10 गो गोल के संगे सर्वाधिक गोल करे होला खिलाड़ी के रूप में सामने आल बाटे। विश्व कप में कुल 22 गो गोल के संगे उ अब टूर्नामेंट के इतिहास के वर्ल्ड टॉप गोल स्कोर बन गल बाटे। किलियान एम्पापे विश्व कप के इतिहास में दुहला गोल्डन बूट जीते होला पहला खिलाड़ी बन गल बा। और फीफा के जोन खेल बाटे फीफा विश्व कप 2026 के नाम आव के अते ही पानिनिस्टी का एल्बम के उत्साह भी अपन चरम पर पहुंच जाला। और काल दिमास के मॉरिशस के त्रिबिका शॉपिंग मॉल में स्थित एडिशन अभियान के अंतिम दिन के आयोजन होल जहां पर हजारन गो संख्या में आदमी अपन एल्बम लेके आ रलंजा अस्टिक के तलाश करे आ रलंजा। फजीर से ही मॉल में लंबा कतार लौकल रहल परिवार के संगे फैंस जुनबा उ लोग अपन स्टिकर पैकेट खुलन जा आर अतिरिक्त स्टिकर के आदान प्रदान कर लंजा। एकर में 7 बरिस से लेके 77 बरिस से लेके कलेक्टर भी संगे रलंजा। दूसरा समाचार में राष्ट्रपति भवन देने से एगो विज्ञप्ति जारी कर गल बाटे जेकर में बोल गल बाटे कि गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल 19 जुलाई 2026 के कांग्रेस के विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण करेगल रनन। जांच के बाद उनकरा आवश्यक उपचार दिवल गल आर एहतियात के तौर पर अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन पर रखल गल रहल। राष्ट्रपति के स्थिति स्थिर बा आर समय समय पर उनका स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलते रही। राष्ट्रपति धर्म गोखोल जनता से मिलल सब शुभकामना आ समर्थन खातिर अपन हार्दिक आभार प्रकट कर ली हवन। सूचना एकत्र करे के पुलिस के जिम्मेदारी है पर ये जिम्मेदारी कब आपराधिक का मिली भगत में बदल जाला। 94 मिलियन रुपया मूल्य की गांजा जब्ती मामला के बाद यही सवाल मॉरिशस में चर्चा के विषय बनल बाटे। ये मामला में गिरफ्तार पुलिस सर्जन जायेश गंगादीन के सुख के जमानत मिल गल। डीपीपी के दफ्तर उनका जमानत के विरोध नहीं करलक जेकर बाद पोर्ट लुइस जिला अदालत में उनका सशर्त रिहाई के बरकरार रखल गल। जायेश गंगादीन बोलन कि ऊ निर्दोष हवन आर ऊ खाली खुफिया जानकारी जुटाई के अपन कर्तव्य के पालन कर ले रलन। दूसर दिन मादक पदार्थ निरोधक विशेष इकाई आजसू के संदेह बा कि ऊ संवेदनशील सूचना आतिश गजादव नाम हुला एको जना के पहुँचल रहल जेकरा जब्त कर गांजा के खेप के संभावित प्राप्तकर्ता में से एगो मानल जाला। एकर अलावा सर्जेंट जयेश गंगादीन के वकील स्टीवन बोवा सोहोबुआ अटोर्नी जनरल गाविन ग्लोवर के पत्र भेजे के इरादा रखत हवन। ऊ अपन मुक्केल के लंबा हिरासत के शर्त के विरोध करत हवन। हालांकि अधिकारी जमानत राशि जमा कर दिले हवन पर प्रोसिक्यूशन पक्ष देने से दायर स्थगन मोशन के बाद उनका रिहाई सस्पेंड कर दिली सस्पेंड हो गल बाटे। वकील के अनुसार कानून देने से निर्धारित मोशन अदालत की फैसला के तुरंत बाद दायर करे के चाहत रहल पर आर एक जगह पर कई घंटा लगल। ई ध्यान दे के योग्य बा कि डीपीपी के निदेशक लगे अब इस सशर्त रिहाई की समीक्षा के अनुरोध करे खातिर 7 दिन के बखत बाटे। घरेलू हिंसा के शिकार महिला लोग अपन सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करे खातिर मजबूर नहीं हवन जा उ लोग के मजबूर नहीं हो के चाहेला। मॉरिशस के संस्था women.mu बोले बाटे कि पीड़ित के सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराए के सरकार की जिम्मेदारी है। संस्था
डोमेस्टिक अब्यूज बिल के स्वागत कर ली बाटी संगठन के

0: एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नाताली जीजिए विशेष रूप से ऊ मामला पर ध्यान आकर्षित कर ली बाटे जेकर में हिंसा के आरोपी सरकार या कोनो सार्वजनिक संस्था दिनी से आवंटित आवास में रहेला। Women.mu मानेला कि ऐसन परिस्थिति में भी पीड़ित के अपन घर छोड़े खातिर मजबूर नहीं करे के चाही। संस्था ई जोड़ देले बाटे और ई बोले बाटे कि कानून में ऐसन प्रावधान हो के चाही जोन पीड़ित के सुरक्षा सुनिश्चित करे के करी और उ लोग के आवास के अधिकार की भी रक्षा करी। दूसरा देश के समाचार में ब्रिटेन में एंडी बर्नहम आज नवा प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाले लगियन। किंग चार्ल्स द्वितीय से भेंट करला के बाद वो आधिकारिक तौर से सक स्तामा के जगह लिहन आज देश के 59वां प्रधानमंत्री बन जाइहन। गल 10 बरिस में वो ब्रिटेन के 7वां प्रधानमंत्री होयन। डार्विन स्ट्रीट के बाहर अपन पहला संबोधन में बर्नहम ई बोले की उम्मीद रखत हवन कि वो लगातार बदलत प्रधानमंत्री के दौर के लेके पूरा सचेत हवन आर देश के जस्ती स्थिर आर जिम्मेदार राजनीति के जरूरत बाटे। एकर दिने ऊ काम करियन, ऊ जनता के कुछ राहत आ सुकून दे के भी वादा करियन आर ब्रिटेन के सामने मौजूद चुनौती आर ईमानदारी से सामना करे के बाद भी बोलियन। यही संगे ई भोजपुरी में समाचार समाप्त भइल। अभी 8:08 हुआ था।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: बनने के समाचार सुना। प्लेनवेट पोर्ट लुइस में 72 बरिस की 3 कोड़ी 12 बरिस के जनाब अब्दुल फरीद हिमामाले जिनका फरीद के नाम से बेदमी जैसे जनाथन जनतकाल कर गल हुआ जो आगे पैंतो साब रहतलन उनका जनाजा आज फजीर के 11 बजे प्लेनवेयर पोटली से उठा के अल एहसान प्लेनवेयर पोटली से उठा के पॉम्पलीमुसिस के कब्रस्तान ले जावल जाए। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM शिवाला लेन लातूर रोड होस्टिया में 73 बरिस के 3 कोड़ी 13 बरिस के श्री देवानंद गिरधारी जिनकरा विनोद सिगिल के नाम से बेदमी जिस जनाथन जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनका घरे होस्टे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दाऊची के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टूरिया 1 PM रॉय रोड घोंगो में 91 बरिस के 4 कोड़ी 11 बरिस के श्रीमती जसोदा सिबरन पैदाश नाम भुवन जिनकरा जसोदा के नाम से भी आदमी जिस जनाथन जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर बेटा देवानंद सिबरन के घर गौगोप से उठा के अंतिम संस्कार खातिर दागुची के शमशान भूमि ले जावल जाए। की मिशन टू डी 2 PM लासूस काट्रोबोन में 59 बरिस के 2 कोड़ी 19 बरिस के श्री देवैन मर्तन जिनका नादैन के नाम से भी आदमी जिस जहाँ जा आज बुलांजरी पैं पेजों के मालिक रलन के मृत्यु होगल बार। उनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनका घरे लासूस का थोबो उनसे उठा के अंतिम संस्कार खातिर सैमौते मोश के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टूरी 1 PM रॉय रोड ग्रैंड रोथ्रेट में 96 बरिस के 4 कोड़ी 16 बरिस के श्रीमती इंद्रावती झरी जिनकरा विद्वंती के नाम से बेदमी जैसे जहाँ थन जाके मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी आज फजीर के 11 बजे इनकर बेटा सचिदानंद मुनिया के घरे गौनगत से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावंचो के शमशान भूमि ले जावल जाए। कमीशन टूडे 11 AM डोफेलिन शातु बेनारिस में 80 बरिस के 4 कोड़ी बरिस के श्री धर्मदत्त कोचिक जिनकरा धर्म के नाम से बेदमी जिस जहाँ था जाके मृत्यु होगल बाटे। इनकर अर्थी काल 11 बजे इनकर बेटा उमेश कोचिक के घरे शातु बेनारिस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गाँव बुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुमोरो 11 AM डिस्पेंसरी रोड विच एमिल थ्रियोली में 72 बरिस के 3 कोड़ी 12 बरिस के श्री इंद्रदेव बंधन, श्री इंद्रदेव बंधन जिनकर आत्मा के नाम से बेदमी जैसे जहाँ था जाके मृत्यु हो गल बाटी। इनकर अर्थी आज फजिल के 11:00 इनकर पत्नी श्रीमती नर्मदा बंधन के घर ही विचय में थ्रियोली से उठा के अंतिम संस्कार खातिर SSS लेन थ्रियोली के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टूडे @11 AM। सोलफेरिनो नंबर 1 वाकुआ में सोलफेरी।

भनौँ नम्बर एक वाकुवामे 60 वरिष्की 60 इयर्स ओल्ड की ती कोडी वरिष्की श्रीमती महेश्री देवीदयाल जिन पैदाशी नाम चकोरिया जिनकरा बीता के नाम से बेदमी जिससे जहाँ तक जाके मृत्यु गल बाटे इनकर अर्थी आज फजीत के 10 बजे इनका घर ही सुल्फिकिनो नंबर एक वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुल्फिकिनो के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टूडे एट 10 AM। शोक आ दुख में डूबल इस सब परिवार के संगे हमने के दिली संवेदना बाटी।

0: एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। 8:48 हुए हैं और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। जी हाँ, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ देने के लिए, और इस कार्यक्रम के दूसरे भाग हम आ गए हैं और सुनते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल।
1: आपकी राशि रेडियो मिश्रस पर। एरीज, मेष राशि।
0: यह सप्ताह नए अवसर लेकर आएगा। रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होंगे। परिवार का सहयोग मिलेगा और मन में नया उत्साह रहेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग है। और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लकी नंबर है 1, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि।
0: इस सप्ताह आपके परिश्रम का फल मिलने लगेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है। घर में खुशी का वातावरण बना रहेगा। धन संबंधी मामलों में सोच समझ कर निर्णय लें। किसी भी बात को लेकर अनावश्यक चिंता ना करें। लकी नंबर है 2, लकी कलर है हरा रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि।
0: ये सप्ताह रचनात्मक सोच और नए विचारों का रहेगा। अपनी वाणी पर संयम रखें। किसी अपने व्यक्ति से प्रेरणा मिलेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्या और कला से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर, कर्क राशि।
0: परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। मन को शांति देने वाले कार्य करें। भगवान की भक्ति और ध्यान से मनोबल बढ़ेगा। आर्थिक मामलों में लाभ के योग हैं। अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेव, सिंह राशि।
0: आत्मविश्वास के साथ किया गया हर कार्य सफलता की ओर बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। किसी बड़े व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। घर में मांगलिक वातावरण बन सकता है। लकी नंबर है 5, लकी कलर है नारंगी।
1: वर्गो, कन्या राशि।
0: ये सप्ताह योजना बनाने और उन्हें पूरा करने का है। मेहनत रंग लाएगी। परिवार के किसी सदस्य की सफलता से खुशी मिलेगी। वाणी में मधुरता बनाए रखें। लकी नंबर है 8, लकी कलर है हरा रंग।
1: लिब्रा, तुला राशि।
0: तुला राशि के लिए संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती है। कला और संगीत से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलने के योग है। धन का सही उपयोग करें। लकी नंबर है गुलाबी, लकी कलर है 6।
1: स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि।

0: इस सप्ताह धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति रहेगी। किसी पुराने कार्य में सफलता मिलेगी। आध्यात्मिकता की ओर मन अधिक आकर्षित होगा। क्रोध और अहंकार से दूर रहें। लकी नंबर है 3। लकी कलर है गहरा लाल रंग।
1: सजिटेरियस धनुराशि।
0: धनुराशि भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा और नए संबंध लाभदायक रहेंगे। विद्यार्थियों और सीखने वालों के लिए ये समय शुभ है। माता पिता का आशीर्वाद सफलता का मार्ग खोलेगा। लकी नंबर है पीला रंग। लकी कलर है पीला रंग और लकी नंबर है 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
0: मकर राशि वालों के लिए मेहनत का पूरा फल मिलने लगेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नए कार्य शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और आराम भी करें। लकी नंबर है 8। लकी कलर है नीला रंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि।
0: कुंभ राशि वालों के लिए नए विचार और नए अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। घर में सुख शांति बनी रहेगी। किसी पुरानी इच्छा के पूरे होने के योग है। लकी नंबर है 4। लकी कलर है आसमानी रंग।
1: पाइसेस मीन राशि।
0: मीन राशि वालों के लिए भक्ति और सकारात्मक सोच आपको हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। इस सप्ताह किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा। दान और सेवा से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। लकी नंबर है 7। लकी कलर है आसमानी रंग।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मशीन। रेडियो मशीन पर
0: चलिए अब एंजॉय करते हैं कुछ 80s के चंद पॉपुलर गाने। और आपने सुना आपका साप्ताहिक राशिफल। बस ये सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, हमारे यही कामना है।

आज बजकर 47 मिनट हुए हैं और यहाँ पर 80s के गाने आप लोगों ने एंजॉय किया, लेकिन का ये खूबसूरत गीत लता जी की आवाज़ में, और इसके बाद आप सुन पाएंगे हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। आज हमने मॉरिशस के मोटिलो टावर पर ध्यान देव जा। वैसे तो मॉरिशस में कितने टावर बा, पुराना पुराना पत्थर के बनावल लाशमीने टावर जन के समुन्दर तट या फिर खेत में आप पाइबा। लाप्रोनेज में ये मजबूत और महत्वपूर्ण किला फोर्ट्रेस पावल जाला, बल्कि इस सकब से बोले कि एगो मजबूत सुरक्षा किला के एगो बेहतरीन उदाहरण है मोटिलो टावर। मोटिलो टावर के एगो बड़ा कानोबा जिन मॉरिशस के समुन्दर नीला समुन्दर के ओर निशाना लगावेला। चला मोटिलो टावर के इतिहास पर नजर दौड़ा जा और देखी जा कि कब और काहे ई बनल रहा। ई मानल जाला कि 1794 में बरतानी हुकूमत के सैनिक लोग कोसिका में मोटिला बे पर चले होला घमासान लड़ाई में ऐसन एगो किला सुरक्षा किला देखले रहलन सा। ई टावर के संचालन हुआ फ्रांसीसी लोग द्वारा होवत रहल और ऊपरे उ लोग कानो छत के ऊपर लगैले रहलन सा। इस सुरक्षा टावर के देख के बरतानी हुकूमत इतना प्रभावित होल कि उ लोग भी अब अपन राज्य बचावे खातिर सुरक्षा खातिर ऐसन ही टावर बनावे के फैसला लेलन सा। बोलल जाला कि इंग्लैंड के समुद्र तट पर और कुछ अन्य कॉलोनीज में भी ऐसने ही किला के कितने बचल कुचल भाग आ पाइबा। इस सब टावर के एगो कॉलोनियल शेप आकार बा, मजबूत मोटा दीवार और बीच में कुछ अलग अलग आकार पाइबा। मॉरिशस के मोटिलो टावर के बहुत सुंदर रूप से म्यूजियम के रूप देवल गल बा, हेरिटेज म्यूजियम के रूप। लेकिन मोटिलो टावर नाम के मोटिला बे से कोनो संबंध नहीं बा। मोटिलो एगो इटालियन शब्द है और एकर मतलब है हथौड़ा। पुराना जमाना में ई टावर के छत पर आग लगावल जात रहल सुरक्षा खातिर। जब दुश्मन नजर आए तब आगा करे खातिर ई आग लगावल जात रहल। इटली के पश्चिम तट पर एगो अलार्म बजावल जात रहल और ई खातिर एगो घंटा पर हथौड़ा से मारल जात रहल। ई सब टावर हमने के मॉरिशस इतिहास और संस्कृति खातिर बहुत जरूरी है। 19वीं सदी में जब मॉरिशस पर बरतानी हुकूमत कब्जा कर ले रहल तब बरतानी के हमेशा से डर लगल रहे कि कहीं फ्रेंच फिर उ लोग पर विद्रोह नहीं कर दे। और तब ऐसन 5 टावर बनावल गल बाजल्ट पत्थर से बनल। लेकिन आज सबसे अच्छा से सुरक्षित जो टावर बा वो मोटिलो टावर है। कार्यक्रम के ध्यान से सुनना, बहुत धन्यवाद। नमस्ते।

चलिए दोस्तों, सोना नोयन के गावल गीत आप सुन रहे हैं और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर। आज की चर्चा प्रोग्राम आप सुन पाएंगे इसके बाद नीतूषा की प्रस्तुति में। तो चलिए ये गाना आप लोग एंजॉय करें।

0: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। संक्षिप्त समाचार आपसे आशिता, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले हम फुटबॉल के समाचार के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन ने जीत लिया है। फीफा विश्व कप 2026 का महामुकाबला दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ देखा गया। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमें गोल नहीं कर सकी और मुकाबला अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। 62वें मिनट में मैदान पर उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल कर स्पेन की को जीत दिलाई। अर्जेंटीना को 93वें मिनट में एंजो फर्नांडेस की रेड कार्ड के बाद उस 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा और इससे पहले स्पेन ने

2010 में पहली बार विश्व कप जीता था। मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन अब वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया है। ये फाइनल मुकाबला आपने MBC पर सीधा प्रसारण में भी देखा और सुना। और तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड से हार के बावजूद फ्रांस के कप्तान किलियान एम्बापे ने शनिवार को मायमी में 2 गोल दागकर फीफा विश्व कप के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया। एम्बापे ने

0: टॉप गोल स्कोरर बन गई है और किलियान एम्बापे विश्व कप के इतिहास में दो बार गोल्डन बूट जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल का 19 जुलाई 2026 यानी कि कल को कांग्रेस के विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। जांच के बाद उन्हें आवश्यक उपचार दिया गया और एहतियात के तौर पर अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्म गोखुल अब अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर लौट सकेंगे। ये जानकारी उन्होंने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक वीडियो संदेश में दी। चिकित्सकों की सलाह के बाद अब उन्हें घर लौटने की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रपति की स्थिति स्थिर है और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा की जाएगी। राष्ट्रपति धर्म गोखुल ने जनता से प्राप्त शुभकामनाओं और समर्थन के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट किया है। सूचना एकत्र करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी अब आपराधिक मिलीभगत में बदल जाती है तो क्या होता है? 94 मिलियन रुपए मूल्य के गांजा जब्ती मामले के बाद यही सवाल मॉरिशस में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार पुलिस जैन जायेश गंगादीन को शुक्रवार को जमानत मिल गई। डीपीपी के कार्यालय ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया। उसके बाद पोटली जिला अदालत ने उनकी सशर्त रिहाई को बरकरार रखा। जायेश गंगादीन का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्होंने केवल खुफिया जानकारी जुटाने के अपने कर्तव्य का पालन किया था। दूसरी ओर मादक पदार्थ निरोधक विशेष इकाई आजसू को संदेह है कि उन्होंने संवेदनशील सूचनाएं आतिश गजाधर नामक व्यक्ति तक पहुंचाई, जिसे जब्त की गई गांजे की खेप के संभावित प्राप्तकर्ताओं में से एक माना जा रहा है। और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मॉरिशस की संस्था women.mu का कहना है कि पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। संस्था ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल का स्वागत किया है। संगठन की एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नाताली अजीजिए ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें हिंसा का आरोपी सरकार या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा आवंटित आवास में रहता है। women.mu का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी पीड़ितों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन में एंडी बर्नहम आज नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात के बाद वह आधिकारिक तौर पर सर स्टार्मर की जगह लेकर देश के 59वें प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में वह ब्रिटेन के 7वें प्रधानमंत्री होंगे। डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने पहले संबोधन में बर्नहम के ये कहने की उम्मीद है कि वह लगातार बदलते प्रधानमंत्रियों के दौर को लेकर पूरी तरह सचेत हैं और देश को अधिक स्थिर तथा जिम्मेदार राजनीति की जरूरत है। और उधर दक्षिण अमरीकी देश गुयाना के तट के पास 116 यात्रियों को ले जा रही एमवी बारीमा नामक नौका डूब गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि अन्य यात्रियों की तलाश जारी है। और चलते चलते हम आपको याद दिला देते हैं कि समाचारों के बाद आप आज की चर्चा कार्यक्रम सुन पाएंगे जिसमें मुख्य मेहमान हैं फागे के अधिकारी संजय सैम्बू और आज उर्वरक और उसके उपयोग पर शेष चर्चा की जाएंगी। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. NBC Radio, हर पल आपके साथ।

0: आज की चर्चा।
1: सबको के प्रणाम, नमस्ते। आज की चर्चा कार्यक्रम में स्वागत बाटे। आज लंदी के दिन है तो चला हमने के जो कार्यक्रम है आज की चर्चा, जो में हमने खेती बाड़ी से जुड़ल बात करी ला जा, एकरा हमने शुरू करी ला जा। और फिर से हमने के मेहमान हवन के फागे के अधिकारी श्रीमान संजय शंभू, चला इंकरा हमने स्वागत करी ला जा। शंभू जी, तुम्हारा स्वागत बाटे, प्रणाम।
2: नमस्ते।
1: कैसे?
2: सब ठीक।
1: सब ठीक बात अच्छा ला। हम ये यही आशा करे थे जा कि तू अच्छा हुआ। जे कुछ हो पूछे के बातें 402-4-02-8-08-5 पर सक बजा फोन करे। और वो आज एगो ऐसा टॉपिक पर हमने बतियाब जा जिनसे हमने सब कौसे अने ऐसा खाली खेतीहर लोग नहीं बल्कि कौसो माते हुए लोग ई कौन ची है। आज हमने बात करब जा पेस्टिसाइड्स। जी हाँ, जो कीटनाशक हमने बोली ला जा, एकर पर हमने बतियाब जा एकर इस्तेमाल।

0: के बारे में हमने सब जिना जानी लाजा, पर कैसे चाहेला इस्तेमाल करे कि कौन कौन प्रकार के कीटनाशक बातें और उस सेफली जन बातें सुरक्षित तरीका से कैसे हमने सकब जाए कर इस्तेमाल करे, आज एक पर जस्ती हमने बतियाब जा। तो शंभू जी हमने के बतावा, जब हमने कीटनाशक पेस्टिसाइड के बात करत है जा कौन ची है?
1: जब पेस्टिसाइड बोला सा तो जैसे कर नाम बाते पेस्ट और सीड बात करें तो सीड बोला मारे के
0: जी,
1: पेस्ट बोला कौन एगो चीज जो हमने के जो हानिकारक है हमने की खेती बाड़ी खाते
0: जी,
1: कुछ हो एगो पिलुआ हो, एगो बीमारी हो, एगो घास हो, तो कोई चीज रही तो के बोला सा पेस्ट। तो सीड जब मैं जुड़ गल तो बोला सा पेस्टिसाइड, तो यानी कि एगो ऐसा एगो पदार्थ के प्रयोग करब जा कि वो जाके हो जन समस्या बातें जन बीमारी बा या पिलवा बा या घास बा ओके मार दे तब बोले सब पेस्टिसाइड
0: जी। तो चले आज हमने यही पर चर्चा करब जा, अभी जान गला पेस्टिसाइड कौन ची है। अब हमने के बतावा कौन कौन चिप जो पेस्टिसाइड बातें जो इस्तेमाल होला।
1: तो आज तोहरा तोहर खेती के एगो पिलवा हानि पहुंचावता तो ओकर खातिर परिप्रयोग करे के एगो इंसेक्टिसाइड के,
0: अच्छा
1: जैसे ओकर नाम देखत है सा जुड़ल बात है, जैसे
0: सीड
1: बोलनी सा मारे के
0: जी
1: ऐसेक, तो यानी कि ऐसेक के मारी, और जब ऐसे इंसेक्टिसाइड तो केवल ऐसेक के मारी
0: जी,
1: इंसेक्टिसाइड हो गल। तब अब एकर अलावा जैसे बोलनी सा बीमारी बात है, तो बीमारी के मारे खातिर अब दू गो चीज बात है, तो बीमारी से अकेला शैंपियन से हो या तो फिर बैक्टेरिया से हो, दोनों मिक्रोब हो
0: जी, जी।
1: तो आज शैंपियन से हो तो प्रयोग करब जा एगो फंगीसाइड, फंगीसाइड पहला जो पहला शब्द बात है फंगी ओ फंगस से आवा यानी कि शैंपियन, तो फंगीसाइड तो शैंपियन के मारे, और दूसरा और बा बैक्टेरिसाइड, तो बैक्टेरिसाइड जन बा तो बैक्टेरिया के मारे, और कभी सिद्ध जुड़ा हुआ तो बैक्टेरिसाइड बैक्टेरिया के मारे। अब एक अलावा जैसे बोलिन जा घास बाते, अब घास के मारे खातिन बाते एबिसिड, एब यानी कि घास, सिद मारे के तो एबिसिड। अब एक अलावा और अनेक प्रकार के भोजी बाते पदार्थ बाते जन प्रयोग होला, तो जैसे जैसे पिलुआवे में
0: जी,
1: अब जैसे बोला सा आकारिया माइट यानी कि जागिए मकड़ा, लेकिन मकड़ा बोला सा, तब बोले के सब ऐसे कैसे ऐसे बातचीत में बोला सा ऐसे खा, लेकिन मकड़ा और एगो ऐसे में अंतर है।
0: अच्छा,
1: तो मकड़ा के मारे खातिर चाहला एगो आकारिसिड, नहीं तो कोई कोई बोला मिचिसिड, तो आकारिसिड यानी कि मकड़ा एगो आकारिया है, तो एगो आकारिया के मारे खातिर चाहला आकारिसिड के प्रयोग करे के।
0: अच्छा,
1: ऐसे किसिद के प्रयोग करब तो ओकर पर प्रभाव नहीं करी
0: जी।
1: अब कैसे घोंघा बात है
0: जी,
1: तो वो गिरीला एगो कैटेगोरी में जैसे बोला सा मोलुस्क, तो ओके मारे खातिर चाहला मोलुसिसिड के प्रयोग करे के,
0: यानी कि मोलुस्क
1: हाँ अनेक अनेक प्रकार के है ऐसे, तो ऐसे से अकेला एक आदगो और हो, लेकिन ऐसे ही चले जला कुंच के मारे खातिर तब सीध रही ओकर में।
0: अच्छा, माने कि जोन जोन चीज बाते घास खातिर बात एगो एगो जोन वीज बाते एगो कर खातिर बाते एगो आकारिया कार मतलब कि ढेर चीज बा जोन जोन करा हमनी जोन पेस्टिसाइड बोलल जला, जैसे जोन जोन नाम हबी बोले हवा
1: पेस्टिसाइड, जैसे एगो कन्ना एगो अम्ब्रेला नेम है
0: जी,
1: जो में सब चीजों का मैं जुड़ा चीज
0: आवे ला,
1: ओकर तरी ढेर चीज बाते कैसे आ चूहा बाते
0: जी,
1: तो चूहा के मारे खातिन तो बोला रा, तो राचिसिड चूहा मारे खातिन हो गया।
0: अच्छा, तो चला अभी जैसे बोले हुआ है जो इन पेस्टिसाइड कर इस्तेमाल होला, जितना जो पेस्ट बाटे डिजीजेस बाटे जो घास उस सब बाटे उस सब के मारे के एपोता हाँ, तो हमने के बतावा जो प्रिकॉशन चाहेला ले हुए के कौन कौन प्रकार के प्रिकॉशन और ये सब काहे एपोता है।
1: तो पहले तो चला समझे के कि जब बोलते हैं सर एगो पेस्टिसाइड तो मैं सीधुआ बना कर मैं मारे के
0: जी,
1: तो कौन ऐसा नेगो पदार्थ बाते जो कुछ के मारी मुआई देखो पॉइजन होगा ना नेगो जहर होगा, तो हाई में हमने किसान लोग कभी कभार कोई कोई होन सा जो नेगो एगो कंफ्यूजन बाते वो लोग में, तो सोचना चाहिए कोई दवाई है भोजपुरी में या क्रियोल भाषा में।
0: पेस्टिसाइड कोई दवाई नहीं है।

0: हाँ तक जब आवेलन से तोरा देखे तब जैसा हम के हमारे लगे हाई समय समय कौन दवाई डालो
1: इगो मिसकॉन्सेप्शन जैसे हमने बोली राजा ना
0: बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है या तो जैसा बे कि मेडिसिन में उपमिते
1: हाँ
0: कौन दवाई डालो तो हाई वो बड़का गलत फहमी है क्योंकि वो किसान के ओकर सबकॉन्शियस में प्रभाव करेला जब वो सोचेला कि कोई दवाई है तो वो लगता है निमन चीज है दवाई है ना तो शायद वो कारण अब जब अपन खेत में वो काम करी तो उतना गंदा आए प्रिकॉशन सब नहीं ली
1: जी
0: तो चाहे ना लेके क्योंकि कोई जहर है अब कैसन कैसन चला प्रिकॉशन लेके तो अब ये निर्भर बातें तू कौन पेस्टिसाइड के प्रयोग करत हो कब प्रयोग करत हो कौन स्थिति में प्रयोग करत हो एक आध गो उदाहरण देला जैसे कि सबसे पहले तो आज एगो पेस्टिसाइड खरीदा तो ओकर जोन ओकर जोन कंटेनर बा ओकर कानेट बा चाहे जोन साशे होए अम्बालाज होए ओकर में देखबा नीचे में अनेक प्रकार के चित्र रहेला
1: हाई जोन हवी बोलत हुआ भाई शंभू हाई ढेर जना नहीं पढ़े लन जाने लन आने लन किने लन
0: हाँ।
1: पर कौन सी लिखल बात है एक बारे में जैसे हमने बोली पक्का स्थित हमने बोली
0: एक पर आई हाई अमल नहीं करेला मैं चाहेला क्योंकि हो जन लेबल आवेला एगो पेस्टिसाइड के साथ ओकर में सब में लिखल रहेला
1: कौन सी रहेला
0: कानून अनुसार तो ओकर में लिखल रहेला कैसे मोड ऑफ एक्शन कैसे काम करेला पेस्टिसाइड ओकर में लिखल रहेला डोजेज कितना है कितना चाहला प्रयोग करके ओकर में लिखल रहेला प्री हार्वेस्ट इंटरवल कितना है यानी कि जब आज प्रयोग कर ला एगो पेस्टिसाइड तो कितना दिन पर ही इंतजार करके तब जाके फसल करके एगो चीज है जो ओकर में ढेर कोई है दिख भी नहीं कहला ओकर नाम है री एंट्री इंटरवल यानी कि देखा जैसे प्री हार्वेस्ट इंटरवल बोलनी जा वो तो है फसल कब करे के आज प्रयोग कर ला डल्ला तब कब फसल करब अब री एंट्री इंटरवल यानी कि आज हाँ खेत में कब आब आज खेत में एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग कर ली ताजे ओकर ओकर लेबल में लिखल हो कनला 24 घंटे या 12 घंटा लिखल बा ताजे 24 घंटा लिखल बा तो यानी कि जब हम हाई पेस्टिसाइड प्रयोग कर देब तो 24 घंटा तक हमके हाई खेत में जहाँ पर ट्रीटमेंट होगा ओकर में चला नहीं प्रवेश करेंगे हाई सब रहला और भी चीज रहला जैसे कि लिखल ला कौन कौन कैसे कैसे सावधानी लेके कौन कौन प्रिकॉशन लेके ओकर में सब चीज ओकर में लिखल लेला कौन कैटेगोरी है कौन कौन ऐसे चीज कौन पोजिशिमिक है वो पर इन्फॉर्मेशन रहला एंटीडोट कौन एंटीडोट रही वो डॉक्टर लोग कहते हैं कब एगो एक्सीडेंट हो जाए एगो कुछ हो जाए तो पर ला बोले के लेकिन नीचे में ऐसे तो पर पढ़ेगे ना लेकिन लेबल के नीचे में टिकट के नीचे में देखबा एक आध गो चित्र बात है ब्लैक एंड व्हाइट में रहला कैसे बोला इकोन आइकॉन कहते रहला एगो दिशा कहते रहला तो एक और रहला एगो दिशा में कि एगो आदमी एगो एगो एगो फ्यूल लेके ऐसे गिरा हुआ था तो यानी कि प्रिपरेशन करा था
1: अच्छा
0: दूसर ओर में शुरुआत होला एगो आदमी कहना हो जो लापागे की स्प्रेइंग के लासा ना तो बतावेला कहना एगो स्प्रे होता तो वो ओर लिखल बा दिशा में कि जब एगो आदमी स्प्रे करा था कौन प्रिकॉशन चाह लेके
1: अच्छा
0: तो अब हवा जे चित्र के देखबा ते को सिक्वेंस में रही उसके बोले जैसी पा चाहला देखबा आए एगो दिशा रही और लेगा चाहला लेगा की दिशा रही तो एक अर्थात कौन छ कि हाई फौजी के प्रयोग करे खातिर जब प्रिपरेशन होता
1: तो चाहला लेगा
0: रहे ओकर में सकी रहे गूगल सिपा एगो विजेर तो चाहला गूगल या विजेर के प्रयोग करे के ओकर में मास्क रही तो चाहला मास्क के प्रयोग करे के बूथ रही तो चाहला बूथ के प्रयोग करे के और जब जब ट्रीटमेंट होता तो में भी तो लिखल हो जैसे लिखल नहीं दिशा हो लेगा की तेगा चाहला प्रयोग करे के मास्क रहेला विजय रहेला या गूगल रहेला अब मास्क भी अनेक प्रकार के है कबो कभार तेरा बताए वो मास्क ओ जी नहीं है कबो कभार बताए कि वो मास्क कॉटरी झूला
1: जी
0: हाँ तो आज कॉटरी झूला बताइले बा अब तू मास्क ओ जी से भी करे तो ये भी नहीं छाबा
1: जी रिस्क हाँ।
0: रहेला अब रिस्क कैसे आवेला काहे चाहेला हाई कोई कोशवा लेके जैसे बोली से जहर है तो जहर तो हमने के प्रभाव करी अब ढेर कोई चीज़ देखा हम तो पियते हैं ऐसा जहर के तो कैसे प्रभाव करी तो ऐसे नहीं चलेला जो इन पेस्टिसाइड बा जब स्प्रेइंग होता या मैनिपुलेशन होता तो सकी कैसे स्प्रे करता हवा बाती
1: जी
0: तो

0: हवा के साथ सकी तो हरी पर आए
1: उड़े ना
0: हाँ ता अब दिशा में लिखा था चला एक ओवरऑल पहने के एक कोट पहने के तो चला पहने के नहीं पहन बा लॉन्ग मार्च सब नहीं पहन बा ता जब हो पिसिसी ऐसे
1: गिर जाए उछल जाए तो कौन चकर बा
0: हवा में आए ता तोहर लापो पर चिपकी ना ता लापो में जब कोई चिप चिपकी ता आप सोबे होला
1: जी
0: या तोहर फोम में ऊपर से तो जस्ती आप सोबे होला फोम कान गला है निवनी वगैरह जस्ती आप सोबे होला ता जितना चीज एक्सपोजे बा ता ओकर में से ता आप सोबे हो अब दूसरा प्रिकॉशन देखा अभी बोले सब ये कह बोले सब प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर अब एक आध गो चीज है हमने के अपन लाबिची दो पर है कैसे एक आध जना देख बा स्प्रे करता ता प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है मिला चला पहने के नेको कोई सकेला एक गो सिगरेट फूकता
1: इधर और भी डेंजरस
0: और भी डेंजरस बात क्योंकि जब सिगरेट फूका जाता सांस ले होता जस्ती और जब सांस ले होता
1: तो सिगरेट के साथ
0: हाँ खींचा तो हाँ एगो और हवे हाथ से जो से मैनिपुले कर तो पेस्टिसाइड जो से स्प्रेइंग कर तो ता ऊ तक सके ला कंटामिने हो गया ता ले गांव वे पहले होता ले गांव वे ता कंटामिने बा ता भावे ले गांव से सिगरेट के पकड़ ले हो ता नहीं ऊ ता ठीक नहीं बात है या फिर एक चीज भूख लगल अभी स्प्रेइंग कर ले है हाथ कुछ धोले नहीं है ता लेके अब जाके एक छोटा सा टुकड़ा रोटी खाब या कुछ खाब ता ऊ भी नहीं छा बात है ता ऐसे अनेक प्रकार के ऐसे चाहेला हम के प्रिकॉशन लेके बचे के क्योंकि ये जहर है
1: अभी भाई शंभू बोला था हुआ जो पेस्टिसाइड वो बात है कीटनाशक वा ये देखो जहर है पर एक इस्तेमाल तो होते आवा था तो जे अच्छा हुए नहीं बात है तो काहे हमने नहीं रोका था ऐसा है जो पेस्टिसाइड वा अगर इस्तेमाल करे
0: हाँ तो ये तो बहुत गहरा सवाल पूछ लो तो देखा ये तो जहर ही है
1: जी
0: तो लेकिन कभी कभार समस्या इतना लेबा और जैसे बोला सा चाहना प्रोजेक्शन करे के कृषि खेती बाड़ी करे के तो क्योंकि चाहना आदमी लोग के खाए के भी उतना चला उत्पादन भी करे के तो हमने के कोई पेगी थोपिकाल में है सर तो कभी कभार पहला प्रयोग करे के
1: जी।
0: लेकिन जब प्रयोग हुला तो चाहना जाने के कि ये वो प्वाजों है कर सही रूप से चला प्रयोग करके सब प्रिकॉशन लेके कैसे बोले सर री एंट्री इंटरवल प्री हार्वेस्ट इंटरवल जब में आई कंसुमाते लोग के प्रॉब्लम नहीं हुई लासांते नहीं बिगड़ी जे प्रयोग करता उकर भी जे ट्रीटमेंट करता उकर भी लासांते नहीं बिगड़ी एनवायरनमेंट नहीं बिगड़ी पानी जोन बा नहीं बिगड़ी क्योंकि धुआं के कबू चल जला वगैरह वगैरह तो आज ऐसे देखब सर ता एक ही बोला सा एगो गन्ना एगो इचिलिजाशो रेजोने
1: जी
0: सही मात्रा में आज प्रयोग कर आप सा तब नहीं बोलता है कि एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुई पर सब नहीं सकल जाने
1: जी
0: लेकिन ऐसे जैसे प्रिकॉशन ले बात ता एक्सीडेंट गन्ना नहीं हुई आई हानिकारक नहीं हुई पर हाँ ये विषय के लेके हमने जाना था ऐसा ये सब प्वाजों है तो ज़्यादा बेहतर रहत कि नई प्रयोग हो
1: जी
0: तो आज नए प्रयोग करवा तो कुछ शाला करके जैसे आगे के एमिशो में बोल रहे हैं जा सकब जा नेचुरल फार्मिंग के अपनाए
1: जी
0: कुछ बियो करे कठिन रहला में अपन अपन अपन पर्यावरण में सुधारन बन माटी में सुधारन तो हर पौधा पेड़ पौधा तंदुरुस्त रही
1: जी
0: तब चली और फिर आज कॉम्प्लिकेशन भी रही तो सकल लाए जो पोजी बियो बा प्रयोग करे उतना उतना टॉक्सिक नहीं रहेला नहीं बोलता है कि वो अच्छा है नहीं जितना चीज मारेला बियो भी बियो पेस्टिसाइड है देखा पेस्टिसाइड में आगे में बा बियो है लेकिन जो मैं सिद्ध भी बात है तो वो भी मारेला तो कोनो चीज जो मारेला तो नहीं सकेला कि 100% जैसे बोला सेफ है ओकर में एगो निवो टॉक्सिसिटी रहेला ओकर से भी चला बचे के लेकिन जब तुलना करब जा एगो पोजी बियो और एगो पोजी सीमिक के तो बियोआ तक कम थी टॉक्सिक रही
1: जी तो चलो हमने के साथ देवा था हुआ कुछ हो पूछे के बाद 402-85-85 अभी एक चीज बोल ले हुआ ढेर जाना अपन इस्तेमाल स्प्रेइंग वो सब करे था हुआ और वो सिगारू से फूकता हुआ यही तो जहर भी बातें तो हमने मांग कर अब सा कि नहीं चाहे ला स्मोक करे के स्मोक किल्स जैसे हमने अंग्रेजी में बोली राजा तो हमने संगे जुड़ल हुआ बहुत बहुत धन्यवाद अभी जैसे बोला था हुआ जो कीटनाशक है अब बोला था वह वो इस्तेमाल होला जन घास बाटे उन लोग के मुआ के आजकल तो घास वो तो इस्तेमाल होला आज तक देखा था घास के उगावल जात बाटे और जो निमन घास बाटे तो हयो बाटे तो कैसे जनब कौन चीज चाहेला चुनाव करे के कैसे चूज कर बेस्टिसाइड अब धरला पलडामून बाटे

0: ते आलू बातें एक एक ऊपर सिसर जुन बातें वो सब में तो इस्तेमाल नहीं होला कैसे चुनब
1: हाँ ओका से आगे एगो चीज और बोल देला
0: हाँ
1: और जन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बातें ओका पर हम एगो मांग करेला किसान लोग के हमके जब खेत में जब जाएला जा देखिए किसान लोग का करेता या फिर गाड़ी से कहूँ जात रहेला सा लोग के ला अनेक किसान लोग या जो आप कहते हो लोग आई लेकिन जो प्रोटेक्शन के बाद प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं पहन ले या तो फिर बूट नहीं बाते बूट नहीं बाते या तो फिर लेगा नहीं बाते या विजय नहीं बाते या तो कुछ नहीं बात शोट पहन के आई आई शोट टी शर्ट पहन के ऐसे प्रयोग होता हमें को मांग करती ऐसे नहीं करा जा
0: जी।
1: देखा हमें को चीज बुलाता है हम अभी तभी इंफॉर्मेशन यूनिट में है मैं हाल ही में हम तो उत्तरी इलाका के इंचार्ज रहनी खाली हये बरिस अभी जुलाई महीना में ऐसा हम तीन गो ऐसा किसान के जाने ला जो कैंसर से देहांत हो गया
0: जी
1: खाली हाई बरिस के बाद इतना हम उतना नहीं जानता है
0: हाँ
1: क्योंकि
0: नहीं सकेला वो लोग जो इस्तेमाल कर रहे थे सकेला।
1: सकेला क्योंकि किसान के उम्र भी बा सकेला
0: जी।
1: कैसी जन्म नहीं हम नहीं जान अब आज अस्पताल में आज इसमें चुनाव सब होता ठीक से एनालिस हुई गहरा एनालिस हुई आप फोन जी से
0: मतलब कि वो लोग जो काम कर रहे थे वंसा है जो इन पेस्टिसाइड कीटनाशक के इस्तेमाल कर रहे थे वो लोगों अपन जीवन के आगिस्क में डाला
1: था वंसा बिल्कुल ता जैसे बोला था आज हाउ हमने के दिमाग में सबकॉन्शियस जैसे बोला सा जैसे बोला सा दवाई है ता आज बोला सा दवाई है ता शिशाब सा ता नहीं चाहे ला प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पर सी दवाई है
0: जी
1: क्योंकि दवाई है लेकिन आज हम अपने के दिमाग में डाल जा कि आई एगो जहर है तब जाके जानब से ना कि कितना चला हम कि चला प्रिकॉशन ही लेके ता एक जना के और जानी ला ओके ओके एगो ऐसा नेगो बीमारी होलवा उ पेस्टिसाइड से होला हर्बिसाइड से होला ता ओका से होलवा भी ट्रीटमेंट कर लेता ता ये सब दिल टूट जाला हाय हाय जब ऐसा ऐसा समाचार मिलेला
0: जी
1: ता हम यही मांग करती सब के प्रिकॉशन चला लेके चाहे ला प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने के और सही मात्रा में प्रयोग करके शुअ दुजाज नहीं करके वगैरह वगैरह नहीं करके
0: तो एगो कंट्रोल होला फागे देने से कुछ होला एगो कंट्रोल एगो सरप्राइज विजिट कुछ होला
1: देखा फागे सबसे पहला एगो ऑथोरिटी नहीं है
0: जी
1: एगो ऑथोरिटी एनफोर्समेंट है ऐसे बोला सा एनफोर्समेंट ऑथोरिटी नहीं है जैसे कि पुलिस बातें पुलिस जाके उसकी किसे स्पीडिंग कर लो तेको फाइन दे दे अमाउंट दे दे एगो जुर्माना दे दे फागे ऐसा नहीं ऑथोरिटी नहीं है और कभी एनफोर्समेंट पावर नहीं बाती फागे रिसर्च करेला और डेवलपमेंट आने ला और एडवाइजरी करेला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेला तो हमने के काम है अपस्किलिंग करे के किसान लोग के कादरी करे के कैसे अभी
0: सुविधा देके
1: मंत्रालय के नीचे कृषि मंत्रालय के नीचे एगो दूसर एगो ऑथोरिटी बा शायद अगले अगले प्रोग्राम में सबसे बचाए ओकर नाम पेस्टिसाइड्स रेगुलेटरी ऑफिस तो वो लोग के जो अधिकारी हो लोग जाके एसोसिएशन लेवल या तो खेत में या तो बाजार में मंडी में या तो नेशनल होलसेल मार्केट में तब एनालिस करके भेजल तब वो लोग के जब रिजल्ट मिलेला तब जान कि में जो रेजिड्यू बोला पेस्टिसाइड के जो मात्रा ऑथोरिजे बा लीगलमेंट ओकर नीचे बा ओकर ऊपर बा या फिर जो फौजी के प्रयोग होता वो ऑथोरिजे रहल या नहीं ऑथोरिजे रहल तब ओकर से वो लोग फॉलोअप कर लें हमने के भी रापो देवल तब हमने भी फॉलोअप कर ला चा
0: अच्छा आज हमने 2026 में है जब आई शंभू तो हमने के बतावा ढेर जना जैसे बोलत हुआ जितना हो सके हमने जो जैविक खेती ढेर जना अभी करत हुआ माने कि जो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल नहीं करत हुआ पर ढेर जना जो करत हुआ वो लोग के कोनो ट्रेनिंग मिलेला
1: हाँ हाँ
0: जब एगो पेस्टिसाइड इस्तेमाल करत हो हाँ, तो लोग काहे के लोग एनरजिस्टर हो वंस तो जब करत हो वंस एनरजिस्टर में बोले तो वंस ईद जो पेस्टिसाइड कीटनाशक के इस्तेमाल करब तो कोनो ट्रेनिंग मिलेला इस सब में
1: हाय हम आखिरी में बोलती सबके आए के तफागे के ओर आए के जहां भी हमने के दफ्तर बातें हमने रीजनल बेसिस में जहां पर भी हमने के दफ्तर बातें वहां पर जाइए अपन नाम दर्ज करिए हमने को ट्रेनिंग दे दिया सा का नाम है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पांच गो मॉड्यूल है पांच गो सेशन हाफ डे सेशन है यानी कि आज सोमवार के अलावा 9 से 12 तो पांच गो सोमवार हर सोमवार के से जाए 9 से 12 तक

0: या फिर शाम के एक से चार
1: वो लोग के सुविधा के हिसाब से जी
0: हिसाब से रहेला तो इस ई में ई ट्रेनिंग में तोरा जैसे अभी बातचीत करते हैं सर जस्ती जस्ती गहराई में जाप जा देख तो हम तोरा तोरा तब है क्योंकि ढेर कोई सोचेला खाली एगो एगो फौजी के लेके पानी में डाल के मिला के चला स्प्रे करे ऐसे नहीं चला काली भाषो है के चला जाने के कैसे हो सब गुटले सब है जब आए पत्ता पर
1: जी
0: पड़ता तो कैसे चला रहे के तो हमने फागे के वो रहिया जा अपन नाम दर्ज कर लिया जा तो ट्रेनिंग के नाम है यूज ऑफ पेस्टिसाइड हम मांग करती जितना किसान लोग बा जो पेस्टिसाइड्स के प्रयोग के लिए जो नहीं भी करेला और तू भी आइया क्योंकि तो लोग खातिन भी अच्छा बा जन बजा कि कैसे पेस्टिसाइड्स को जहर है कैसे हम पर असर केला और कैसे चलना पर प्रयोग करे के
1: जी
0: और एक चीज बोलती यही पर कि देखा इस तरह ट्रेनिंग के बाद लेकिन एक हमें ओब्लिगेशन भी भाला लवा के ओर से कानूनन ओर से क्योंकि एगो कानून बा परनामा यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के है ओकर में एगो प्रोविजन बाते कि बोलेला कि कोई भी जो खेती बाड़ी के जो करेला या फिर खेती बाड़ी में जाए पेस्टिसाइड्स के प्रयोग करे उ नहीं सकी पेस्टिसाइड्स के ओकर प्रयोग करे आजे ओकर लगे एगो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग पेसिस पर नहीं होई तब
1: इता अच्छा बात
0: तो आज तो एगो खेतीहर हो पेसिसिट के प्रयोग करत हो तो हर लगे हो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग नहीं माजो हमने दे ला जा तो कानूनन रूप पर
1: नहीं सक भाई इस्तेमाल करे
0: हाँ तू एगो तू लालवा के ऑफेंड करत हो तो आज गन्ना एगो एगो सिचुएशन एगो स्थिति बताएला आज तोहर खेत में से एशोचो लियाल और तोहर खेत है ना
1: हाँ।
0: तू ने कले बता कोई के बोल ले बा अब तो कोई नहीं आके तोहर खेत में
1: रिस्पांसिबिलिटी हुआ तो हो जाए
0: हाँ। ना ताकि की जुर्माना भी मिले
1: ये अच्छा बात है ये जो बात बोला था वह जब लोग एक जन प्रशिक्षण वहाँ नहीं मिली ट्रेनिंग वहाँ नहीं मिली तो नहीं सक भाई इस्तेमाल करे तो ढेर जाना के हमने अभी ध्यान से सुना था वंजा तो तू तोहरो मन बाते खेती बाड़ी करे के अभी ढेर जाना सोचा था वन जानी लंजा कि हाँ आजकल माटी के मोल बाते तो चाहे हमने के माटी के पकड़े के तो जे चाहत हुआ ताही जो पेस्टिसाइड यूज ऑफ पेस्टिसाइड जैसे बोला हुआ को ट्रेनिंग प्रशिक्षण चाहेला निमन से लेवे की तो चले गए छोटा सा मिस्कर ब्रेक के बाद हमने वापस आएला जा

अरे का भाई हो बड़ी दुख बेटा डटला नहीं हो तब बहु मर रहा नहीं हो

ए दादा कहाँ जाला बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो तो का भाई हो

0: तो निमन से सुन ला अन्यथा के बेटा बड़ी मार मारेला जे निमन से अपन पेस्टिसाइड जोन बातें कीटनाशक के इस्तेमाल नहीं करबा सुरक्षित तरीका से नहीं करबा तो फजत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमनी के संगे जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में। और आज हमनी यही पर चर्चा करत है जैकि कैसे चाहेला एकर इस्तेमाल हो के और कौन प्रकार से जमी हमनी सब खाली जन खेतीहर नहीं बल्कि हमनी सब को सुमाते हैं। जितना जना हमनी कहे कि जब पेस्टिसाइड डालत हुआ अपन कारों में अपन खेत में तो सब कोई के वो जो प्रभाव बा वो पड़ेला। तो हमनी के मेहमान हवन फागे के अधिकारी श्रीमान संजय शंभू जी। तो भाई शंभू अभी तोहर से पूछ ली एगो प्रश्न जो कीटनाशक बाते का कि जैसे बोलत हुआ जो अभी आज का कितना बैक्टेरी बाते कितना प्रॉब्लम बाते बीमारी बाते तो एक ही जन जन फौजी बाते जो पेस्टिसाइडवा बाते वो सब में तो इस्तेमाल नहीं करबा ना।
1: नहीं नहीं
0: तब कैसे चाहेला कौन कैसे करबा।
1: एकर से आगे हम एक में एक चीज और बोल देला
0: जी
1: कि देखा हम के जो खेती बाड़ी रहला वो बिल्कुल एक बच्चा के खेती करती है एगो चिबाबा जैसे बोला जा ता तोहर तोहर घर में एगो नन्हा मुन्ना बच्चा आल बाते ता एगो प्रश्न पूछती क्या तू ओके हर हफ्ता पनाडोल पियाई तो पारासीटामोल पियाई तो दवाई देता नहीं कौन ची करता ओके जन देख रेख चंगा दे के पहला ओके दिबा फिर आजे एगो समस्या आए तब जाके डॉक्टर के पास लेके जाए
0: जी बीमार हुई तब ना।
1: हाँ जी बीमार हुई तब नहीं तो ऐसे तक कुछ नहीं दिबा ना। तो खेती बाड़ी बिल्कुल चंगा ऐसे ही करेंगे। सबसे पहला जो हमने सोच ला सा चंगा कुछ हो का दलायो कर में तो ऐसे नहीं चलना सोचे कि
0: जो जो कारण हुआ बातें जो रीजन बातें काहे बीमार होल हाउ चाहे जाने की
1: देख जाने की। तो सबसे पहला ये हम उदाहरण काहे दे बताएं क्योंकि एक एक एक जना के एक व्यक्ति के कैसे आज छोटा ही

0: से करना पास तामुल लेते आवता या फिर
1: एक आदत पड़ जाला
0: उबलल पानी पीते आवता
1: आदत हो जाला ना
0: आदत हो जाला तो कल नल के पानी पीता बीमार हो जाए वगैरह वगैरह होला ना तो खेती बाड़ी
1: उसने
0: वैसे होला छोटा से ओके जब पौधा रहेला ओकर में पेस्टिसाइड के प्रयोग करते डालत तो ओके को सुविधा मिलेला तो ओपन ओकर डेवलपमेंट में स्ट्रेस नहीं होता तो वो नाजुक रहेला
1: जी
0: तो तू जय कोई तोकर में आए पेस्टिसाइड के प्रयोग करबा ओके जस्ती नाजुक बनाई ले जाएगा
1: और मलदिया बना दे
0: और मलदिया बना देबा तो वो कारण चाहला एगो खेती बाड़ी में ओके ओके जन स्वयं चाहला दे के ओकर माचे ऑर्गेनिक ओकर ओकर पानी सिंचाई वगैरह वगैरह पहला चला ई कर पर ध्यान दे के
1: जी
0: जब मैं हमेशा तंदुरुस्त रह तब जाके एगो समस्या आए तब जाके देखब जा कुंजी के प्रयोग करब जा नहीं तो नहीं प्रयोग करब
1: जरूरत पड़ी तब
0: अब जब आज जरूरत पड़लक तब भी अब देखा एगो उतना कहना एक बीघा पौधा बाटे ओकर में एक जगह में एगो चीज एगो समस्या बाटे तो वो कारण चला है
1: नहीं छिड़क बब
0: नहीं नहीं वो जाके पत्ता तोड़ देबा या डाली तोड़ देबा तोड़ के निकाल
1: सारी ताशों कर देबा
0: ताशों कर देबा तो हो जाए अन्यथा अब गला एगो समस्या ही बात है जो देखा तो कि जैसे बोला सा इकोनॉमिक में प्रभाव करी और खेती बाड़ी के तब चाहला एगो जाँच करे के कि देखा है जन समस्या होता कौन सी कारण होता एगो पिलुआ है एगो बीमारी है एगो बैक्टीरिया एगो
1: आजकल हमने बात करे थे शौच क्लिमाचिक जिन मौसम के बदलाव हमने देखा था एक से जुड़ल ढेर बीमारी सब मिला
0: हाँ बिल्कुल कभी गरम कहला तो निमिचते दे रहला तो कारण
1: दूसर
0: बीमारी चलावेला ठंड पड़ेला तो दूसर अर्ली ब्लाइट रहला लेट ब्लाइट रहला अंतर रहला तो एक में आप चाहेला जाने के कि एगो एगो एगो स्वापरी करे के ना कुछ चना आए जाके खरीदे के प्रयोग करे खातिन तो कैसे करल जाए चला जाने के समस्या कौन सी है
1: जी
0: खाली बोलला से पिलुआ बाते ये समाधान नहीं है बोलला से बीमारी बाते ये भी एगो उत्तर नहीं है चला जाने के देखा पिलुआ बात है कौन पिलुआ बात है
1: मैंने कि एनालिसिस चाहिए करे के
0: आज तोहर अनुभव रही एक्सपीरियंस बातें तो सक बच आपने से जान जाए नहीं रही तो फाहे के जो हमने के क्रॉप एक्सटेंशन डिपार्टमेंट बातें सक बच ओकर ओकर दफ्तर में जाए या फिर फोन से ऑफिसर के बोल दे या फिर सक बच वो इशोचू आन दे तो बेहतर रही क्योंकि कोई के नहीं पड़ी वही दिन आज लेके आएबा तो इशोचू देख के सकब सा बोल दे देखा ये है पिलुआ है तो चला ऐसे वगैरह वगैरह प्रिकॉशन लेके या फिर चला अगर ट्रीटमेंट ऐसे करके तो पिलुआ में अनेक प्रकार के पिलुआ है एगो पिलुआ है जैसे पत्ता खाला
1: जी
0: जैसे कत्ता पिलुआ बाते तो ओकर ओकर ओकरे से लिपटे खातिन दूसर प्रकार के पोजी बाते कोनो पिलुआ बाते जैसे एफिज बा फ्रिप्स बाते एक बोला सा सकिंग इंसेक्ट्स
1: जी
0: तो एकर एकर तो ट्रीटमेंट अलग रही जो दूसर पिलुआ जैसे शुरू में बोलनी आकारिया वंश मकड़ा तो एक आज जन्म मकड़ा है तो चला अलग से एक से लिपटे के अब एकाध गो बीमारी है जैसे बोलनी शौपियों है बैक्टेरी बा अब शौपियों अनेक प्रकार के है हर एक जीवा शौपियों के शायद दूसर पोजिशन
1: मतलब कि एक इवैल्यूएशन जनरल चाहेला सबसे आगे करे के तब जन्म कोनो प्रॉब्लम बा कि नहीं बा कि
0: एक कौन प्रॉब्लम बा
1: कौन प्रॉब्लम बा हाँ
0: स्पेसिफिकमा और आगे एगो प्रश्न पूछे लला कि कोनो तक घास नहीं मन है तो कैसे जन्म अब हाँ तो ये अनुभव से आवेला देखा जन जन घास तोहर खेत में बाते जन तू सोच तो मारू बाते वो नेसेसरी नहीं है कि हमार खेत में हवे घास मारू बाते उस अकेला हव घास हमार खातिन लाभदायक बाते इसे एगो एगो एगो उदाहरण देला कैसे बोला सा लेप विल बाग बिडेंस पिलोजा लेप विल बाग लिप्टा बोला सा लिप्टा कंटा कड़िया कड़िया कंटा कहते रहला हमार खेत में हम भी खेती बाड़ी कैला हमार खातिन लाभदायक है छोटा छोटा रहला एगो एगो गाजों कहते हो जला ओकर में खूब कोक्सिनल आके रहे लंच
1: तो
0: हवे कोक्सिनल निकल से आके जो हमने के लालू बाते भिंडी बाते ओकर में आके पिलुआ के खाला जो मिर्च बाते ओकर में आके पिलुआ के खाला बैगन पर आके खाला तो लाभदायक बाते तो चला जाने के तो हम छोड़ देला तो ओकर में रहे लंच तो कोक्सिनल आवेला तो नहीं सकब से जाने की तोहर सिचुएशन में तोहर स्थिति में जो मारूबा नेसेसरी ना कि हमारे स्थिति में उमारु बाते चाहे एगो स्वीवी करे के चाहे जाने के
1: ऑब्जर्व ही चाहे
0: ऑब्जर्व ही करे के
1: जी

0: 운치 왔다. 내가 이거 처럼 다른데라. 그래서 이거 이거 가서 오케이 보다 사 트레프. 응. 에? 옥살리 트레프. 지. 트레프 앞에 앞에 무란이 허. 근데 전 캐티할 레슨으로 봤다.
1: 지.
0: 오케이 레슨 보이다 사간라 फसल के भीड़िया होता फसल तो चार महीना आधा लगभग में हुआ तो कहना तीन महीना हो गल बा अब हाउ हाउ हाउ लिपुकवा में तो ट्रेफ हो गल बा तो ट्रेफवा में एगो बीमारी आवेला वहाँ ले हुई रस्ट तो उता लहसुन ने भी हुआ तो देखा इस स्थिति में ये जन ट्रेफ बाते अब तक हानिकारक हो जाए क्योंकि यहाँ से जो ले हुई बात सकी लहसुन में पहुंच जाए लेकिन हवे ट्रेफ जो में ले हुई होता एक दूसर खेती में रहत जहाँ पर ले हुई नहीं हो ला खेती में तब तब एक प्रभाव नहीं कर छोड़ दे
1: तो हमने देखा था जो को लाभोताज वो बातें सब कोई के डिजावताज वो बातें अभी को चीज दिमाग में आल शंभू जी की ढेर जो न खेती हर अवन वो लोग कोकतेल बनावन लग जा तैयार कर लग जा निमन बात है कि नहीं
0: नहीं कोकटेल रिकमेंड नहीं है कौन सी होला कि किसान लोग जब वो लोग के ट्रीटमेंट करे के बाद तो सकेला
1: जब कोकटेल बोलो थे सर कौन सी है
0: कोकटेल यानी कि मिलावट के लंच मिलावट के लंच उस सकेला दुगो फोंसिसिड मिला दे हो संगे दुगो एसेक्सिसिड मिला दे हो संगे या फिर एगो एसेक्सिसिड मिला दे हो एगो फोंसिसिड संगे तो वो कौन सी खोजता करे कि उस चतुर्य का कारों में पिलुआ और बीमारी दोनों के लिपटे के बाद दोनों में लेकिन रिकमेंड नहीं है और ये एगो बहुत मूवी प्राचिक है आज क्योंकि आज नए जन्म कुंज की मिलावट हो तो सकेला कोट भी कर दे और त्योहार कारू के जरा भी दे
1: जी
0: हाँ और एगो चीज चला समझे कि सकेला कोई हो हमने पिन पॉइंट नहीं करता है कोई हो जो वो ऐसा एगो सुझाव सकेला प्रस्तुत करत हुए किसान लोग के
1: सकेला वो इस्तेमाल कर ले बोले तो हाँ वो निमन से काम
0: है तो पैसा बन जाए मैदे में इकोनॉमी हो वगैरह लेकिन किसान के चला सोचे कि सकेला ये जो जो आदमी बातें जो ये सुझाव देवता शायद शायद वही नहीं जानता कुंच बकता ऐसे ही बोलता बकता क्योंकि कुंच होगा कहने को बालफाने किसी बोले बालफाने तो कहने को बालफाने करत हो ना जाना तो पिलुआ के समस्या बातें ना जाना तो बीमारी के समस्या बातें कुछ कर लो एगो एसेक्टिसिड और एगो कोई एगो रिकमेंडेशन कर लो एसेक्टिसिड और एगो फोंसिसिड के मिला के डाल दा देखा कोनो एगो चीज रही था थोड़ा सुन प्रभाव करी ना तब बुझा थोड़ा सुन काम कर लो देख लो
1: ये तो सबसे डेंजरस बात बताए
0: कभी कभार ये इलिसिट मार्केटिंग में भी आवेला कि कोई फॉर्मेशन बातें वगैरह वगैरह तो नहीं जानते ऐसा लेकिन रिकमेंड कर दिए
1: और एक कॉन्सिक्वेंस जो बात है सब कंज्यूमर के
0: आज एक फोंसिसिड के काम नहीं रहा हो उस समय लेकिन डाल दे तो खर्चा तो कर लो ना
1: जी
0: 5-6 हज़ार कितने भी हो एक खर्चा कर लो अनिवार्य नहीं रहा प्रयोग कर लो तो खर्चा कर लो
1: जी ये सच्ची बात है तो जितना जना अभी काम करत हवन खेत में हवन हम इसी यही आशा करत है जा जो काम करी ला जा बोली ला जा ईमानदारी से करबा तो कर फल मीठा रहेला जे सोचत होबा कि हाँ है मिलावट है हाँ मिलावट है ऐसा तो ये सब काम में नहीं आवेला
0: और कुछ समझे कि कैसे एगो पेस्टिसाइड में बैक्टेरिसाइड में एगो प्रोड्यूस है ओकर माचाक्टिव कॉपर से है
1: जी
0: कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड तो हाई जो प्रोड्यूस है ये अल्कलाइन रहेला एंड पीएच 7 से अबव है 8.5 वगैरह अबव तो अल्कलाइन रहेला अब तू एगो दूसर पदार्थ के प्रयोग करबा वो एसिडिक रहेला अब बिल्कुल कुछ होल एसिडिक के लेके अल्कलाइन में लेके मिला दिल तो जो अल्कलाइन है वो नीचे हो जाए जो एसिडिक है ऊपर हो जाए तो जो लॉबियोनमा में काम करेला पानी में जो काम करेला प्याश में जो काम करेला वही बिगड़ गया
1: जी
0: दिखला था नहीं काम करी निमन से
1: ये सच्ची बात है तो चला सोच समझ के काम करिया इस्तेमाल करिया जो कीटनाशक के इस्तेमाल करत हो जो चाहेला इस्तेमाल करे के हमने बोली ला जा जो कीटनाशक हो वो अंतिम समय में चाहेला इस्तेमाल करे जब कोनो सोल्यूशन में नहीं मिलता तो जैसे बोला था भाई शंभू कि जो कीटनाशक है उस सब तो दौजगे हवन सा तो कैसे हमने जो इफेक्टिव वंस हवन सा ओकरा हमने इस्तेमाल करब जा चुनाव करब जा और कौन काम करेलन और कौन

0: जो जैसे बोलिए लीस्ट हार्मफुल.
1: जैसे बोलनी देखा जो भी पेस्टिसाइड बाटे बियो पेस्टिसाइड हो या पेस्टिसाइड हो एक पेस्टिसाइड रासायनिक केमिकल और बियो था बियो बाटे दोनों में था सीधी जुड़ल माना दोनों मारेला दोनों में टॉक्सिसिटी बाटे लेकिन जब तुलना करब तब बियो पेस्टिसाइड के तुलना करब प्रोड्यूस शिमिक से तब बियो पेस्टिसाइड जस्ती सेफ रहेला
0: जी. हाँ
1: अब कौन पेस्टिसाइड के प्रयोग करब इतना निर्भर एक समस्या कौन सी बात एक पर बोलती कि फागे ओर से हमने के पुस्तक बातें हुआ गीत आगे कोल 2019
0: जी
1: पुस्तक के रूप में बातें जो हमने के मेन ऑफिसर्स बातें कैसे मॉडल फॉर्म बातें डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर्स बातें और फिर सैंपियर जहाँ पर तो वहाँ पर ही बेचाला सबक खरीदे या फिर ऑनलाइन हमने के वेबसाइट fage.mu ओकर में भी बातें तो सब ओकर में कंसल्टे करे और ओकर में जो खेती बाड़ी करत हुआ तो हाँ खेती बाड़ी के कैसे तभी लहसुन के बात बोलनी तो लहसुन के शिक्षों में जेब तो स्पेसिफिक में कौन सिचुएशन बातें कौन समस्या बातें कौन पिलुआ बातें आज जान गए ओकर में देख तो थोड़ा ऑप्शन मिली बियो के या फिर रासायनिक के हाई एगो तरीका बातें दूसरा तरीका बातें क्योंकि वो तभी 2019 में पब्लिक हो रहा है आजकल तो अनेक प्रकार की बियो पेस्टिसाइड मार्केट पर बा
0: जी.
1: हाँ तो ये सब अपडेटेड इन्फॉर्मेशन खातिर सकबा हमने के दफ्तर में जाके जो हमने के एक ऑफिशियल विलगारिजेशन बातें ओकर से भेंट करे ज़्यादा जानकारी के लिए.
0: अच्छा हमने के जो कार्यक्रम बातें अभी तनी देर में समाप्त हो जाए हमने के बतावा अभी जितना चीज़ हमने बताई लीजा जो पेस्टिसाइड कीटनाशक वो खुला मैदान में हभी ले बात करत रहा लीजा. अब जो आजकल तो हाइड्रोपोनिक बातें लासिया बातें ढेर लॉम्पलर ले हुआ था तो हाउ जो जो कीटनाशक को कर इस्तेमाल होला.
1: हाँ होला और एगो चाला समझे कि जैसे बोलता हाइड्रोपोनिक वो ओके क्लासीफाई कर सब प्रोटेक्टेड कल्चर में यानी कि एगो पोटेक्शो माने प्लास्टिक या तो ऊपर और नीचे भी प्लास्टिक बाटे शायद ज़्यादातर ऊपर रहेला और साइड में नेटिंग रहेला लेकिन तो एगो कैसे बोला ऐसा एगो जगह है जो नौफिया में बाटे तो ऐसा एगो जगह में जब एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग करब तो हाली से कैसे आंगन बाहर में रह तो हाली से जिसी पे हो जला तो वहाँ पर तो रहेला
0: जी.
1: तब एगो प्रोटेक्टेड कल्चर में आज तू एगो फौजी पेस्टिसाइड के प्रयोग करते हो रासायनिक पदार्थ के प्रयोग चाहे बियो भी हो बियो पेस्टिसाइड के प्रयोग करते हो तो तोहर तोहर स्वास्थ्य पर सकी जस्ती
0: प्रभाव
1: करे. हाँ
0: जी. हाँ जो बड़ी चाहेला सोच समझ के इस्तेमाल करे ही. अच्छा तो चलो हमने के कार्यक्रम समाप्त हुआ था जैसे आगे जितना जना अभी तोहरा सुनत हो जब ध्यान से जो लोग इस्तेमाल करे लन जो रासायनिक पदार्थ है जो पेस्टिसाइड कीटनाशक वो बाटे वो लोग के कोई मिसाज दे
1: दो चीज बोलती
0: ओकर से आगे एगो चीज याद आ बाटे हमने बोले ला जा जो पेस्टिसाइड एगो साइलेंट किलर है.
1: अच्छा हाय एगो चीज रहा जो ना के बोलती. हाँ हाय हाय चाहला हमने सब के समझे के देखा जब पेस्टिसाइड से एक्सपोजे हो आजे तोहर पर गिरल वगैरह या कुछ हो एक्सपोजे हो लगन महकल है नहीं होने सांस में ले लकेला इरिटेशन हो या
0: इफेक्ट तो हो
1: तोरा लौकी तो वो जो तोरा लौकता या नोजे होता वो एगो लेफे सकेला टोंपोगे हो जनल सबसे
0: खतरनाक
1: है जब नहीं जनल
0: वो अपन लिफे दिखावा था
1: नहीं. हाँ लिफे नहीं जनाए
0: जी
1: तू इतना ले बरसों से सालों से बरसों से महीना साल से पेस्टिसाइड के प्रयोग करत हुआ एक्सपोजे हुआ तो पेस्टिसाइड गति गति छोटा मात्रा में कल्ले तोहर तोहर लेको में अंदर में जाके बैठा था और तोहर लेको नहीं सकेला निकाले तू नहीं जनब इतना साधारण रूप से चला तो फिरा तो हंसा तो खा तो सब चीज नॉर्मल बातें नहीं जनब तो गति गति गति गति आकी मिली हुई ले जाए तब एगो क्रोनिक एक्सपोजर रही यानी कि ज़्यादा ही एक्सपोजर हो ले गया तब कॉम्प्लिकेशन हो लगी तब तोरा बुझाए ज्वाय दुखाता या तेज कला कैसे हम बोली शुरू में बोली बहुत दुख के बाद बाकी किसान के हम जानते हैं जो

0: समस्या में होता है कोनो मर गया लंच कोनो अभी ट्रीटमेंट करता है कैंसर से मर गया लंच वगैरह हमने बताया कि कैंसर पेस्टिसाइड से हो लेकिन नहीं जाना था ना कुछ से हो तो चला और जान ही ला कि एक आदमी पेस्टिसाइड से कैंसर हो ला
1: जी
0: हो ला तो हम बोलते कि देखा जैसे बोला पेस्टिसाइड एगो साइलेंट किलर है क्योंकि वो आके वार्निंग नहीं देवेला कि देखा हम तोहर शरीर में है हम तोरा हानि पहुँचा ऐसे नहीं है वो आके तोहर लेको में आके मिले हो जाता तब एक दिन ऐसा आए कि तोहर तोहर जो लेको बा नहीं सकी उतना पेशी के आके मिले करे सस्टेन करे तब कॉम्प्लिकेशन शुरू हो है एगो चीज तो चला सबके समझे के पेस्टिसाइड एगो साइलेंट किलर है चला बच के रह के चला सब प्रिकॉशन लेके और दूसरा चीज बोलती है देखा जितना भी खेती हर हो जा या फिर जो खेती हर नहीं हो जाए खाली एप्लीकेशन करना चाहिए पेस्टिसाइड के सर्विस प्रोवाइडर हो सबके तो चला ट्रेनिंग हुए है स्वीप करे के फागे के ओर से लेकिन हम एगो मांग करती अस्पताल में जाके एगो ब्लड टेस्ट कराया जा
1: जी
0: एक आधगो साधारण टेस्ट है जैसे कोलिनेस्टेरेज टेस्ट या फिर आवासे भी टेस्ट है जेकर से जानकारी सके मिले कि तोहर जन शरीर में खून माते ओकर में कौन मात्रा में
1: आज
0: पेस्टिसाइड भाग रेसिड्यू बा कि नहीं और हो तो कौन मात्रा में बा और डॉक्टर तोरा बोली कौन जना प्रिकॉशन ले लेके अभी से
1: तो चलो जितना जना कीटनाशक के इस्तेमाल करे लंजा पेस्टिसाइड सोच समझ के इस्तेमाल करिया और एगो टेस्ट कराइया और निमन से एगो ट्रेनिंग लिया तब इस्तेमाल करिया जब तुहू स्वस्थ रहबा तोहर आस पड़ोस स्वस्थ रही और तोहर गांव तोहर शहर हमनी के देश स्वस्थ रही हमनी के पर्यावरण स्वस्थ रही तब बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान शंभू जी और आज की चर्चा कार्यक्रम है जी परिसमाप्त होला सब कोई के हमने के टीम डनी से प्रणाम।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आशिता, नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। फीफा विश्व कप 2026 का नाम आते ही पानिनी एसटी का एल्बम का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। कल रविवार को मॉरिशस की त्रिबेका शॉपिंग मॉल में स्टिकर एडिशन अभियान का अंतिम दिन रहा, जहां हजारों लोग अपने एल्बम को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टिकरों की तलाश में पहुंचे। सुबह से ही मॉल में लंबी कतारें देखने को मिली। परिवारों के साथ आए प्रशंसक अपने स्टिकर पैकेट खोलते और अतिरिक्त स्टिकरों का आपस में आदान प्रदान करते हुए नजर आए। इस आयोजन में सात वर्ष के बच्चों से लेकर 77 वर्ष तक के कलेक्टर्स ने हिस्सा लिया। इनमें कई ऐसे भी थे जो वर्ष 1978 के विश्व कप से ही पानिनी स्टिकर कलेक्शन की अपनी परंपरा को आज तक कायम रखे हुए हैं। अपने एल्बम्स को आखिरकार पूरा करने या लगभग पूरा करने के बाद त्रिबेका के कलेक्टर्स के मन में अब केवल एक ही योजना है, 2 साल बाद होने वाला अगला यूरो स्टिकर की नई खोज के लिए। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मॉरिशस की संस्था women.mu का कहना है कि पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। संस्था ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल का स्वागत किया है। संगठन के एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नाताली अजीजिए ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान आकर्षित किया जिनमें हिंसा का आरोपी सरकारी या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा आवंटित आवास में रहता है। women.mu का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी

पीड़ितों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। संस्था ने जोर देकर कहा कि कानून में ऐसे प्रावधान होने चाहिए जो पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और उनके आवास के अधिकार की भी रक्षा करें। सेंट्रल

पाइपों को जोड़ने वाले कनेक्टर नवंबर 2024 में प्रोक्यूरमेंट ऑफिस के माध्यम से एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए थे। हालांकि जून से इन्हें स्थापित करने के दौरान सीडब्ल्यूए की तकनीकी टीमों को लगातार कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। स्थिति को देखते हुए सीडब्ल्यूए ने पूरे स्टॉक को आपूर्तिकर्ता को वापस भेजने का निर्णय लिया है। ये उपकरण 3 वर्ष की वारंटी के दायरे में है। अब जांच का प्रमुख उद्देश्य ये पता लगाना है कि समस्या सीडब्ल्यूए की ओर से किसी लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई या फिर खरीद प्रक्रिया अथवा उपकरणों की गुणवत्ता में ही कोई कमी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से व्यापक हमला किया है। अधिकारियों के अनुसार इन हमलों में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है जबकि 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पूर्वोत्तर शहर खार्किव में 4 लोगों की मौत हुई और 19 लोग घायल हुए। वहीं राजधानी कीव में एक व्यक्ति की जान गई तथा 16 अन्य घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव पर हुए हमले को वर्ष 2022 में रूस के पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू होने के बाद राजधानी पर किए गए सबसे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में से एक बताया है। इस बीच यूक्रेन ने भी रूस के ठिकानों पर अपने हमले जारी रखे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहिए, सुन पाएंगे शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। डॉविन रोड कारोलिन बेलेरवियसेश में बहत्तर साल के जनाब अब्दुल राशिद सौदागर जिन्हें भाई राशिद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे और जो टैक्सी ड्राइवर थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे मोहम्मद अली नवाज सौदागर के मकान कारोलिन बेलेरवियसेश से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए मस्जिद कूबा कारोलिनी जाएगी, फिर दफनाने के लिए त्वाजिलो ओलिविया का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। ट्रियोली ब्रांच रोड फोंडसाक में 80 साल की श्रीमती इंद्रानी बीगू पैदाशी नाम उदीन और जिन्हें मानती के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे आशीष बीगू के घर फोंडसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यमिनी त्रियोली शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

दिन के 10:06 हुए हैं। नमस्कार प्यारे श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका अभिवादन है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ भक्ति में शक्ति कार्यक्रम में। आप सुन रहे हैं इस समय दिन के 11 बजे तक, और मैं उषा कौर साथ निभाने के लिए। जी हाँ श्रोताओं, चलिए सबसे पहले लेते हैं गणेश जी का नाम और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

0: 10:18 हुए हैं जी। हाँ, भक्ति में शक्ति कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज सोमवार का दिन है। सोमवार का दिन जो होता है भोले बाबा का दिन होता है और आज उनकी कृपा हम यही कामना करते हैं कि उनकी कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। अभी के लिए चलिए सुनते हैं मानस मंथन डॉक्टर वीरू अरुण जी के साथ।
1: मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनु अरुण।
2: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनु अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, रामचरित मानस के बाल कांड के दोहा 255 यानी 255 के नीचे की अंतिम चौपाइयों को और फिर उसके आगे के दोहे और चौपाइयों को आपकी सेवा में मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। प्रसंग है कि श्री राम को गुरु विश्वामित्र ने धनुष उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आदेश दिया और श्री राम गुरु को प्रणाम करके मंच पर जाते हैं जहां धनुष रखा है। उन्हें जाता हुआ देख करके अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, लेकिन माँ सुनैना उन्हें देख करके अधीर हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि इतनी कम आयु का बिल्कुल बालक जैसा ये कोमल अंगों वाला राजकुमार भला उस धनुष को कैसे उठा पाएगा जिसे एक से एक बड़े राजा टस से मस नहीं कर सके। और वे अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा अपनी सखियों के समक्ष प्रकट करती हैं। उनकी बातों को सुन करके एक सखी जो श्री राम के तेज से भली भांति परिचित थी, वो रानी सुनैना को धैर्य दिलाने के लिए और उनके मन में ये विश्वास पैदा करने के लिए कि श्री राम धनुष तोड़ पाएंगे, चिंता मत करो, अपने मन की कुछ बातें उनके समक्ष रखती हैं। आइए देखें कि रानी सुनैना की सखी उनसे क्या कहती है। वे कहती है कि बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनी अनरानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोषेउ सुजसु सलो सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। वो दो चार उदाहरण दे करके ये बताना चाह रही हैं कि जो तेजस्वी लोग हैं, जो प्रतापी लोग हैं, जो पराक्रमी लोग हैं, जो समर्थ लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्हें केवल उनकी आयु से ही नहीं परखा जा सकता, उन्हें उनके केवल कोमल अंगों से ही नहीं परखा जा सकता। हो सकता है कोई देखने में बहुत कोमल अंगों वाला हो, यानी कृशकाय हो, बहुत दुबला पतला हो, देखने में कमज़ोर लगे या उसकी आयु कम हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि कम आयु का व्यक्ति है तो उसके अंदर ज्ञान की कोई कमी हो सकती है या कोई देखने में थोड़ा दुबला पतला है तो उसके अंदर पराक्रम की कोई कमी होगी। नहीं, केवल ऊपरी आकार से, ऊपरी रूप रंग से हम किसी की प्रतिभा का और किसी के गुणों का

अनुमान नहीं लगा सकते हैं। इसलिए रानी की सखी कहती है कि हे रानी, तेजवान को यानी जो देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। श्री राम देखने में अवश्य छोटे हैं, छोटे मतलब कम आयु के हैं। इन राजाओं की तुलना में जो राजा दूर दूर से आए हैं, उनमें सबसे कम आयु के श्री राम हैं। उनमें देखने में सबसे कम पराक्रमी श्री राम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो लोग बड़े बड़े आकार वाले, खूब बड़ा शरीर था उनका, और श्री राम बिल्कुल एकदम दुबले पतले, बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि एकदम सामान्य शरीर वाले, ऐसे श्री राम थे। तो इसलिए सखी कहती है कि देखने में यद्यपि वे छोटे हैं, कम उम्र के हैं, उनका शरीर भी अभी चूंकि बालक हैं तो पूरी तरह से शरीर विकसित नहीं हुआ है, क्योंकि अभी वयस्क नहीं हुए हैं, इसलिए कह रही हैं कि उन्हें छोटा नहीं मानो। उनके गुणों को, उनके पराक्रम को आप समझ नहीं पा रही हैं। और वे कुछ उदाहरण दे करके अपनी बात उनके समक्ष रख रही हैं। कौन से उदाहरण? कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोशे सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। बोल रही हैं कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। इन दो चौपाइयों में दो उदाहरण वे दे रही हैं। पहली चौपाई में उदाहरण किसका दे रही हैं? कुंभज ऋषि का। नाम ही है कुंभज, कुंभ मैंने घड़ा और ज मैंने पैदा होना। कौन कुंभ से उत्पन्न हुआ? अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे घड़े से उत्पन्न हुए थे। और घड़ा कैसा होता है? छोटा सा घड़ा, आप समझ रहे हैं, जिसे हम कलश भी कहते हैं। तो उस कलश से उत्पन्न हुए अगस्त ऋषि तो छोटे रहे होंगे, लेकिन उनका जन्म अवश्य कुंभ से हुआ, लेकिन वो इतने पराक्रमी और इतने तेजस्वी थे कि उन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। तो कहाँ कुंभ से उत्पन्न ऋषि अगस्त और कहाँ वो अपार और अथाह समुद्र, लेकिन उसे अगस्त ऋषि ने पी लिया। तो इतना उनका पराक्रम था, इतनी उनकी तेजस्विता थी। कुंभज ऋषि के बारे में ये कहा जाता है कि वे कुंभ से प्रकट हुए और उनका जो जन्म है वो मानो दिव्य तप, ज्ञान और संस्कार का प्रकट होना है। और भारतीय परंपरा में ऐसी बहुत सी कथाएं मिलती हैं जो ऐतिहासिक नहीं हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत गहरा आध्यात्मिक संकेत छुपा हुआ है। और इसका यही अर्थ है कि कुंभ ऋषि सामान्य मनुष्य की तरह नहीं बल्कि दिव्य रीति से पैदा हुए थे। उनका जन्म दिव्य जन्म था, इसलिए उन्हें कुंभज कहा जाता है, यानी वो कुंभ से उत्पन्न हुए थे। दूसरी बात वो कहती हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। एक तो कुंभज ऋषि जो घड़े से उत्पन्न हुए और पूरा समुद्र पी लिया, और दूसरा सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है। जब सूर्य सुबह अभी उदित नहीं हुआ है, लेकिन बादलों से धीरे धीरे धीरे धीरे ऊपर उठ रहे हैं सूर्यदेव, तो वो जो आभा मंडल है उसे सूर्य मंडल तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो उस सूर्य मंडल के उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। अभी सूर्य उदित भी नहीं हुए हैं, केवल धीरे धीरे उनका प्राकट्य हो रहा है, और फिर भी उन हल्की हल्की किरणों से भी सारे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। तो देखने में अभी बहुत बाल है वो सूर्य, यानी अभी बहुत बच्चा सूर्य है, लेकिन फिर भी उसके प्रकाश से, उसके आभा से, उसके तेज से पूरे संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। वैसे ही श्री राम हैं, देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन

उनका तेज ऐसा है कि वो कोई भी कठिन से कठिन कार्य कर सकते हैं जो इनमें से कोई भी राजा नहीं कर सका। मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। वो सखी अनेक उदाहरण दे करके रानी सुनैना के मन में जो निराशा का भाव आ गया है उसे दूर करने का प्रयत्न कर रही हैं और उनके अंदर उत्साह भरना चाहती हैं, आशा भरना चाहती हैं कि आप निराश मत हो, आप दुखी मत हो। जो देखने में छोटा है इसका ये मतलब नहीं है कि उसका पराक्रम भी कम हो। तो दो उदाहरण पहले उन्होंने दिए, एक कुंभज ऋषि का, एक सूर्यमंडल का। अब तीसरा उदाहरण वे दे रही हैं मंत्र का, कि कोई भी मंत्र कितना छोटा होता है। जैसे ओम नमः शिवाय, तीन शब्द हैं ओम नमः शिवाय, लेकिन तीन छोटे छोटे शब्दों से बना हुआ ये मंत्र अपने आप में कितना प्रभावपूर्ण है, कितना महान है। या कोई भी मंत्र जिस पर भी हमें विश्वास है, वो मंत्र कोई बहुत बड़े बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे मंत्र होते हैं, लेकिन उन मंत्रों की शक्ति इतनी अपार है कि उस मंत्र का जप करके हम किसी भी देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता उस छोटे से दिखाई देने वाले मंत्र से परम प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मंत्र कोई बहुत बड़ा होगा, 10 पेज का होगा, तभी वो प्रभावी होगा। छोटे से छोटा मंत्र भी बहुत शक्तिशाली होता है। और चौथा उदाहरण वे दे रही हैं गजराज और छोटे से अंकुश का। मंत्र का उदाहरण दिया उन्होंने और अब कह रही हैं कि मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। आइए इस बात को भी समझें। मतवाला हाथी यानी ऐसा हाथी जो मतवाला है, यानी अपनी ही चाल से चलने वाला है, किसी की बात नहीं सुनता है, उसे जैसे चलना है वैसा चले, ऐसे मतवाले हाथी को जो महावत है, महावत यानी जो हाथी की सवारी कर रहा है, जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, जिसे हम कह सकते हैं गजारूढ़, जो गज के ऊपर हाथी के ऊपर बैठ करके उसकी सवारी कर रहा है, तो उसे हाथी को अपने वश में करना है, उसे हाथी को नियंत्रित करना है ताकि हाथी उसी दिशा में जाए जिधर ये जो महावत है वो चाहता है कि वो जाए। तो इसलिए एक छोटे से अंकुश का वो सहारा लेता है। अंकुश किसे कहते हैं? एक छोटा सा टेढ़ा सा बना हुआ एक शस्त्र आप समझ लीजिए, बहुत ही छोटा होता है, जैसे एक पिन की तरह से टेढ़ा सा, और उसी से वो हाथी को नियंत्रित कर लेता है। तो तुलसीदास जी यहाँ सखी के मुख से ये कहलाना चाह रहे हैं कि कहाँ मत वाला हाथी जो किसी के वश में नहीं आता, उस मत वाले हाथी को वश में करने के लिए, अनुशासित करने के लिए एक छोटे से अंकुश का सहारा लिया जाता है। एक छोटा सा अंकुश ही मत वाले हाथी को नियंत्रित कर लेता है। ऐसा नहीं कि हाथी इतने बड़े आकार का है तो उसको वश में करने के लिए कोई बहुत बड़ा हथियार चाहिए, नहीं, एक छोटे से ही हथियार से, एक छोटे से अंकुश से उसे अपने वश में महावत कर लेता है। और एक पांचवा उदाहरण वो सखी देती है कामदेव और फूलों के बाण का। काम कुसुम धनुषायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देव तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनुरानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। कामदेव आप जानते हैं काम यानी इच्छाएं, इच्छाओं के जो देवता हैं उन्हें कामदेव कहते हैं, उन्हें प्रेम का भी देवता कहते हैं। और कामदेव के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे पूरे संसार को अपने वश में कर लेते हैं। पूरा संसार कामदेव के

वश में क्यों है? क्योंकि कामदेव ही पूरे संसार के तीनों लोकों के हृदय में प्रेम की भावना जागृत करते हैं, कामनाओं को पैदा करते हैं। और ऐसा वे किस प्रकार करते हैं? एक छोटे से शस्त्र से। और वो शस्त्र क्या है? फूलों का बाण। फूल अत्यधिक कोमल, अत्यधिक मुलायम। भला कोमल पुष्प का बाण कैसे किसी को नियंत्रित कर सकता है? लेकिन कामदेव ऐसा करते हैं, तो इसलिए उदाहरण दे रही है कि कहां कामदेव, जो तीनों लोकों को अपने वश में कर लेते हैं, वे केवल एक पुष्प बाण चला करके इतना जटिल और इतना कठिन कार्य संपन्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि कामदेव को पूरे विश्व को अपने वश में करना है तो उसके लिए उन्हें बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों की आवश्यकता हो। नहीं, छोटे से साधन से ही वे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार सखी कहती है, देवी तजिय संशय अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे रानी, मेरी बात को सुनो, सारा संदेह त्याग दो, अपने मन में जो भी संशय उत्पन्न हो रहे हैं उनका त्याग कर दो, निराशा को छोड़ दो, किसी भी प्रकार के संदेह को अपने मन में मत रखने दो। मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी धनुष अवश्य तोड़ेंगे। वे हैं देखने में छोटे, उनकी आयु कम है, उनका शरीर अभी पूरी तरह विकसित नहीं है, लेकिन उस पर मत जाओ, उनके सामर्थ्य पर जाओ, उनके तेज पर जाओ। जो कार्य कोई नहीं कर सका वे श्री राम अवश्य करेंगे। और श्रोताओं, आइए एक भजन सुने और इसी के साथ आज के कार्यक्रम को हम संपन्न करें। धन्यवाद।

10:52 हुए हैं। श्रोताओं, आपने साथ दिया इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त हो चला। जी हाँ, और उषा को दीजिए

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। एक बार फिर आपसे अशिता नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहली स्थानीय खबरें। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी नेटवर्क के नए पानी कनेक्शन के लिए खरीदे गए लगभग 30,000 कनेक्टरों में सामने आई गुणवत्ता संबंधी खामियों की जांच कर रहा है। ये दो पाइपों को जोड़ने वाले कनेक्टर नवंबर 2024 में प्रोक्यूरमेंट ऑफिस के माध्यम से एक स्थानीय आपूर्तिकर्ता से खरीदे गए थे, और हालांकि जून से इन्हें स्थापित करने के दौरान CW की तकनीकी टीमों को लगातार कई तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। स्थिति को देखते हुए CW ने पूरे स्टॉक को आपूर्तिकर्ता को वापस भेजने का निर्णय लिया है। ये उपकरण 3 वर्ष की वारंटी के दायरे में है। अब जांच का प्रमुख उद्देश्य ये पता लगाना है कि समस्या CW की ओर से किसी लापरवाही के कारण उत्पन्न हुई या फिर खरीद प्रक्रिया अथवा उपकरणों की गुणवत्ता में ही कोई कमी थी। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को अपनी सुरक्षा और आवास के अधिकार के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। मॉरिशस की संस्था Women.MU का कहना है कि पीड़ितों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। संस्था ने डोमेस्टिक अब्यूज बिल का स्वागत किया है। संगठन की एडवोकेसी कोऑर्डिनेटर नताली जीजे ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान आकर्षित किया है जिनमें हिंसा का आरोपी सरकारी या किसी सार्वजनिक संस्था द्वारा आवंटित आवास में रहता है। फीफा विश्व कप 2026 का नाम आते ही पानिनी स्टिकर एल्बम का उत्साह भी चरम पर पहुंच जाता है। कल रविवार को मॉरिशस के त्रिबेका शॉपिंग मॉल में स्टिकर एडिशन अभियान का अंतिम दिन आयोजित किया गया, जहां हजारों लोग अपने एल्बम को पूरा करने के लिए आवश्यक स्टिकरों की तलाश में पहुंचे थे। सुबह से ही मॉल में लंबी कतारें देखने को मिली। परिवारों के साथ आए प्रशंसक अपने स्टिकर पैकेट खोलते और अतिरिक्त स्टिकरों का आपस में आदान प्रदान करते नजर आए। इस आयोजन में 7 वर्ष के बच्चों से लेकर 77 वर्ष तक के कलेक्टर्स ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुख करते हैं हम गुयाना की ओर। दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना के तट के पास 116 यात्रियों को लेकर जा रही MV बरीमा नामक नौका डूब गई है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अन्य यात्रियों की तलाश जारी है। ये नौका शनिवार को राजधानी जॉर्जटाउन से पोर्ट केटुमा जा रही थी। इसी दौरान आयरन पंट के निकट ये दुर्घटना का शिकार हो गई। स्थानीय समय अनुसार रात 11:01 पर संकट संदेश मिलने के बाद सरकारी एजेंसियों ने नौकाओं की मदद से व्यापक खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। वहां के लोक निर्माण मंत्री जोआन एडगिल ने कहा कि बचाव अभियान लगातार जारी है और सभी यात्रियों की सुरक्षित बरामदगी के प्रयास

0: किए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने उम्मीद जताई है कि अभियान के दौरान और लोगों को जीवित बचाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि अब तक बचाए गए लोगों में यात्री और चालक दल के सदस्य दोनों शामिल हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: NBC Radio.TV.

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ नबी, मुजाहिद लोग तुमसे गनीमत के माल के बारे में दरियाफ्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो।

तो वो हैं कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान और बढ़ जाता है, और वो अपने परवरदिगार पर भरोसा रखते हैं। और वो जो नमाज कायम करते हैं और जो माल हमने उनको दिया है उसमें से नेक कामों में खर्च करते हैं, यही सच्चे मोमिन हैं, और इनके लिए इनके परवरदिगार के यहां बड़े बड़े दर्जे हैं और बख्शिश और इज्जत की रोजी है। इन लोगों को अपने घरों से उसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला। और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी, वो लोग हक बात में उसके जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे, गोया मौत की तरफ हांके जाते हैं और उसे देख रहे।

0: और उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो गिरोहों में से एक गिरोह तुम्हारे लिए मगलूब हो जाएगा, और तुम चाहते थे कि जो काफिला बेशान शौकत यानी बेहथियार है वो तुम्हारे हाथ आ जाए, और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की जड़ काट दे ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, गो मुशरिक ना खुश ही हों।
1: इज़

जब तुम लोग अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली और फरमाया कि तसल्ली रखो, हम 1000 फरिश्तों से जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे तुम्हारी मदद करेंगे। और उस मदद को अल्लाह ने महज बिशारत बनाया था कि तुम्हारे दिल उससे इत्मीनान हासिल करें, और मदद तो अल्लाह ही की तरफ से है, बेशक अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है।

जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से तुम्हें नींद की चादर ओढ़ा दी और तुम पर आसमान से पानी बरसा दिया ताकि तुमको उससे नहलाकर पाक कर दे और शैतानी नजासत को तुमसे दूर कर दे, और इसलिए भी कि तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और उससे तुम्हारे पांव जमाए रखे।

मैं अभी काफिरों के दिलों में रोब हैबत डाले देता हूं, सो उनकी गर्दनें उड़ा दो और उनकी पोर पोर तोड़ दो। ये सजा इसलिए दी गई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करता है तो अल्लाह भी सख्त अजाब देने वाला है। ये मजा तो यहां चखो और ये समझ लो कि काफिरों के लिए आखिरत में दोजख का अजाब भी तैयार है।

बस तुम लोगों ने उन कुफार को कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया। और ए नबी, जिस वक्त तुमने कंकरियां फेंकी थीं, तो वो तुमने नहीं फेंकी थी बल्कि अल्लाह ने फेंकी थी। इससे गरज यह थी कि मोमिनों को अपने एहसानों से अच्छी तरह आजमा ले, बेशक अल्लाह सुनता है जानता है।

हुआ भी यूं ही और कुछ शक नहीं कि अल्लाह काफिरों की तदबीर को कमजोर कर देने वाला है। काफिरों, अगर तुम फैसला चाहते हो तो तुम्हारे पास फैसला आ चुका। अगर तुम अपने अफाल से बाज आ जाओ तो तुम्हारे हक में बेहतर है, और अगर फिर नाफरमानी करोगे तो हम भी फिर तुम्हें अजाब करेंगे, और तुम्हारी जमात खाह कितनी ही बड़ी हो तुम्हारे कुछ भी काम ना आएगी, और अल्लाह तो मोमिनों के साथ है।

मोमिनों, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म कबूल करो, जबकि रसूल तुम्हें ऐसे काम के लिए बुलाते हैं जो तुमको जिंदगी जाविदा बख्शता है, और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, और ये भी कि तुम सब उसके रूबरू जमा किए जाओगे, और उस फितने से डरो जो खुसूसियत के साथ उन्हीं लोगों पर वाकई न होगा जो तुम में गुनाहगार हैं, और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है।

कर देती है और रब की रजा इंसान की तकदीर संवार देती है। इरशाद बारी ताला है, जो मसाइब भी रोए ज़मीन पर आते हैं और जो आफतें भी तुम पर आती हैं, वो सब इससे पहले कि हम उन्हें वजूद में लाएं एक किताब में लिखी हुई महफूज और तयशुदा हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये बात खुदा के लिए आसान है।

मौजे सामीन, आई एस सी के साथ समात फरमाइए। एक ऐलान, कल मंगल 21 जुलाई सुबह 10 बजे अब्दुल रज़ाक हॉल फिनिक्स में माह सफ़र के मौके पर उस्तानी बेगम साजिदा रजब की सरपरस्ती में एक रूहानी महफिल का एहतमाम किया जा रहा है। तमाम ख़वातीन को शिरकत की दावत है। मौजे सामीन, मुसीबतों को सब्र सुकून के साथ बर्दाश्त कीजिए, कभी हिम्मत ना हारे।

पिए और रंजो गम को कभी एतदाल से ना बढ़ने दें। दुनिया की ज़िंदगी में कोई भी इंसान रंजो गम, मुसीबत तकलीफ, आफत नाकामी और नुकसान से बेखौफ नहीं रह सकता। अलबत्ता मोमिन बड़े से बड़े हादसे पर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ता।

एक मोमिन की सोच हमेशा यूँ होना चाहिए कि जो कुछ हुआ तकदीर इलाही के मुताबिक हुआ, खुदा का कोई हुक्म हिकमत व मसलहत से खाली नहीं होता। और ये सोच कर कि अल्लाह ताला जो कुछ करता है अपने बंदे की बेहतरी के लिए करता है, यकीनन इसमें खैर का पहलू होगा। मोमिन को ऐसा रूहानी सुकून और इत्मीनान हासिल होता है कि गम की चोट में भी लज्जत आने लगती है।

0: रिसेंट है संक्षिप्त समाचार। आपसे आशिता नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत है। फीफा विश्व कप 2026 का महामुकाबला दुनिया भर में बहुत उत्साह के साथ देखा गया और फुटबॉल में फीफा विश्व कप 2026 का खिताब स्पेन ने जीत लिया। न्यूयॉर्क में खेले गए फाइनल मुकाबले में स्पेन ने मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 से हराकर दूसरी बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। निर्धारित 90 मिनट तक दोनों टीमों ने कोई गोल नहीं डाली और मुकाबला अतिरिक्त समय यानी एक्स्ट्रा टाइम में पहुंचा। 62वें मिनट में मैदान पर उतरे फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल कर स्पेन को जीत दिलाया और अर्जेंटीना को 93वें मिनट में एंजो फर्नांडेस के रेड कार्ड के बाद 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इससे पहले स्पेन ने 2010 में पहली बार विश्व कप जीता था। मौजूदा यूरोपीय चैंपियन स्पेन अब वर्ल्ड चैंपियन भी बन गया है। ये फाइनल मुकाबला एमबीसी पर सीधा प्रसारण में आप देख पाए और सुने भी। और तीसरे स्थान के मुकाबले में इंग्लैंड से हार के बावजूद फ्रांस के कप्तान किलियान एम्बापे ने शनिवार को मायमी में 2 गोल दागकर फीफा विश्व कप के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया। एम्बापे ने विश्व कप 2026 का समापन 10 गोलों के साथ सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी के रूप में किया। विश्व कप में कुल 22 गोलों के साथ वह अब टूर्नामेंट के इतिहास के वर्ल्ड टॉप गोल स्कोरर बन गई हैं। किलियान एम्बापे विश्व कप के इतिहास में 2 बार गोल्डन बूट जीतने वाली पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल का 19 जुलाई 2026 को कांग्रेस के अस्पताल में चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। जांच के बाद उन्हें आवश्यक उपचार दिया गया और एहतियात के तौर पर अस्पताल में मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया था। मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल अब अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर पर लौट सकेंगे। ये जानकारी उन्होंने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी वीडियो संदेश में दी। चिकित्सकों की सलाह के बाद अब उन्हें घर लौटने की अनुमति दे दी गई है। राष्ट्रपति की स्थिति स्थिर है और समय समय पर उनकी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा की जाएगी। राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल ने जनता से प्राप्त शुभकामनाओं और समर्थन के लिए सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया। मॉरिशस की सांस्कृतिक दुनिया ने अपनी एक महान शख्सियत को खो दिया है। मॉरिशस में कव्वाली के बेहद ही उम्दा और जाने माने गायक इदरीस लाल मोहम्मद का 28 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 6 दशकों से अधिक का समय तक उन्होंने सूफी संगीत की इस समृद्ध परंपरा को पूरे समर्पण के साथ जीवंत बनाए रखा। लाल मोहम्मद ब्रदर्स के प्रमुख के रूप में उन्होंने मॉरिशस और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कव्वाली को नई पहचान दिलाई तथा देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सूचना एकत्र करना पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन ये जिम्मेदारी कब आपराधिक मिलीभगत में बदल जाती है। 94 मिलियन रुपए मूल्य के गांजा जब्ती मामले के बाद यही सवाल मॉरिशस में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में गिरफ्तार पुलिस सर्जन जयेश गंगादीन को शुक्रवार को जमानत मिल गई। डीपीपी के कार्यालय ने उनकी जमानत का विरोध नहीं किया, जिसके बाद पोर्टली जिला अदालत ने उनकी सशर्त रिहाई को बरकरार रखा। जयेश गंगादीन का कहना है कि वह निर्दोष है और उन्होंने केवल खुफिया जानकारी जुटाने के अपने कर्तव्य का पालन किया था।

दूसरी ओर मादक पदार्थ निरोधक विशेष इकाई आत्सू को संदेह है कि उन्होंने संवेदनशील सूचनाएं आतिश गाचादर नामक व्यक्ति तक पहुंचाई, जिसे जब्त की गई गांजे की खेप के संभावित प्राप्तकर्ताओं में से एक

0: रखती हैं, वे अपने मुवक्किल की लंबी हिरासत की शर्तों का विरोध कर रही हैं। हालांकि अधिकारी ने जमानत राशि जमा कर दी है, लेकिन प्रोसिक्यूशन पक्ष द्वारा दायर स्थगन मोशन के बाद उनकी रिहाई सस्पेंड कर दी गई। वकील के अनुसार कानून द्वारा निर्धारित ये मोशन अदालत के फैसले के तुरंत बाद दायर की जानी चाहिए थी, न कि कई घंटों बाद। ये ध्यान देने योग्य है कि डीपीपी के निदेशक के पास अब इस सशर्त रिहाई की समीक्षा का अनुरोध करने के लिए 7 दिन का समय है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण अमरीकी देश गुयाना के तट के पास 116 यात्रियों को लेकर जा रही एमवी बारीमा नामक नौका डूब गई। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 53 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि अन्य यात्रियों की तलाश जारी है। ये नौका शनिवार को राजधानी जॉर्जटाउन से पोर्ट क्यूट्यूमा जा रही थी। इसी दौरान आयन पंट के निकट ये दुर्घटना का शिकार हो गई। स्थानीय समयानुसार रात 11:01 पर संदेह संकेत मिलने के बाद सरकारी एजेंसियों और निजी नौकाओं की मदद से व्यापक खोज और बचाव अभियान शुरू किया गया। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं शुभ समाचारों की ओर। 76 साल के मॉरिसन स्ट्रीट बुबासे में 76 साल के 76 years old के श्री रवीन कृष्णवंत सिंह, जिन्हें रवीन के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 उनके घर मॉरिसन स्ट्रीट बुबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए शिबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। कमीशन टूडे हाफ पॉस्ट 3 PM डॉबिन रोड कारोलिन बेलेरिवसेश में 72 साल के 72 years old के जनाब अब्दुल रसीद सौदागर, जिन्हें बाय रसीद सौदागर शुफे ताक्सी के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा आज दिन के 2 बजे इनके बेटे मोहम्मद अली नवाज सौदागर के मकान कारोलिन बेलेरिवसेश से उठाकर दफनाने के लिए सबसे पहले नमाज जनाजा के लिए मस्जिद कुबा ले जाएगी, फिर दफनाने के लिए त्वाजिलो ओलिविया का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM थ्रियोली ब्रांच रोड फोंजसाक में 80 साल की की श्रीमती इंद्रानी बेगू, पैदाश नाम उदीन और जिन्हें मानती के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे आशीष बेगू के घर फोंजसाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तेमिनिस थ्रियोली की शमशान भूमि ले जाएगी। कमीशन टूडे एट 2 PM शोक में डूबे इन तीनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 12:07 हुए हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये कम्युनिके सुन लीजिए। सीबी श्वाजी बिजकाप और माकोंदे के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है कि बुधवार 22 जुलाई और गुरुवार 23 जुलाई सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बिना पूर्व सूचित किए बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्षमा प्रार्थी है।
3: 819 किलोहर्ट्ज ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: स्वर तरंग
5: स्वर तरंगा।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: समय थयो छे बपोरना पोणा बे.
2: मौजीला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: कभी सोचा है

0: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट।
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
0: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
0: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
0: अपना वीडियो भेजिए ऑन एमबीसी रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
0: एमबीसी रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। एमबीसी रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
0: डोंट मिस इट।
2: Eight hundred and nineteen kilowatts. This is Radio Mauritius.
3: आपकी पसंद। घड़ी मिलाते चले समय दिन के ठीक 2:31। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम अवार्ड 19 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा आज का ये प्रसारण जारी हो रहा है। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आपकी पसंद कार्यक्रम को लेकर। आप ही के पसंदीदा गीतों को इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। और अगर आप किया है कोई हसीन मौका, किसी की शादी का एक सुनहरा पल या किसी को यूं ही दिल से कोई तोहफा देना चाहते हैं, उनके नाम कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं, तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। रेडियो मॉरिशस मीडियम अवार्ड 19 किलोहर्ट्ज़ www.mbcradio.tv के माध्यम से रेडियो मॉरिशस के साथ भी आप कनेक्टेड रह सकते हैं। और बिल्कुल 4028085 नंबर है हमारे रेडियो मॉरिशस का। और अगर काम में व्यस्त है पर मोबाइल पास है तो समस्या बिल्कुल सुझी हुई है। और यहाँ पर 5251-7005 पर भी आप हमें मैसेज भेज सकते हैं छुप छुपा कर। अगर आप अपने बॉस के नाम करना चाहते हैं कोई गाना, तब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस सफ़र को और भी हसीन और भी मज़ेदार बनाएंगे आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ। पर बेशक आज का पहला गाना हमारी पसंद का होगा जो चलाएंगे हम आपके लिए। 1992 के दौर का ये गाना है, फिल्म है बेटा, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित इस फिल्म में नज़र आई थी। और बिल्कुल अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना फिल्माया गया था उन पर, और उस ज़माने का ये बहुत ही मशहूर सा गाना हम चुन लाए हैं आपके लिए। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के इस सफ़र की।

0: की पसंद।
1: भाई गाने सुनकर अगर मन तिलमिला उठे और आपके मन में भी कोई गाना बज उठे, बस करना यही है कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। 4028085 पर अपने गीतों की फरमाइश हम तक भेजिए और हम बिल्कुल आपके गाने को ज़रूर चलाने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारा कार्यक्रम आपके साथ, हम हैं यहाँ पर आपका साथ देने के लिए शाम के 4 बजे तक, और सोमवार का दिन होता है बड़ा ही बोरिंग, तो चलिए इस बोरिंग से सोमवार को लाजवाब गीतों के रंग के साथ सजाते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम बहुत ही लाजवाब गीतों के सिलेक्शन के साथ जुड़ेंगे। और आज की हमारी जो पहली फरमाइश आई है ये है अनीता जी की ओर से। वैसे हम दाद देना चाहेंगे, 2:30 बजे प्रोग्राम शुरू होने होता है पर आपके मैसेजेस 2 बजे से ही आने शुरू हो जाते हैं, पर चलिए कोशिश हमारी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको मौका दे जिनको कभी मौका नहीं मिला। और बिल्कुल आप ही इस बात से सहमत होंगे पर कोशिश हमारी जारी रहेगी। और यहाँ पर अनीता लाल जी हमारे साथ हैं मोडालबिया से, करुणा, अमृता और कविता के नाम हम करेंगे ये अगला गाना। अवतार फिल्म से लिया हुआ ये गीत है किशोर कुमार और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में, और इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब नज़र आए थे शबाना आज़मी के साथ। तो चलिए इन्जॉय करते हैं ये गाना। वैसे आपको बता दें 1988 के दौर की ये फिल्म थी अवतार, बहुत ही लाजवाब सा गाना, बहुत ही लाजवाब सी स्टोरी।

0: आपकी पसंद।
1: गाने चाहे नए हों चाहे पुराने हों, बस कोशिश हमारी जारी रहेगी। और बिल्कुल यहाँ पर रफीक दौलत हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लान माइयों से। उनकी प्यारी बेगम नूरजहां के नाम वो करना चाहते हैं अगला गीत। फिल्म है भाभी, मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये प्यारा सा गीत।

बिल्कुल, जिंदगी का सफर किसी के समझ में ना आया है ना शायद कभी आएगा। माला जरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं और वे साथ दे रही हैं पिचित से। जब अपने चले जाते हैं तो वो दिन हमें हर वक्त याद आते हैं, और उनके भाई जो उन्हें छोड़कर आज ही के दिन गुजर गए थे, और आज का दिन उनके लिए बड़ा ही यादगार है। और इस गीत को वे अपने परिवार के नाम करना चाहते हैं। इस मुश्किल की घड़ी में भी वे आज भी उन्हें बहुत याद करते हैं। किशोर कुमार की आवाज़ में सफ़र फिल्म का ये गाना।

0: आपकी पसंद।
1: जिंदगी का सफर हमें तब समझ में आता है जब अपने साथ छोड़कर चले जाते हैं, और इसी के साथ चलिए हम तो हैं आपका साथ निभाने के लिए जब तक है सांस, और इसी के साथ आप भी हमारा प्यार से साथ दे रहे हैं ये जानकर हमें बेहद बेहद खुशी हो रही है। वैसे अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे समाचारों के साथ, पर उससे पहले लेते हैं ये गाना, और ये गाना जाएगा दादी अनीता की ओर से, जाएगा कियांश के लिए जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और दादी अनीता इस वक्त त्रियोली से हमारा साथ दे

0: रही हैं और केयांश के पापा सचिन, मम्मी है पूजा, बुआ है अंजू और फूफा है वेद, साथ है उनकी प्यारी कजन सिया और दादा ज्ञानदेव, दादी है चंद्रानी, रेखा परिवार, रामचंद परिवार, बोलीगाज परिवार, जीनिया परिवार की ओर से ये प्यारा सा गाना उनके नाम हम करेंगे। और अनीता जी ने कहा जितने भी लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं उन सभी के लिए यही गाना, तो चलिए खुश रहिए और आज का दिन बहुत ही ख़ास है जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो ज़रूर आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा हुआ रहे, आप हमेशा अपनों का प्यार पाएं, इससे ज़्यादा बड़ा आशीर्वाद और कोई हो नहीं सकता। और हमारी टीम की ओर से आपके नाम हम करेंगे यही गाना
1: Happy birthday to you।
0: और बिल्कुल यही गाना हमें जोड़ेगा सुपहर के 3 बजे के समाचारों के साथ, तो चलिए समाचारों के बाद कार्यक्रम को जारी रखते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में।
1: अगर बच्चे होते हम भी, अगर बच्चे होते नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू

0: होता तो ना करते ढेंचू ढेंचू,
1: पर दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
2: ऑन द आवर एवरी आवर रेडियो मॉरिशस।
3: घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुपहर के ठीक 3 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

0: धर्म गोकुल कल विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए भर्ती होने के बाद आज सुबह घर लौट आए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के कम्युनिकेशन सेल के अनुसार उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि स्वस्थ होने के बाद राष्ट्रपति अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करेंगे। थर्ड टर्म में स्कूल खुलने पर कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखा जाएगा। शिक्षा और मानव संसाधन मंत्री महिन गंगा प्रसाद के अनुसार इसका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बचाना है, साथ ही कक्षा में पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करने में मदद करना है। निर्देशानुसार मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखना होगा और उन्हें हर समय बैग के अंदर ही रखना होगा। इसका उपयोग केवल चिकित्सीय कारणों और शिक्षक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मांगे जाने पर ही किया जा सकेगा। शिक्षकों से भी कहा गया है कि वे मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित रखें। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आज सोमवार 20 जुलाई को लातुकेनिक स्थित नेल्सन मंडेला सेंटर में मनाया गया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री मारी आरियाना व मारी कला और संस्कृति मंत्री महेन गुंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तजीत बुलेल, दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग के प्रतिनिधि और प्रिजन कमिश्नर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है नामक विषय पर आयोजित इस समारोह ने याद दिलाया कि मादीबा की विरासत मानवाधिकारों, समानता और एकजुटता की रक्षा के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले प्रयासों का एक आह्वान है। और विदेश में गयाना के तट पर 116 यात्रियों और 17 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही एक नौका के डूबने के बाद अब तक 67 लोगों को बचा लिया गया है। बचाए गए लोगों में 15 बच्चे शामिल हैं, जबकि दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। मोरिसन स्ट्रीट बोबासे में 76 साल के 76 years old के श्री रवीन क्रेशवन सिंह, जो रवीन नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुपहर 3:30 बजे उनके घर मोरिसन स्ट्रीट बोबासे से उठाकर शुबेल की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3:30। बंधुलेन फिनिक्स में 84 साल की 84 years old की बीबी हबीबा बंधु, जो चाची बीबा नाम से भी जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज 4:00 बजे उनके बेटे साउद बंधु के घर बंधुलेन फिनिक्स से उठाकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए फिनिक्स की मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे 4:00 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: 819 kilohertz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
2: कभी सोचा है
3: एमबीसी रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
2: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
3: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
2: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ तो फिर ये है आपका मौका।
3: MBC Radio presents One Day RJ.
2: Open to all Mauritians. बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
3: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
2: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
3: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363
2: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
3: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
2: और आपका चांस।
3: डोंट मिस इट।
4: 819 kilohertz. This is Radio Mauritius.
5: आपकी पसंद। बार फिर आपका स्वागत है आपकी पसंद कार्यक्रम में। और इस समय 3:05 हो चुके हैं जी, 4 बजे तक हम हैं आपका साथ देते हुए और आप ही के लिए आप ही के पसंदीदा गीतों को बिल्कुल पूरा चलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए एक बार फिर आपका स्वागत कर रही है रत्ना माइक के इस पार, और आप हमारा साथ देंगे उस पार से। तो दिल से आपके लिए गाने हम चला रहे हैं और हमारी जो अगली

यहाँ पर अगली फरमाइश जो आई है वो स्वस्ति की ओर से आई है, काटरबोन से उनकी प्यारी बेटी लेखानी और बेटा सुमित, और उनके लिए गाना हम चलाएंगे, फिल्म है सर, कृष्णमूर्ति, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, 1993 के दौर का ये गाना। याद होगा आपको पूजा भट्ट और अतुल अग्निहोत्री इस फिल्म में नजर आए थे और सर के रोल में नजर आए थे नसीरुद्दीन शाह।

कई बार बंद होंठों से कई गई बातें समझ में आ जाती है और कई बार होंठ खोलकर शब्दों के द्वारा समझाई गई बातें भी कई बार समझ नहीं पाते हैं लोग। तो चलिए इस जज्बाती भाई मौसम में जज्बाती गानों के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके जज्बात को और भी खुश करते हैं। चलिए आज अगला गाना जो है मिस मेरी से लिया हुआ और ये गाना जाएगा शकुंतला जी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं मोत आइलोंग से और उनकी प्यारी ननंद है गायत्री जी जो है नुवेलफॉन्स से बेटा अजय बेटी है सुनीता और ये गाना बिल्कुल है फिल्म मिस मेरी का लिया हुआ मोहम्मद रफ़ी और लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

नहीं, कसूर इतना ही है कि दिल को बस मन है एक गाना सुनने का, और भटके हुए राही को हम राह दिखाते हैं रेडियो मॉरिशस की ओर, जहां पर आपकी पसंद कार्यक्रम चलता है हर रोज 2:30 बजे से लेकर 4 बजे के बीच। तो चलिए अगले गीत

को लेते हैं और ये है फिल्म चोरी चोरी से लिया हुआ गाना। और ये गाना जाएगा गासन जी के लिए जो इस वक्त मापू से जुड़े हुए हैं, और ये गाना उनकी प्यारी पत्नी इंदिरा, साथ है बेटी वरुषा और उनके प्यारे भैया अमुगम के नाम। लता जी की प्यारी सी आवाज, फिल्म है चोरी चोरी।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: बिल्कुल आजाद जैसी फीलिंग आ जाती है जब अपने ही पसंदीदा गीत को हम सुन लेते हैं, और ये है प्रोफेसर का गाना, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रखा हुआ ये गीत। जैसी गुलाम जी के लिए हम चलाएंगे जो नुवेल फ्रांस से इस वक्त हमारे

चलिए इसी गीत के साथ नाम जोड़ेंगे ज्योति जी का, जो इस वक्त यूनियन पार्क से जुड़ी हुई है हमारे साथ। प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्ठा का नाम जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में।

0: किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं आज के।
1: लाजवाब गीतों का सिलेक्शन। और इस वक्त 3:24 रिहाना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं फिनिक्स से, और उनका नाम हम जोड़ेंगे आज के इस अगले गीत के साथ। और ये है छोटी सी मुलाकात फिल्म से लिया हुआ गीत, सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रखा हुआ गीत है 1967 के दौर का।
0: बस इतनी खता है मेरी और खता क्या,

लाजवाब गीतों का सिलेक्शन है। और चलिए इसी के साथ सत्यम शिवम सुंदरम का ये अगला टाइटल ट्रैक जाएगा अनीता जी के लिए, जो फ्लिक ऑन फ्लैक से इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं, और उनके सभी दोस्तों के नाम, सभी परिवारों के लिए यही गीत हम चलाएंगे लता जी की प्यारी सी आवाज़ में।

आज सोमवार का दिन है और भोलेनाथ का दिन है और ये गाना बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं वर्षा और उनकी प्यारी मामा इंदिरा, जो है मेबर्ग से अपनी प्यारी बेटी वर्षा को बहुत बहुत प्यार भेजती हैं, और साथ ही साथ उनके पापा है विद्यानंद, जो आज के दिन उनको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते हैं। और अगले गीत की वे फरमाइश करते हैं, बिल्कुल उन्हीं के लिए जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो आपको वर्षा, और हमारी पूरी टीम की ओर से आपको कहेंगे हैप्पी बर्थडे। फिल्म है इश्क फॉरएवर, नकाश अजीज की आवाज में रखा हुआ ये गीत 2015।

2017 के साल की मूवी का। वैसे इस वक्त 3:36 हो चुके हैं और अभी थोड़ी ही देर में हम बढ़ेंगे हमारे बिल्कुल इस गीत के साथ, और आपको याद दिला दें ये कार्यक्रम 4 बजे तक जारी है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।

चलिए इसी के साथ यहाँ पर उदय जी भी अपने प्यारे नाती के यांश को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, जो 19 तारीख को अपना जन्मदिन मना चुके हैं, 4 वर्ष के हो चुके हैं के यांश। और इसी के साथ नानू के बहुत ही प्यारे हैं दादा सुनील, दादी ज्योति, नानी संगीता, नाना उदय और साथ है मामा कीर्ति, पापा नागेश और मौसी स्मृति, मामू है आवेश, मामी शिखा, साथ है रियान और चाचा निखिल और कोरख परिवार की ओर से उनको बहुत सारा प्यार। और नानू ने ये गाना अपने प्यारे नाती के लिए चुना है हेमलता और मोहम्मद रफी की आवाज में रखा हुआ आप आए बाहर आई फिल्म का ये प्यारा सा गीत के यांश के लिए।

फिल्म है दो कलियां और लता जी की प्यारी सी आवाज एक बार फिर, और ये गाना जाएगा मीराबाई दरमिया की ओर से, जो मॉडल बीएस इस वक्त हमारा साथ दे रही हैं सभी दरमिया और पाद्या परिवार के लिए। और इस समय 3:48, जी हाँ 4 बजे तक हमारा कार्यक्रम जारी है।

0: गानों का सिलेक्शन तो भाई लाजवाब है। आरती मुखर्जी, मोहम्मद रफी की आवाज, बॉयफ्रेंड का ये गाना सुदेवी जी की पसंद पर हम चलाएंगे। और ये गाना ललिता कुशल जो है त्रियोले से, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, बिंदु, संगीता, जीवराज और मलेगा के है जय श्री अंबिका, राम रतन, राम गुलाम, कुवारू और रघुबर परिवार के नाम, बॉयफ्रेंड का ये गाना।
1: हो गया है क्या करो ये दिल जो फिदा हो गया।

0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया, जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया, हाय क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया,
1: क्या हो गया। समय समाप्त होने की घोषणा, और इसी के साथ चलिए आपकी पसंद का आखिरी गाना रहेगा, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से लिया हुआ ये गाना, और ये गाना है सुनीता जी की पसंद पर, जो इस वक्त घोंघ गोब से हमारा साथ दे रही हैं, उनकी तीन प्यारी बहनें विमला, अमृता और वीना जी हमेशा साथ देते हुए, और यहाँ पर विश्वानी जी हमेशा साथ देती हैं, विश्वानी दुमन वाकवा से, उनकी प्यारी बहनें इंदिर और शारदा, नीला और प्रतिभा साथ हैं, और शोभा जी और गीता गजाधर का नाम जोड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में, विद्या जी यूनियन पार्क से जुड़ी हुई हैं, उनकी प्यारी बहनें सती, सुरेखा, अमृता, बबीता और चाची कुमारी, माया जी है मोताई ब्लॉश की, और साथ ही साथ बंधु परिवार हमेशा की तरह त्रियोले से साथ देता हुआ, तो चलिए इनका नाम भी जोड़ लेते हैं आज के इस कार्यक्रम में, और यहाँ पर सरिता जी भी जुड़ चुकी हैं काटोबोन से, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बस आशा करेंगे अगले कार्यक्रम में आपके नामों को, आपके गानों को भी हम शामिल करें। चलिए इसी के साथ रोते हुए हंसते हुए जिंदगी के सफर को काटते हैं, और इस सफर का बस यहीं पर समापन करेंगे। हमारे बाद आ रही हैं अंजू गर्बरन जी, श्रीमती अंजू गर्बरन प्रकाश कार्यक्रम को लेकर, जो चलेगा 4 बजे से 4:15 बजे तक, तो जरूर आप उनका साथ दीजिएगा और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या, बिल्कुल आपसे मुलाकात करेंगे ठीक 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ संध्या।

0: 890 kilohertz. This is Radio Mauritius.
1: हिंदी माथे की बिंदी विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी. सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की.
2: प्रकाश कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. श्रोताओं, आपका जाना पहचाना कार्यक्रम है, पर आज हमारे साथ एक अतिथि हैं जिन्हें आप सब जानते हैं, पहचानते हैं. उनकी आवाज़ हमेशा रेडियो पर आती रहती है, आप उनकी आवाज़ सुन चुके हैं, और वे हैं श्रीमती कल्पना लाल जी. निरंतर पुस्तकें लिखती रहती हैं, हमारे साहित्य में इजाफा करती रहती हैं. आज हमने चर्चा करने के लिए बुलाया है कि जो लोग साहित्यकार हैं उनके लिए साहित्य क्या है, इस पर चर्चा करेंगे. पर कौन सा साहित्य? साहित्य किसी समाज, जाति या समूह की सामूहिक चेतना के साथ साथ संस्कृति और जीवन शैली की मौखिक रूप या आपसी बातचीत में जो व्यक्त करता है वो लोक साहित्य कहलाता है. आपके लिए कल्पना जी, लोक साहित्य क्या है?
3: अंजू जी, लोक साहित्य का अपने में एक बहुत बड़ा स्थान है. और लोक साहित्य आप ये भी कह सकते हैं कि साहित्य हम सब जानते हैं, बातचीत करते हैं, जो भी कहानियाँ या जो
2: साहित्य जो हम मानते हैं जो कि सबके हित के लिए है.
3: बिल्कुल,
2: समाज के हित के लिए साहित्य होता है. पर लोक साहित्य तो मौखिक रूप ही है. हमारे पूर्वज भी जो आए थे वो लोक साहित्य ही लेकर आए थे. जैसे उन्हें रामायण पढ़ना, रामचरित मानस पढ़ना नहीं आता था, पर चौपाइयां कंठस्थ थी तो वे साहित्य से ही जुड़े हुए थे. इस पर आपका विचार?
3: देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि हमारे पूर्वज आए थे, भारत से आए थे, अपने साथ अपना साहित्य लाए थे, और वो साहित्य तो जो था वो उनकी मौखिक था, बंधा हुआ नहीं था. ना कोई किताबें थी, ना कोई कहानियों की किताबें थी, ना साहित्य की कोई किताबें थी. लेकिन वो लोक साहित्य जो था वो मुंह बोला साहित्य था.
2: बिल्कुल,
3: जो वो जानते थे, जो उन्होंने अपने दादा दादी से सुना होगा, जो बातें सुनी होंगी, जो कविताएं कहानियां जो भी था, जो वो लेकर के आए थे, वो उन्होंने अपनी दूसरे की भाषा से सुनकर आए थे.

0: पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया।
1: बिल्कुल, वो उन्होंने यहाँ आकर के जो है पहुंचाया, दूसरी पीढ़ी को पहुंचाया। और लोक साहित्य यही वही साहित्य है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आगे बढ़ता जाता है, जिसको आप कहीं किताबों में नहीं पाएंगे, लेकिन वो दादा नानी आदि का होता है जो वो बात करते करते जो है लोगों तक पहुंच जाते हैं।
0: पर वो एक बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है, तो इस पर आपका विचार क्या होगा?
1: देखिए, एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी तक चीज़ें जाती हैं, वो बातें होती हैं, वो चीज़ें होती हैं, वो कहानियाँ होती हैं जो कि किताबों में नहीं मिलती।
0: बिल्कुल।
1: और वो जो बातें हैं
0: वो
1: दादा
0: अनुभव हैं,
1: अनुभव हैं, और दादा दादी जो हैं वो उस अनुभव को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, चाहे वो कहानियाँ हों, चाहे वो उनकी कोई भी बातें हों, लोकाप्तियाँ हों, कहानियाँ हों, बुझावल हो, जो भी है।
0: अब मैं आप निरंतर साहित्य से जुड़ी हुई हैं, तो मेरा प्रश्न ये रहेगा कि मॉरिशस में आप लोक साहित्य को कहाँ पाती हैं?
1: देखिए, मॉरिशस जो है वो हम वो भी साहित्य से अलग नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि जो भारत से लोग आए थे वो अपने साथ अपना मौखिक साहित्य लेकर के आए थे। उस समय
0: रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण
1: बिल्कुल
0: था।
1: बिल्कुल, और जो लोक साहित्य उनकी दिशा में था वो ये था कि लोगों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो साहित्य पहुंचाना, चाहे वो कविताएं हों, चाहे शादी ब्याह के गीत हैं, आप देख लें, विशेषकर महिलाएं जो है जो शादी ब्याह में करती हैं
0: गीत गवाई
1: करती हैं, देवी देवताओं को पूजती हैं,
0: आवाहन करते हैं,
1: नृत्य संगीत होता है, जो भी होता है, जितने भी लोग वो लोग करते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें जो हैं वो मौखिक होती हैं, उनको रटी हुई हैं, ये नहीं कि उनको किताब चाहिए या कहीं
0: कंठस्थ है।
1: बिल्कुल, ये उनको कंठस्थ है। और उसमें छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, बहुत सी चीज़ें होती हैं, लोकगीत होते हैं जो उनके मन में बंधे हुए हैं, जिनको कि वो भूल नहीं सकते, और अपने अपने बच्चों को, विशेषकर महिलाओं को, विशेषकर लड़कियों को वो सिखाते हैं। नानी दादी हैं वो सिखाएंगे, और वो जब इसी तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर बढ़ जाता है।
0: और लोक साहित्य में जैसे अब यहाँ पर मुड़िया पहाड़ की कहानी
1: जी
0: है। लोक साहित्य है वो,
1: बिल्कुल,
0: किसी ने देखा नहीं, किसी ने अब वो लिखित रूप ले रहा है, कहानियां हैं, उस पर फिल्म बन रही है, परंतु पहले उस समय जब पूर्वज आए थे तो उन्होंने एक मुड़िया पहाड़ देखा, उसके ऊपर नानी दादी या जो जिसने भी एक कहानी गढ़ दी,
1: बिल्कुल,
0: और वो गढ़ी हुई कहानी एक नया रूप लेके हर बार परिवर्तित होके वो फिल्मों में भी पहुंची, वो नाटकों में भी पहुंची, और हमारे लिखित साहित्य तक पहुंच गई।
1: बिल्कुल। और ये जो जैसे आपने कहा वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा रहा है, लेकिन यहाँ भी जो है अगर आप कहें तो ये लोक साहित्य जो है ये जीवन है।
0: बिल्कुल,
1: जीवन है, जीवन की पाठशाला है, और बिना फीस की पाठशाला है, कहीं कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, कहीं कुछ मांगना नहीं पड़ता, लेकिन वो एक व्यक्ति जो है वो अपने से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देता है, चाहे वो दर्द के गीत हो, बिरहा हो, विदाई हो, जो भी हो, हमारे जीवन में हर मौका आता है, और हर मौके के लिए जो है गीत और संगीत जो है वो आगे से दादी नानी के समय से चलता आ रहा है।
0: बिल्कुल,
1: उसी साहित्य को

0: इस तरीके की जो उनकी बातें थी उन्हें देने के लिए कहीं दूसरा मौका नहीं मिलता था। शादी ब्याह हुए या कोई पूजा पाठ हुई तो उसमें ही वो आगे आते थे, बोलते थे, और जो आने वाली पीढ़ी है वो समय उनके साथ जुड़ करके उसे सीखती थी।
1: साहित्य दर्पण कार्यक्रम में भी जो श्रोता लोग भाग लेते हैं वे अपनी कविताएं सुनाते हैं, वो अपने अनुभव सुनाते हैं, वो भी एक प्रवाहित साहित्य चल रहा है साथ साथ में, जो कि हमारी दादी नानी उस कार्यक्रम में भाग लेती हैं, उसमें वे अपने अनुभव के साथ साथ जो पुरानी बातें हैं वे भी साझा करती हैं। जैसे एक महिला ने कहा कि द्वारी लीपते हैं। पहले आज के बच्चों को लीपना पता ही नहीं होगा कि लीपना क्या होता है। गोबर से लीपते थे, मिट्टी से लीपते थे घर को, और रसोई को तो बहुत अच्छे से लीपा जाता था प्रतिदिन। तो वो एक परंपरागत साहित्य बनता जा रहा है जो कि हमारे बच्चों ने आज नहीं देखा। आज हर तरफ फर्श पर टाइलें लग गई हैं, मोकेट हो गए हैं, कार्पेट्स हो गए हैं, पर वो लीपने की जो प्रथा थी वो हमारे लोक साहित्य में रजिस्टर हो गई है।
0: और ख़ास तौर से अंजू जी शायद आपको याद हो कि जो हमारे बड़े बूढ़े थे वो ख़ास तौर से एक दिन हुआ करता था जिस दिन की वो ये काम किया करते थे, लीपने का काम करते थे। और लीपने में उस समय गोबर जो है उसका बहुत महत्व था।
1: बिल्कुल,
0: अभी तो आज के बच्चे तो गोबर को छूना नहीं चाहेंगे,
1: उनको तो वो महक ही नहीं पसंद आएगी।
0: बिल्कुल, वो छूना नहीं चाहेंगे और हमारे
1: दूर से ही देख के नाक से कूट जाएगा।
0: बिल्कुल, और हम लोग जो थे उसको हमने भी उतना नहीं किया जितना कि हमारे बड़े
1: पूर्वजों ने किया है।
0: और खास तौर से रसोई जो थी वो लीपी जाती थी
1: जी,
0: रसोई के बाहर का आंगन होता था वो लीपा जाता था, और वो भी गोबर से।
1: पर आज जब हम साहित्य पढ़ते हैं और नजर दौड़ाते हैं तो हमें ये सब उन बातों का पता चलता है। जैसे कि आप कौड़ी जानते भी नहीं होंगे, फूटी कौड़ी नहीं है, कितना सहज से हम कह देते हैं कि हमारे जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, पर भारत में वो कौड़ी चलती थी, तीन फूटी कौड़ियों से एक कौड़ी बनती थी, तो वो साहित्य में हम पाते हैं।
0: और आज के बच्चों से आप पूछिएगा कौड़ी क्या होता, तो उन्हें कौड़ी पता ही नहीं है। कौड़ी भी जो है वो एक पैसा है।
1: बिल्कुल, वो पहले का था,
0: पहले के जमाने का।
1: यहाँ पर तो किसी को भी नहीं पता होगा क्योंकि यहाँ पे सेंट्स चलते थे, पर भारत में तो कौड़ी
0: चलती,
1: और ये हमारे साहित्य में पाते हैं कि फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, या एक आना नहीं है, तो आना भी पहले था आज नहीं है।
0: जैसे अभी आपने कौड़ी की बात की, कौड़ी जो है वो पैसे को छोड़कर भी एक और शब्द था, कौड़ी। कौड़ी खेलते थे
1: जी, कौड़ी खेली भी जाती थी, कौड़ी पैसे को भी,
0: बिल्कुल पैसे को भी कहते थे
1: जी।
0: और कौड़ी खेलते भी थे, जो कि
1: महाभारत में कौड़ियां ही तो खेली गई, शकुनी ने अपनी चाल चली,
0: बिल्कुल
1: वो कौड़ियां खेली गई थी। बहुत सुंदर आपने बताया, पर लोक साहित्य

0: 1,819 kilohertz. This is Radio Marxus.
1: कभी सोचा है
2: MBC रेडियो के स्टूडियो से लाइव और डायरेक्ट
1: लिसनर्स से बात करना कैसा लगता होगा?
2: मोस्ट पॉपुलर बॉलीवुड हिट्स प्ले करना,
1: मस्ती करना और पूरे मॉरिशस को एंटरटेन करना कैसा लगता होगा? अगर हाँ, तो फिर ये है आपका मौका।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे
1: ओपन टू ऑल मॉरिशस। बस 60 सेकंड से कम का एक धमाकेदार वीडियो बनाइए
2: और हमें सुनाए अपनी आवाज का मैजिक, कॉन्फिडेंस, एनर्जी और पर्सनालिटी।
1: वीडियो हो सकता है हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मराठी, उर्दू या चाइनीज में।
2: अपना वीडियो भेजिए ऑन MBC रेडियो व्हाट्सएप नंबर 5251-6363।
1: और आखिरी तारीख है 26th of July। तो कैमरा ऑन कीजिए, टैलेंट दिखाइए और हो सकता है अगली बार स्टूडियो के इस माइक के पीछे आप बैठे हो।
2: MBC रेडियो प्रेजेंट्स वन डे आरजे। MBC रेडियो पर आपकी आवाज, आपका स्टाइल
1: और आपका चांस।
2: डोंट मिस इट।
3: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। MBC रेडियो आपके साथ।
4: इस समय स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:31 हो चुके हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है मीडियम वाट्स 19 किलोहर्ट्ज़ पर से आप हमें सुन पा रहे हैं। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक। बचपन ऐसा ये कार्यक्रम

हम आए हैं आपका साथ देने के लिए कुछ ऐसी लाजवाब बातों के साथ, लाजवाब गीतों के साथ। जहाँ कहीं सभी साथ दे रहे हैं, दिल से साथ दीजिएगा जरूर। और आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमारे साथ आप जरूर जुड़ सकते हैं ऑन एयर 4028085 पर। जी हाँ, 4028085 पर आपका मैसेज भी, हाँ बिल्कुल, हम रिसीव करेंगे 5251705 पर। और जब बचपन की बात करते हैं तो बचपन की कुछ ऐसी बातें हमें बहुत ज़्यादा याद आती है, जहाँ पर हम एक साथ एक दूसरे से मिलकर कुछ ऐसी मज़ेदार बातें किया करते थे, कुछ ऐसी सुनी अनसुनी घटनाओं पर बातें किया करते थे, विज्ञान के फैक्ट्स शेयर किया करते थे। और उस समय, उस ज़माने में न्यूज़पेपर पर आने वाले वो छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हुआ करते थे, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी लाजवाब बातें हमें जानने को मिलती थी, समझने को मिलती थी। और साथ ही साथ स्कूल के जो प्रोजेक्ट वर्क हुआ करते थे, जहाँ पर टीचर हमें किसी सवाल पर बिल्कुल एक प्रोजेक्ट तैयार करने का एक इतना लाजवाब काम दिया करते थे। और उस समय कुछ ऐसा था जहां पर हम साथ मिलकर ग्रुप वर्क किया करते थे, कुछ ऐसी जानकारियां, कुछ ऐसी बातें। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही जानकारियां लेकर आए हैं जो विज्ञान को लगकर है, और बहुत ही लाजवाब, रोमांचक और संवादात्मक, यानी कन्वर्सेशनल। कुछ ऐसी बातें जो हम आए दिन आजकल करना भूल गए हैं। एक समय था जब हमारे दादा या फिर हमारे पिता के साथ ऐसी घटनाओं पर हम बातें किया करते थे, हम सवाल पूछा करते थे कि ऐसा क्यों होता है, क्या ये सच है, क्या ये तारे जो हैं वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ टिमटिमाते हुए आसमान में हमें दिखाई देते हैं, ये चांद गोल है और अचानक से ये छोटा क्यों होने लगता है। और कुछ ऐसी ही बातें जो हमारे दिमाग में एक सवाल खड़ा करती थी। और सच में देखा जाए तो गर्मियों की सीजन में आपने देखा होगा कि गर्मियों के समय में भाई दूर कहीं आपको मृग जल दिखाई दे तो हमें लगता था कि रियल में वहां पर पानी है, पर हालांकि तो वहां पानी होता ही नहीं था, पर ऐसा क्यों होता है। ऐसी कई सारी बातें, ऐसे कई सारे सवाल हमारे दिमाग में बस यूं ही घूमते रहते। और कहते थे ना कि दुनिया में आधे हिस्से में अंधेरा और आधे हिस्से में उजाला, यानी आधे हिस्से में दिन है और आधे हिस्से में रात। इस बात को हम उस जमाने में कैसे सोचते थे, क्या ये सच में होता होगा। पर जब हवाई जहाज का आविष्कार हुआ, जब लोग दूर देश से ट्रैवल करते थे, तो आज देखा गया है कि कुछ ऐसे पश्चिमी देश है जहां पर सफर करने पर कई बार हमें आसमान से ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। कुछ बातें जो कई वर्ष पहले या कई सालों पहले, यानी मान लीजिए एक 50 साल पहले की ही बात हम कहें, तो ये सारी बातें हमें सच में काल्पनिक लगती थी, है ना। पर आज जहां इंसान चांद पर कदम रख चुका है, ना केवल चांद पर, चांद से आगे जाकर मंगल ग्रह पर भी जाकर घूमकर प्रदक्षिणा करके वापस आ गया। अब ऐसी जगहों पर जाकर उन्होंने तस्वीर जब निकाली, तब जाके लगता है कि हमारे जो भूगोल की किताबों में तस्वीरें दिखाई देती थी वो सच में एग्जिस्ट करती हैं, है ना बात लाजवाब। चलिए, बचपन ऐसा में ऐसे ही सवालों के बाद जवाब की भी बातें हम करेंगे आज के इस कार्यक्रम में, और ज़रूर आप ही हमारा साथ दीजिएगा। इसी के साथ, भाई तारे क्यों टिमटिमाते हैं,

बचपन ऐसा और इस समय 5:42। दोस्तों एक समय था जब हम चांद की ओर देखा करते थे तो हमें लगता था भाई चांद तो बिल्कुल रोटी की तरह गोल है, सफेद सफेद, दूध से भी उजला। पर जब वैज्ञानिक वहां पहुंचे अंतरिक्ष में और जब तस्वीरें सामने आई तब जाके लगा कि ये तो भाई बिल्कुल सच नहीं, क्योंकि चांद पर इतने सारे खड्डे हैं जो यहां से हमें बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और ये जो रोशनी उसे मिलती है ये उसकी खुद की रोशनी थोड़ी है, ये तो सूरज की रोशनी से चमकता है रात को, इसीलिए इतना सुहाना और इतना प्यारा लगता है। पर विज्ञान के पीछे की बातें जब हम पढ़ते हैं तब जाकर जान पाते हैं कि सही में ये चीजें ऐसी क्यों लगती है। दोस्तों क्या आपको पता था कि हमारे शरीर में भी एक ब्रह्मांड छिपा हुआ है? नहीं ना, चलिए आपको बताते हैं। हमारे शरीर में जो डीएनए, आपने सुना होगा डीएनए के बारे में, तो डीएनए की जब हम बात करते हैं तो हमारे शरीर में हर कोशिका यानी हर सेल में मौजूद होता है ये डीएनए। और इन डीएनए को अगर पूरा खोल दिया जाए तो ये इतना लंबा हो सकता है कि आप इस पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की दूरी को लगभग 600 बार नाप सकते हैं। जी हाँ, ये लगभग 10 अरब मील लंबा होता है। और इसके बारे में भाई ये हम नहीं कहते, ये नासा स्पेस की स्टडी ने बताया है हमें। कितना अद्भुत है ना। कभी किसी ने सोचा होगा कि हमारे भीतर जो डीएनए है ये अगर जोड़ दिया जाए तो इतना लंबा हो सकता है? भाई जब हम बड़े बड़े वैज्ञानिकों की बात करते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने समय की अजीबोगरीब दुनिया के बारे में हमें बताया। जी हाँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन की थियोरी के अनुसार क्या आप जानते हैं कि जितनी तेजी से आप यात्रा करेंगे समय आपके लिए उतना ही धीमा होता जाएगा। यदि कोई इंसान अंतरिक्ष यात्री प्रकाश की गति के करीब यात्रा करके यानी स्पीड ऑफ लाइट के करीब यात्रा करके 5 साल अंतरिक्ष में अगर बिताकर पृथ्वी पर वापस लौटे तो यहां दशकों बीत चुके होंगे। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। दोस्तों ये जो तारे चमकते हैं आपको अंदाजा भी है कि ये हमसे कितने दूर हैं? कुछ तारे तो ऐसे हैं जो 7 वर्ष की दूरी पर है, यानी वहां पर पहुंचने के लिए हमें 7 वर्ष लग जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे। कितनी अजीबोगरीब बात है ना। और ऐसी ही अजीबोगरीब दुनिया है हमारी जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है और हम बस एक दूसरे से उलझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं और बिन बातों में फंसते रहते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है हमारा जो शरीर है

या हमारा जो डीएनए है वो किस परिवार से जुड़ा हुआ है, मैं अगर आपको बताऊंगी तो आपको बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी। ये हम नहीं कहते, ये रिसर्च में पाया गया है। ये सुनकर आपको भी हैरानी होगी कि हमारा जो डीएनए है एक केले के पेड़ के डीएनए से लगभग 50% तक मेल खाता है। हम सिर्फ केले ही नहीं बल्कि प्रकृति की लगभग सभी जीवित चीजों के साथ अपना अनुवंशिक कोड यानी जेनेटिक कोड साझा करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। आपको एक और लाजवाब बात बताएं, आपको पता है अगर आप अंतरिक्ष में चले जाएं और अंतरिक्ष में अगर आपको रोना आ जाए तो आपके आंसुओं का क्या होगा उस अंतरिक्ष में, कभी सोचा है? अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण ना होने के कारण आंसू नीचे नहीं गिरते बल्कि आपकी आंखों के चारों ओर पानी से छोटे छोटे बुलबुले बनकर वे जम जाते हैं। अगर आप ज्यादा रोते हैं तो ये बुलबुला आपकी आंखों को ढक भी सकता है। कुछ ऐसी ही लाजवाब बातें आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं। और बस हम तो ये भी कहेंगे कि अंतरिक्ष में पानी का विशाल भंडार अगर हो तो क्या हो जाए। बिल्कुल, हमारी पृथ्वी पर पानी बहुत ही कीमती है ये तो आप जानते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में विशाल काय बादल मौजूद हैं जिनमें इतना सारा पानी है कि पृथ्वी, हमारी जो धरती है, हमारा जो अर्थ है, अर्थ के सभी, हमारी पृथ्वी के सभी समुद्रों को 1,000 ट्रिलियन बार भरा जा सकता है। और ये विशाल जल भंडार हमारी आकाश गंगा, मतलब हमारा जो मिल्की वे, हमारा जो गैलेक्सी है, उसमें हम तैर रहे हैं। है ना लाजवाब बात? चलिए, कुछ ऐसी ही लाजवाब बातों के साथ हम आपके साथ ये कुछ फैक्ट्स शेयर कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आपको मज़ा आ रहा होगा। और कई बार कहते हैं ना, हाइला ये क्या बोल दिया, हाइला। अगर आपके पास भी है ऐसे कुछ फैक्ट्स तो ज़रूर कुछ शब्दों में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि केवल 10 मिनट रह गए हैं आज के इस प्रोग्राम को समाप्त करने के लिए।

0: गीत के साथ यहाँ पर हमारे श्रोता, एक श्रोता है जो हमेशा हमारे प्रोग्राम को बहुत दिलचस्पी से सुनते हैं और बहुत ही सराहना करते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्ते रत्ना बहन।
0: नमस्ते उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं तो MBC का रोज साथ देता हूँ, कोई चाहे कोई भी चैनल है।
0: हाँ जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे
1: 7 बजे से आप बोलते हैं ना कौन कौन प्रोग्राम चलेंगे आज।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो मैं अपना कॉपी लेकर नोट कर लेता हूँ।
0: ओहो थैंक यू सो मच, क्योंकि बिल्कुल आप लोग इतना दिलचस्पी से सुनते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा भाई जी?
1: बहुत लाजवाब लाजवाब, क्या नॉलेज है।
0: चलिए, हाँ जी हाँ जी,
1: हम आशा करते हैं कि सभी उम्र के बच्चे ये प्रोग्राम का आपके आपसे ज्ञान ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं ना।
0: जी जी बिल्कुल,
1: और हम लोग भी सीख रहे हैं।
0: कई बार ऐसा होता है कि ये सारी छोटी छोटी चीजें पहले के जमाने में न्यूज़पेपर में या फिर जैसे टीवी पर आती थी या फिर इन्फॉर्मेशन दिया जाता था रेडियो पर आजकल ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पर फैक्ट्स पर बात करें, विज्ञान पर बात करें, बहुत कम ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं। पर चलिए, हमारी कोशिश जारी है कि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को लेकर आए आपके लिए, प्रोग्राम को लाजवाब बनाते हुए।
1: आप इसी तरह प्रोग्राम करते रहिए।
0: थैंक यू सो मच। चलिए,
1: प्रोग्राम अलग अलग कैसे बोलते हैं
0: जी, बिल्कुल हटकर होते हैं, अलग अलग होते हैं,
1: अलग अलग कहानी ना?
0: जी जी जी बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करें ये गाना।
1: ओके
0: जी जी जी जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ओके हाँ जी जी हाँ, ये थे उदय जी हमारे, जो हमेशा साथ देते हैं प्रोग्राम में।

चलिए, कहीं कहीं पर बादल घिराए हैं, कहीं बरसातें हो रही हैं और ठंड का मौसम है, तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हर वो कोशिश करते रहे। और आज के इस कार्यक्रम में आपने साथ दिया, आपको पसंद आया ये कार्यक्रम। आशा करते हैं कि अगले सप्ताह फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे और कुछ ऐसी ही लाजवाब जानकारियों के साथ इस कार्यक्रम से जाएंगे, और आपका साथ बस यूं ही हमें मिलता रहेगा। आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करने का समय हो चला है, और इसी के साथ अभी थोड़ी ही देर में आप जुड़ पाएंगे देश विदेश की खबरों के साथ समाचार बुलेटिन में। तो इसी के साथ बस यहीं पर कार्यक्रम को फुल स्टॉप लगाएंगे। रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: शाम के ठीक 6 बजे हैं। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। सबसे पहले आज की सुर्खियां। विश्व कप 2026 का समापन हो गया है। एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस के गोल की बदौलत स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर विश्व कप का खिताब जीत लिया। यूरो जीतने के 2 साल बाद लाहौजा ने खुद को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में स्थापित कर दिया। थर्ड टर्म से स्कूलों में मोबाइल फोन के उपयोग पर सख्त नियंत्रण। छात्रों को फोन साइलेंट मोड में बैग के अंदर रखना होगा और इसका उपयोग केवल चिकित्सीय या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ही किया जा सकेगा। ये कदम साइबर बुलिंग, टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग को रोकने और पढ़ाई पर ध्यान बढ़ाने के लिए उठाया गया है। मॉरिशस के प्रसिद्ध कव्वाली गायक इदरीस लाल मोहम्मद का 18 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया। 6 दशकों से अधिक समय तक उन्होंने सूफी संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत पर अमिट छाप छोड़ी। और विदेश में कैस्टर्मे के औपचारिक रूप से इस्तीफा देने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने एंडी बर्नहम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पेश है समाचार विस्तार से। विश्व कप 2026 का समापन हो गया है। एक ऐसे मैच में जिसमें स्पेन का पूरी तरह दबदबा रहा और अर्जेंटीना ने अपना पहला शॉट 117वें मिनट में लिया। स्पेन ने एक्स्ट्रा टाइम में फेरान टोरेस के गोल की बदौलत जीत हासिल कर विश्व कप का खिताब अपने नाम कर दिया है।

0: अपने यूरोपीय खिताब के 2 साल बाद लाहौजा ने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में अपनी स्थिति पर मुहर लगा दी है। याचना मिश्रा।
1: स्पेन दुनिया का नया चैंपियन बन गया है। रोड्री और उनके साथी अब जश्न मना सकते हैं। यूरोपीय चैंपियन स्पेन ने फीफा विश्व कप का खिताब जीतकर एक बार फिर साबित किया कि वो विश्व फुटबॉल की नंबर एक टीम है। न्यूयॉर्क में खेले गए इस फाइनल में स्पेन ने पिछले विजेता अर्जेंटीना पर पूरे मैच में दबाव बनाए रखा, लेकिन गोल के लिए उसे लंबा इंतजार करना पड़ा। लाहौजा को बार बार अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेस ने रोका, जिन्होंने इस फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक नया रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने स्पेन के 11 गोल प्रयासों को विफल किया। दूसरी ओर स्पेन के गोलकीपर उनाई सिमन के लिए ये मुकाबला अपेक्षाकृत आसान रहा, जैसा कि पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिला। लियोनेल मेस्सी की टीम अर्जेंटीना पूरे मैच में संघर्ष करती नजर आई और आक्रमण में लगभग नाकाम रही। पूरी टीम सिर्फ 2 बार गोल दागने की कोशिश कर पाई। मैच के दौरान रेफरी ने 5 पीले कार्ड दिखाए, सभी अर्जेंटीना के खिलाड़ियों को मिले। वही एंजो फर्डिनेस को 93 मिनट में रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। इसके बावजूद अर्जेंटीना डटकर स्पेन के सामने खेलता रहा।
2: Pedro Porro, Williams, and thundered in for Spain by Ferran Torres!
1: At last! आखिरकार फेरान टोरेस ने स्पेन को चैंपियन बनाते हुए गोल दागा और कामयाब हुआ। मैच समाप्त हुआ स्पेन 1 अर्जेंटीना 0। अर्जेंटीना के सभी सपने चकनाचूर और स्पेन फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने देश वापस ले गया।
0: राष्ट्रपति धर्म गोकुल कल विक्टोरिया अस्पताल में चिकित्सा जांच के लिए भर्ती होने के बाद आज सुबह घर लौट आए हैं। राष्ट्रपति कार्यालय के कम्युनिकेशन सेल के अनुसार उनकी स्वास्थ्य स्थिति स्थिर है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि स्वस्थ होने के बाद राष्ट्रपति अपनी गतिविधियां फिर से शुरू करेंगे। एमबीसी का आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कर्मचारियों के पुनर्व्यवस्था का एक नया चरण शुरू। अपने आधुनिकीकरण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन अपने मानव संसाधन ऑडिट की सिफारिशों को लागू करना जारी रखे हुए हैं, जिसे हाल के महीनों में पूरा किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य संस्थान की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के अनुसार इसके पुनर्गठन और कर्मचारियों को अनुकूलित करना है, ताकि एक अधिक आधुनिक, कुशल और सार्वजनिक सेवा के अपने मिशन को स्थायी रूप से पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार एमबीसी का निर्माण किया जा सके। इस प्रक्रिया का एक नया चरण आज शुरू किया गया है। इसमें लगभग 40 कर्मचारियों का एक समूह शामिल था, जिनकी स्थिति की समीक्षा नई व्यवस्था के तहत की जानी थी। इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप लगभग 15 कर्मचारियों को उनकी नौकरियों में स्थायी कर दिया गया है और कुछ अन्य लोगों को उनके विकास में सहायता के लिए परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान से लाभ मिलेगा। दुर्भाग्यवश लगभग 20 कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिए गए हैं। एमबीसी इस बात से पूरी तरह अवगत है कि इन निर्णयों का संबंधित व्यक्तियों और उनके परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। प्रत्येक मामले की व्यक्तिगत रूप से जांच की गई और इसे लागू प्रक्रियाओं, कानूनी दायित्वों के सम्मान के साथ और जिम्मेदारी से तथा मानवीय तरीके से कार्य करने की चिंता के साथ निपटाया गया है। जिन कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हुए हैं, उन्हें लागू कानून के तहत प्रदान किया गया अधिकतम मुआवजा मिलेगा। प्रशासनिक और वित्तीय तौर तरीकों के बारे में उन्हें व्यक्तिगत रूप से सूचित कर दिया गया है। संबंधित कर्मचारियों को ये भी सलाह दी गई है कि वे हस्ताक्षर करने से पहले अपने कानूनी सलाहकार या श्रम कार्यालय यानी लेबर ऑफिस द्वारा उन्हें प्रस्तावित कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट की समीक्षा करवा लें। यह आधुनिकीकरण प्रक्रिया एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य एमबीसी को ऑडियो विजुअल परिदृश्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से अनुकूलित संगठन प्रदान करना है, साथ ही संस्थान के

निरंतरता और जनता के लिए बेहतर सेवा सुनिश्चित करना है। संबंधित कर्मचारियों की निजता और उनकी स्थिति की गोपनीयता के सम्मान में एमबीसी व्यक्तिगत मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। तो ये थी एमबीसी की ओर से एक विज्ञप्ति। अन्य खबरों में, उसका नाम अज़राइल था, वो केवल 2 साल का था। 6 जुलाई को सिडनी स्थित अपने घर पर

0: जाता है। आकर्षक रंगों वाली इन मिठाइयों के पीछे कभी कभी छोटे बच्चों के लिए घातक जोखिम छिपा होता है। तो इन उत्पादों की जांच कैसे की जाती है और क्या उपभोक्ता इस बारे में पर्याप्त रूप से जागरूक हैं? चलिए जानते हैं अंजू राम गुलाम की इस रिपोर्ट में। विवरण अर्चिता रघु का है।
1: चमकदार रंग, आकर्षक आकार और मुलायम बनावट जो बच्चों को तुरंत अपनी ओर खींच लेती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए खासकर नरम या जेली जैसी टॉफियां गंभीर खतरा बन सकती हैं। 4 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे अधिक जोखिम में होते हैं, क्योंकि उनकी श्वास नलियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं और भोजन को ठीक से पचाने तथा निगलने की क्षमता अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई। यदि हमने ऐसा जेली देखा है जो पहले कभी नहीं देखा या खाया हो, तब हम उन पर निगरानी रखते हैं। यदि बच्चा खाना चाहता है तो उसको काट कर उसे देते हैं। नर्सरीज और प्राथमिक स्कूलों में टॉफियों की बिक्री पर पाबंदी है, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद या आसपास की छोटी दुकानों पर ये मिठाइयाँ अब भी आसानी से मिल जाती हैं और अक्सर खुली या एक एक करके बेची जाती है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। फूड एक्ट के तहत इसका उल्लेख है कि किसी भी खाद्य पदार्थ के पैकेजिंग पर इन जानकारियों का होना अनिवार्य है कि ये खाद्य पदार्थ कहाँ बनाया गया है, नाम क्या है, उपयोग सामग्रियों की सूची क्या है, वजन तथा किस मूल देश से आया है। छोटी पैकेजिंग पर एग्जेम्पशन है क्योंकि उन पर लिखावट इतनी छोटी है कि दिखाई भी नहीं देती। जब टॉफी को उसके मूल पैकेट से निकाल कर बेचा जाता है तो उसके साथ सभी जरूरी चेतावनियां और जानकारी भी गायब हो जाती है। ऐसे में उपभोक्ता को खुद ही अंदाजा लगाना पड़ता है। इन खाद्य सामानों के प्राइस टैग पर यह भी होना चाहिए कि खाद्य पदार्थ किस उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि बच्चे आमतौर पर रंगों से आकर्षित होते हैं, पर इनमें खतरे भी होते हैं जिसके कारण सतर्क रहना चाहिए। कुछ ग्राम चीनी, जेली के कुछ छोटे टुकड़े, देखने में एक साधारण सी टॉफी, लेकिन यही कुछ ही सेकंड में खुशी के पल को एक दर्दनाक हादसे में बदल सकती है। ऐसे अदृश्य खतरे से बचाने के लिए हर समय सतर्क रहना ही आज सबसे प्रभावी सुरक्षा है।
0: एक बार फिर विश्व कप की बात करते हैं। स्पेन विश्व चैंपियन बन गया है और मॉरिशस में इस फाइनल मैच को बेहद उत्साह के साथ देखा गया। बड़े स्क्रीन, शॉपिंग सेंटरों में भीड़ और सार्वजनिक स्थानों पर जमा हुए सैकड़ों प्रशंसकों ने इस ऐतिहासिक मुकाबले का आनंद लिया।
2: बहुत से मॉरिशनों के लिए फीफा विश्व कप 2026 का ये रोमांचक अंत यादगार रहेगा, जहाँ कुछ लोग अभी भी अपनी पसंदीदा टीम की जीत का जश्न मना रहे हैं, वहीं कुछ प्रशंसक अपनी टीम के बाहर होने का दर्द अब तक नहीं भुला पाए।
3: Super content que l'Espagne a gagné parce qu'on est pour l'Europe et donc j'étais très heureux. J'ai dormi tard, il me faut une journée de café aujourd'hui.
4: Je suis pour l'Espagne, des compensations, des finitions, une mort d'un seul goal. Ce demi, ce rien ne fonctionne bien. Mon content est gagné et mon son peut être en tout.
5: L'Espagne a pu remporter sa 2e Coupe du Monde, s'il vous plaît. L'Espagne méritait bien son titre.
2: फाइनल खत्म हो गया, लेकिन चर्चाएं अभी भी जारी हैं। विश्लेषण, जज्बात और बहसें इस बात का सबूत हैं कि अंतिम सीटी बजने के बाद भी फुटबॉल का जुनून मॉरिशनों को एक साथ जोड़े रखता है।
6: La France a été battue par les Espagnols et j'étais enragé parce que je pensais qu'ils allaient faire la finale quand même. Donc ça, je suis bien, bien triste.
7: L'Espagne a battu la France, c'est pour ça que j'ai supporté l'Argentine.
8: L'Espagne a bien travaillé, ils ont bien joué aussi, oui, après chacun son tour. La France, on va tout en gagner, je comprends.
9: La première équipe qui est utilisée entre l'Égypte, ils ont bien fait dominer. Ils sont grignons. Ils ont fait avant de perdre ce match. Mais hier, je suis bien content, en fait, ils ont perdu le match.
10: Quand l'Espagne gagne, moi, je vais dresser les coups, messieurs, oui.
11: Fans
0: थर्ड टर्म में स्कूल खुलने पर कक्षाओं में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर नियंत्रण रखा जाएगा। शिक्षा और मानव संसाधन मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद के अनुसार इसका उद्देश्य बच्चों को साइबर बुलिंग और टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से बचाना है, साथ ही कक्षा में पढ़ाई के दौरान ध्यान केंद्रित करने में

0: मदद करना है। निर्देशानुसार मोबाइल फोन को साइलेंट मोड पर रखना होगा और उन्हें हर समय बैग के अंदर ही रखना होगा। इसका उपयोग केवल चिकित्सीय कारणों और शिक्षक द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए मांगे जाने पर ही किया जा सकेगा। शिक्षकों से भी कहा गया है कि वे मोबाइल फोन के उपयोग को सीमित रखें। मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद को सुनते हैं।
1: जब एगो लड़का क्लास में रही क्लास स्वीप करे के चाहला ओकरा हर समय ओकरा नहीं चाहला पोता में रहे के बस कि जब लड़का पोता छेके करता एगो मिसाज आवता बच्चा था पोताब में त नहीं सकता अपन सीजे निमन से स्वीप करे तो वे ओकरा नुकसान होवेला। ऑनलाइन हरासमेंट बुलिंग जनची होवेला ऑनलाइन लड़का लोग फोटो वीडियो मारू फोटो मारू वीडियो से अकेले करे लगलन से तो लड़का के अफेक्ट करेला। लड़का के प्रोटेजे करे खातिन हम निकाय रेगुलेशंस वन लें ऐसा और थोड़ा लेता लेके है मिजिया वन आते ऐसा बस कि देखनी सा दो तीन को लेकर डीजा है मिजिया वा अपना ले वन सा और देखा था ऐसा कैसे हम लेकर वन में डिसिप्लिन बरकरार बा
2: दुनिया के देखे मैं आवत भविष्य में ये बहुत फायदेमंद रही हमने के पूरा देश खातिन देख बा जहाँ दूसर देश में हई फैसला दे देल बा कोनो कोनो देश में एक कम्प्लीटली बैन कर देल बा हमनियो के सैजिका बोल बा कि हाँ एक एकदम से रेस्ट्रिक्ट करे के बैन करे के कहे कि जब कौतोले कर बजा ढेर बरे से कौतोले करते हुए जा नहीं होत बा अभी देखते जा कि एगो रेगुलेशन चलाल बा देखब सर संगे मिल के मंत्रालय संगे मंत्री संगे काम करब जा बहुत जरूरी बा कि मंत्रालय संगे एगो मीटिंग करे के एगो बैठक लगाए के जब मैं सकब जा देखे कि हई जन हमने नवा रेगुलेशन आ रहे जा ये कैसे सकब जा एक आगे लाए।
0: अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस आज सोमवार 20 जुलाई को लातुकेनिक स्थित नेल्सन मंडेला सेंटर में मनाया गया। इस अवसर पर उप प्रधानमंत्री मारी आरियाना वोमारी, कला और संस्कृति मंत्री महेंद्र गुंदिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सत्यजीत बुलेल, दक्षिण अफ्रीका के उच्चायोग के प्रतिनिधि और प्रिजन्स कमिश्नर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथों में है नामक विषय पर आयोजित इस समारोह ने याद दिलाया कि मादिबा की विरासत मानवाधिकारों समानता और एकजुटता की रक्षा के लिए प्रतिदिन किए जाने वाले प्रयासों का एक आह्वान है। संतना पोंसनो, याचना मिश्रा।
3: संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस हर नागरिक को दूसरों की सेवा के लिए अपना कुछ समय समर्पित करने का आह्वान करता है। ये दिन मादिबा के सम्मान में मनाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन के 67 साल स्वतंत्रता, न्याय और मानव गरिमा की लड़ाई को समर्पित किया। नेल्सन मंडेला केंद्र के लिए ये साल खास है, वो अपनी स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसके निदेशक ने याद दिलाया कि ये संस्था उस मिशन को आगे बढ़ा रही है जिसे नेल्सन मंडेला ने 1958 में मॉरिशस की अपनी यात्रा के दौरान शुरू किया था। विरासत को संरक्षित करने और न्याय, मेल मिलाप तथा मानव गरिमा के सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देने का मिशन। हमें इस केंद्र को एक ऐसी जगह बनाना चाहिए जहां इतिहास वर्तमान को बढ़ावा दे, संस्कृति एकता को आगे बढ़ाए, संवाद हिंसा को भगाए और भावी पीढ़ी नेल्सन मंडेला के बारे में, उसके मूल्यों के और जीवन के बारे में जाने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के अनुसार नेल्सन मंडेला की विरासत आज की चुनौतियों के सामने भी एक प्रेरणा बनी हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि गरीबी, असमानता और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने मादिबा के साहस को भी याद किया जिन्होंने 27 साल की जेल के बाद बदले के बजाय मेल मिलाप और क्षमा का रास्ता चुना। दमन का सामना उन्होंने हिम्मत के साथ किया, मानव गरिमा का पालन करते हुए। हमें उनसे सीखना चाहिए कैसे एकजुट होकर एक राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए बिना बदले की भावना के।
4: He engineered the reconciliation of a divided nation without revenge, peacefully, and created a rainbow nation.
3: Ubuntu की विचारधारा जिसका अर्थ है मैं हूँ क्योंकि हम हैं पर भी दक्षिण अफ्रीकी उच्चायोग के प्रतिनिधि ने जोर दिया। उन्होंने सभी से आह्वान किया कि दूसरों के प्रति करुणा और सेवा की भावना को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। समारोह का समापन मॉरिशस प्रिजन सर्विस को पुस्तकों के दान के साथ हुआ। इस पहल का उद्देश्य कैदियों के बीच पढ़ने की आदत, शिक्षा और पुनर्वास को प्रोत्साहन देना है।

0: द वुमेन प्रिजन।
1: इन पुस्तकों को हम विमेन विंग में डालेंगे। मैं ये आश्वस्त करता हूँ कि जेल के अधिकारी भी नेल्सन मंडेला के मूल्यों को अपनाएं।
0: De ce que Nelson Mandela en particulier fait prêcher.
1: स्मरण समारोह से परे वक्ताओं ने ये संदेश दिया कि नेल्सन मंडेला के मूल्य आज भी एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए प्रेरणा देते हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और एकजुट हो।
2: मॉरिशस का सांस्कृतिक जगत शोक में है। मॉरिशस में कवाली के प्रतीक और दिग्गज कलाकार इद्रिस लाल मोहम्मद का 18 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में इंतकाल हो गया। 6 दशकों से भी अधिक समय तक उन्होंने इस सूफी संगीत कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और मॉरिशस की सांस्कृतिक विरासत पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। प्रियंका हरि, करुणा लालू।
3: छह दशकों से भी ज़्यादा समय तक इद्रिस लाल मोहम्मद ने पूरे जुनून के साथ मॉरिशस में कव्वाली को जीवंत बनाए रखा। उन्होंने सूफी संगीत की रूहानियत और जज्बे से समृद्ध विरासत को संजोने और नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी।

लाल मोहम्मद ब्रदर्स के प्रमुख के रूप में उन्होंने मॉरिशस और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कव्वाली को उजागर किया। कव्वाली और गजल के प्रतिष्ठित गायक के रूप में उन्होंने अनेक पीढ़ियों के कलाकारों को प्रेरित किया। मॉरिशस सांस्कृतिक धरोहर में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें इसी वर्ष लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनकी आवाज भले ही अब खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी संगीत विरासत आने वाली पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजते रहेगी।

और विदेश में सर केस्टामे के औपचारिक रूप से इस्तीफा देने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने एंडी बर्नहम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और आखिर में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात और कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 14 से 16 डिग्री सेल्सियस, तटवर्ती इलाकों पर 18 से 20। कल दिन के दौरान धूप खिली रहेगी, फिर भी दोपहर बाद को बादल घिरे रहेंगे और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण तथा सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर बारिश होगी। अधिकतम तापमान ऊंचाइयों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण पश्चिम के समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में आज रात नहीं जाने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:44 पर सूरज उगेगा और शाम 5:48 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही समाचार समाप्त है। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। समय शाम के 6:22 हुए हैं। थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: लीजिए शोक समाचार सुनिए। इलाका वेनवाकुआ में 70 साल की 70 years old की श्रीमती इंद्रामती किरोधर पैदाइशी नाम जोगी और जो इंदिरा नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी बुधवार को सुबह 10

0: 10 बजे उनकी अर्थी बुधवार को सुबह 10 बजे उनके पति श्री रमेश किरुधर के घर लाकावेन वाक्वा से उठाकर सुल्फेगनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन ऑन वेंसडे एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमारी संवेदना है।
1: NBC Radio, 24 hours a day.

0: सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कल मंगलवार 21 जुलाई 2026 दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बोबासा और आसपास के इलाकों में डॉक्टर गैड, शेरिलेनाओ, जुपेया, शातुनफ में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
2: श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आपका मनपसंद रेडियो चैनल है, कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। समस्त श्रोताओं को हमारा सादर प्रणाम, आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं। श्रोताओं, मन को संसार की उलझनों से नहीं ईश्वर की स्मृति से जोड़िए। जब मन भीतर से शांत होता है तब जीवन के हर कदम पर प्रकाश दिखाई देता है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम है भजले प्रभु का नाम। मन ईश्वर तक पहुंचने का सबसे निकट का मार्ग भी है और सबसे बड़ी परीक्षा भी। जब मन शांत, निर्मल और सकारात्मक होता है, तब भीतर की दिव्यता का अनुभव सहज होने लगता है। तो आइए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सोमवार का दिन है और आज का दिन जो है समर्पित है भगवान शिव को। जनभक्ति गीत आपकी सेवा में भगवान शिव जी पर आधारित।

श्रोताओं, मन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देने से जीवन की कठिनाइयां समाप्त हो या ना हो, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अवश्य मिलती है। यही आध्यात्मिकता का वास्तविक सौंदर्य है। तो आइए कार्यक्रम की अगली भेंट की ओर हम बढ़ेंगे।

भटिले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही भक्ति भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ आप हमारा साथ दे रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। वैसे अध्यात्म हमें सिखाता है कि मन को दबाना नहीं बल्कि उसे सही दिशा देना आवश्यक है। प्रार्थना, ध्यान, सत्संग, सेवा और शुभ विचार मन को स्थिर करते हैं। जब मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से मुक्त होने लगता है, तब उसमें प्रेम, करुणा और संतोष का प्रकाश फैलने लगता है।

श्रोताओ, हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। जाने से पहले ये शुभ विचार सुनते चले। निर्मल मन में ही भक्ति खिलती है, शांत मन में ही ज्ञान जागता है और समर्पित मन में ही ईश्वर का अनुभव गहरा होता है। तो चलिए, कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। जाने से पहले हमारी तकनीकी सहायिका अंजू को धन्यवाद देंगे। आप सभी को शुभ रात्रि।

मोहतरम सामीन, एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान की कौन सी सूरत सबसे ज़्यादा अज़मत वाली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद। उसने अर्ज़ किया, और आयतों में कुरान की कौन सी आयत सबसे ज़्यादा अज़मत वाली है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतल कुर्सी। उसने अर्ज़ किया, और कुरान की कौन सी आयत है जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास तौर से ख्वाहिश है कि उसका फ़ायदा और उसकी बरकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को पहुँचे? आपने फरमाया, सूरह अल-बकरा की आखिरी आयतें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयतें अल्लाह ताला की रहमत के उन खासुल खास खजानों में से हैं जो उसके अर्शे अजीम के तहत हैं। अल्लाह ताला ने ये आयात रहमत उस उम्मत को अता फरमाई हैं, ये दुनिया और आखिरत की हर भलाई और हर चीज़

ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। ए पाक परवरदिगार अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पूरी दुनिया में जितने लोग वफात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, जो बीमार हैं या परेशान हैं तो उनको अपने करम से मुआफ़ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट, जलसा, हंगामा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तो हर कार्यक्रम है, तो हर भोजपुरी के कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम में हम ही तो लोग के सब जनवन सुनवाओ जा, जिनके फरमाइश करवा जा, 5251705007005 पर, और टेलीफोन करे कुछ बजाता 4028085 पर टेलीफोन करके अपन पसंद के गाना के ज़रूर फरमाइश करके हमने के भोजपुरी तड़का के सजावे सकवा जा। और इसे में अभी जन गाना हमने तो लोग के नाम करे थे जा अनिल सिंह रमेश सर और कविता मंदिर जी के गावल गाना है, और कुंच पकेले हवा आज तू बोला हमने के कविता मंदिर जी और अनिल रमेश सर जी के गावल गाना में तो दाल भात और कुकुम की सलाद बा, चला सुनी जा तो हर मेन्यू में कावा। और ये गाना हमने बजावत है जा विशाल जी के फरमाइश पर, उनकर बहन रीना और बहन वीना के नाम कर तो गाना विशाल जी। तो चला सुनी जा, दाल पकैली भात पकैली

के गाना जन सुने थे जहाँ हमने अभी गाना मंगले और नमनी से ललिता जी त्रियोले से बहन सुदेवी देवीना ज्ञानी खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरिश जी और आत्माराम जी खातिर फिर सुखलाल मौसी और माला राम जवन जी खातिर

हर भोजपुरी जलसा में भोजपुरी तड़का में तुहार स्वागत करत है जा। अभी हमने गाना सुनवाओ जाता हूँ लोग के छोड़ के मोरी सुवा आतिश भगीरथी जी के गावल और गाना हमने से अवाकवा से अबूजी मंगले हवन अपन भगिनी रकीबा जी खातिर उनकर अच्छा स्वास्थ्य के दुआ कर हवन अबू जी। और यही गाना मंगले हवन अबू जी आफेज खातिर असलम आया जायान जाहिरा रईस खातिर उन काला छोटी खातिर और उनकर दोस्त अपी और उनकर पत्नी खातिर

पियर पियर उठ के हरियर नगिनवा, संतोष महादेव जी और साथी कलाकार लोग के आवाज़ में सुनत है जा ये गाना फ्ली कॉम्फ्लक्स से। अनीता जी मंगल हमारे बन बहन लोग खातिर, बहन शोभा, अनुराधा और लक्ष्मी जी खातिर।

और आगे बढ़े जा, हमने सुनी जा अगला गाना कृष रिदो जी के गावल, और ये गाना हमने गायत्री जी खातिर चलावत है जा। नोवेल फांस से गायत्री जी के नाम करे थे जय गाना, और बेटा अजय खातिर, उनकर मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, और मोताइलों के उनकर भाभी शकुंतला जी खातिर, और नोवेल फांस के सखी गीता बाई खातिर।

0: भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: अब चले तड़का लगाया जा, हमने आशीष रामफल जी के आवाज संगे चले गाना सुनी जा विजय जी खातिर। विजय जी सैंपिया से गाना मंगला वन अपन बेटा आयुष और पत्नी रेनू के नाम।

पनिया जब बरसेला कितना झंझट कर देवेला, कितना कब्बो कब्बो हमनी के जीवन में लाभ भर देवेला, ये सब हमनी के पानी से होवेला, कब्बो लाभ कब्बो हानि। तो चला सुने अविनाश लक्षण जी से सुनी जा, और ये गाना हमने शोभा जी खातिर बजवाओ, चाहे जा कौफुको।

जिसे कलोरी ये गाना चलो सुनी जहाँ हमने राकेश जी घाव गुप से मंगले वनी गाना अपन संगत यालो खातिर देवानंद सतीश और मुनेश के नाम ये गाना है बहल गौरी जी के कावल

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: तो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम हजे पर समाप्त हो जाए, अभी 11 बजे में 4 मिनट बाकी। बार बाल्मीकि रीताल जी के गावली गाना चला सुनी जा हमने, और ही गाना के संगे संगे तो हर से आज्ञा चाह आवत हला, फिर मिलब जा एगो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम से। अभी रात के 11 बजे से सुनिए जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम, पुराना गीत के कार्यक्रम गिनी शाह से। आवत हला, मिलब जा, शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मॉरिशस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गिनिशा, जो आ गई हूं अगले एक घंटे में आपका साथ देने के लिए। जिएंगे फिर से एक साथ सुनहरे पल। जी हाँ, ये वो पल हैं जो पुराने बॉलीवुड गीतों के साथ हमें फिर से बचपन, जवानी और जिंदगी के इन खूबसूरत लम्हों तक लेके जाते हैं। तो चाहे आप घर पर हो, काम से लौट कर आ गए हो वापस, या शायद आराम कर रहे हो, अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए और गीतों को अपनी यादों से बात करने दीजिए।

वैसे देखा जाए दोस्त, कुछ गीत सिर्फ गीत नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी के साथी बन जाते हैं। कभी किसी की याद दिलाते हैं तो कभी किसी की खास मुलाकात की कहानी सुना जाते हैं। आज सुनहरे पल में हम लेकर आए हैं ऐसे ही अनमोल बॉलीवुड नगमे जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत हो गए हैं। साथ रहिए रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: कुछ भी नहीं।
1: रात धीरे धीरे अपनी बाहों में समा रही है और इसी खूबसूरत माहौल में हम सजाने जा रहे हैं यादों की एक महफिल। पुरानी फिल्मों के गीत, मधुर आवाजें और दिल को छू लेने वाले बोल, ये हैं सुनहरे पल, जहां हर गीत एक कहानी, हर कहानी एक एहसास बन जाती है।

रात धीरे धीरे अपनी बाहों में समा रही है और इसी खूबसूरत माहौल में हम सजाने जा रहे हैं यादों की एक महफिल। पुरानी फिल्मों के गीत, मधुर आवाजें और दिल को छू लेने वाले बोल, ये है सुनहरे पल, जहां हर गीत एक कहानी, हर कहानी एक एहसास बन जाती है।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी गाओ।

आज की इस महफिल में बजेंगे वो गीत जो कभी रेडियो पर सुनने के लिए लोग इंतजार किया करते थे, वो गीत जो हर घर में गूंजता था और हर दिल में अपनी जगह बना लेता था। तो चलिए मिलकर फिर से जीते हैं वो खूबसूरत दौर सुनहरे पल के साथ ऑन रेडियो मॉरिशस।

वैसे अगर आपको लगता है कि पुराने गीतों का जादू आज भी जिंदा है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्त, क्योंकि कुछ सुर और कुछ आवाजें कभी पुराने नहीं होते हैं। आज हम उन्हीं गीतों के साथ यादों के सफर पर निकल रहे हैं। बिल्कुल स्वागत तो हमने कर लिया सुनहरे पल में, और अभी के लिए अगला गाना हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन तमाम सुनने वालों के नाम जो शिद्दत से बैठे हैं और गिनिशा का साथ दे रहे हैं ऑन रेडियो मॉरिशस इन

वैसे हर गीत के पीछे छुपी होती है एक याद, एक मुस्कान और कभी कभी एक आंसू भी। आज हम उन्हीं एहसासों को फिर से महसूस करेंगे पुराने बॉलीवुड गीतों के साथ। तो साथ बने रहे और दिल को संगीत के हवाले बस कर दीजिए।

रेडियो मॉरिशस पर वक्त आ गया है कि सुकून देने वाले गीतों का बिल्कुल सुनहरे पल के साथ आज की महफिल उन सभी संगीत प्रेमियों के नाम जो आज भी पुराने गीतों के उतने ही दीवाने हैं, उतने ही मोहब्बत से सुनते हैं जितने पहले सुना करते थे।

0: जान दे ना ज्यादा ध्यान दे रहन दे जान दे
1: सारे गांव पहाड़गंज
2: पहाड़गंज।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस
1: रेडियो मॉरिशस।

0: आज खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? नरगिस, क्या बात है?
1: हम आपसे निकाह नहीं कर सकते मुबारक।
0: ये क्या कह रही हो नरगिस? रहते और आप कह रही है कि आप मुझसे निकाह नहीं कर सकती? बात क्या है? हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं।
1: हम किसी और से मोहब्बत करते हैं।

0: जावा।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मॉरिशस।